0: योग करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बता

आते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी
ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। प्यास, थकान, कमजोरी, यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान
धीरे धीरे लगाएं। जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है।
थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है, हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है, लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना, ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम, जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम,
सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के समांतर

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभु की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नाग

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नील कंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ, शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है, वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठ धारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।

दोस्तों, शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे बेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि बेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू से, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होके रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव, अनादि जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारी प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो पल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता

रेडियो ज्ञान स्लीपर आप सुन रहे हैं आपके अपने गोला शहर की धड़कन। मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो चल रहा है यानी कि गुड मॉर्निंग गोंडा। भाई घड़ी में वक्त हो चले हैं 9:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपके साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में आपकी फेवरेट वाली आरजे आरजे रतीफ लाल बेंस्टी की मॉर्निंग स्पेशल आरजे। और बताइए आप कैसे हैं, आप उठ चुके हैं या आप भी ब्लैंकेट के अंदर एसी चला के पंखा चला के अंगड़ा आई या ली जा रही हैं फिलहाल के लिए। आज का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कल की झमाझम बारिश के बाद फाइनली आज थोड़ी धूप निकल आई है, धूप के साथ साथ गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो भाई इस खूबसूरत मौसम में और इस खूबसूरत मुलाकात को आइए जारी करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं और बिना देरी किए आपको लेकर चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, यानी कि वो विचार जो आपसे बहुत कुछ कहता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे क्या आज का विचार आपसे क्या कुछ कहता है? वेल आइए आपसे बता देते हैं कि भाई आज का मॉर्निंग वाला थॉट ऑफ द डे जो है वो क्या कहता है और क्या समझाता है। आज का मॉर्निंग वाला थॉट ऑफ द डे है कि हर किसी को अपने घाव मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में मरहम लगाने नहीं बल्कि सिर्फ कहानियां ढूंढने आते हैं। क्या बात है भाई, कितनी खूबसूरत बात किसी ने चंद लाइनों में लिख दी है कि अपनी जिंदगी के हर घाव किसी को मत दिखाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी में हर शख्स मरहम नहीं ढूंढता, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कहानियों की तलाश में होते हैं। सच है ना, आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम हर बात शेयर करने की आदत सी रखते हैं। हमारे अंदर क्या टूटा, क्या बना, क्या बिखर गया, क्या क्यों परेशान है, हर एक चीज को, हर एक बात को दिल खोल कर किसी के सामने रख दिया करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी सारी तकलीफ समझेगा, बट होता इसका उल्टा भी है। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में जहां कुछ लोग आपके लिए मरहम ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन मरहम की तलाश ना करके कहानियां ढूंढ रहे हैं। चेहरे पर झूठी हमदर्दी लेकर आपकी तकलीफ तो सुनेंगे और उस तकलीफ को सुनने के बाद जाकर दूसरे को जरूर से सुनाएंगे। और इसी की बात पर मुझे नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आ जाता है कि ये दर्द मेरा है, तुम्हें बता देने से ये दर्द कम नहीं हो जाएगा। हालांकि कहते हैं कि जब कहीं तकलीफ हो तो बांट देनी चाहिए, जब खुशियां हो तो बांट देना चाहिए, क्योंकि खुशियां डबल हो जाती हैं और दर्द आधा हो जाता है, बट हर किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना चाहिए। तो आज का थॉट ऑफ द डे बहुत क्लियर है कि भाई अपनी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, किसी भी चीज से आप परेशान हैं, कोई भी तकलीफ आपको है, तो उसे हर किसी के सामने मत रखिए। सिर्फ एक कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपकी बातों को समझता होगा, जो कहानियां नहीं आपके लिए मरहम ढूंढेगा, बस उसके सामने अपनी तकलीफ रखिए। सोशल मीडिया के ज़माने में आकर के सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। और ये जो आदत है ना कि अपना दर्द नहीं दिखाते हैं, ये आपकी कमज़ोरी नहीं ताकत भी बनती है, अगर आप पहचानते हैं कि किसको अपनी तकलीफ दिखानी है किसको नहीं दिखानी है। तो ये तो था आज का थॉट ऑफ द डे कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ है उसे हर किसी के साथ मत बांटिए, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं सिर्फ कहानियां ढूंढ रहे हैं। आप बताइए आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा। और लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, क्योंकि वक्त हो गया एक प्यारे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पर। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजे रतीफ के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं,
2: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम।
1: अब हर मौके और हर मूड पर है ना
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग।
1: तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM
3: है ना। अरे यही तो लड़की थी जिसको मैं देखने गया था।

हां जी भाई, आपसे मेरा एक सवाल है इस वक्त, और वो ये है, ईमानदारी से बताइएगा, आज सुबह जब आपका अलार्म बजा था तो किस किस ने उसे दुश्मन की तरह घूरा और 5 मिनट का स्नूज लगा के दोबारा सो गया? बताइए बताइए, और ये किस किस ने किया है? किसनूज का बटन दबाया और तकिए को मुंह पर रखा और वापस से सो गए? आई थिंक ये हर इंसान करता है। आंखें खुलती हैं, अलार्म बजता है, अलार्म को देख के लगता है यार 5 मिनट बस, और 5 मिनट और मिल जाए, और पीछे से मम्मी की आवाज़ आ रही होती है। और अगर आप अकेले रहते हैं और अगर आप 5 मिनट में नहीं उठते हैं तो पता चलता है कि ओरी बाबा, ये तो लेट हो गया, हम तो बहुत लेट हो गया। फिलहाल अपनी ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसे मैजिक ट्रिक्स की बात करते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स की बात करते हैं, जो मिल जाए तो दुनिया बन जाए, दुनिया कायम हो जाए, हमारी ज़िंदगी बन जाए, करियर मिल जाए, सब कुछ हो जाए, और हम सोचते हैं ऐसी कोई मैजिक ट्रिक मे बी हो भी सकती है। बचपन से हमने हमेशा यही कहा है कि काश काश वो जादू मेरे पास भी होता जो ऋतिक रोशन के पास है, काश काश काश काश मैं ये कर रहा होता, काश कोई शॉर्टकट होता, काश काश काश काश में हमारी पूरी ज़िंदगी है। बट भाई, मैं आपको काश के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी उन चीज़ों के बारे में जो सच में एक मैजिक की तरह काम करती है, हाँ, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है। उन्हें करने में थोड़ा सा चिढ़ होता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि यार सुबह सुबह उठ के क्या करा रहे हो मुझसे। बट जो सुकून मिलता है उसके बाद, वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्टकट काम नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म सुकून अगर आपको चाहिए, अपनी आदतों को बदलना पड़ता है, और आदत बदलना इस दुनिया का सबसे मेहनत वाला काम है, क्योंकि भाई आदत कौन बदलता है, यही हमारे अंदर की बात आती है। जब भी हम किसी से कहते हैं आदत बदल लो, तो वो कहते हैं धीरे धीरे कर तो रहे, और धीरे धीरे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता। जी हाँ, अगर आप अपनी स्पेशली आदतों की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ अपनाने की बात कर रहे हैं, और उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कहते हैं, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और उसे कहा जाए कि भैया छोड़ दो, सेहत के लिए अच्छा नहीं, कहते आप मुझको भी पता है, लेकिन धीरे धीरे ही तो छूटेगी, एंड धीरे धीरे करके वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छोड़ पाते। तो भैया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के अपने मॉर्निंग वाले शो में, जिससे आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूँ आपकी आज नदी, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

अब ये देखो, नागेश्वर धाकर जी के साथ तो ऐसा हो चुका है कि उन्होंने अलार्म लगाया था सुबह 6 बजे का, 6 बजे अलार्म बज भी गया क्योंकि मशीन ईमानदारी के साथ काम करती है, कभी कभी धोखा देती है। और उसके बाद जब वो उठे, उन्होंने अलार्म देखा, दुश्मनी भरी निगाहों से देखा, उसके बाद उसको बंद किया और सोचा थोड़ी देर और सो जाऊं। वो 5 मिनट का टाइम उनकी आंख दोबारा खुलती है सुबह 8 बजे। और आपके साथ भी ऐसा होता है, आप सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब 2 घंटा निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। भाई कुछ बात करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको बदलने से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आदतें बहुत छोटी हैं बट उनके इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है और जो सुबह उठते ही इंसान करता है, हर दूसरा बंदा कर रहा है, बहुत रेयर केस होगा जो ये कोई ना कर रहा, और वो ये है कि सुबह उठते ही हाथ में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो पानी का ग्लास नहीं आता, वो आपके चेहरों को साफ करने वाले पानी भी नहीं आता, वो आता है सीधे आपका ये छोटा सा 6 इंच का फोन। और आप इस फोन के अंदर ऐसा घुस जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं जैसे अगर फोन को नहीं देखा तो ना सूरज बाहर निकलेगा ना ऑक्सीजन आपके अंदर आने वाली है। तो ये सुबह जो फोन देखने की आदत है कि सुबह उठते ही सबसे पहले फोन की सारी नोटिफिकेशन चेक करनी है, फेसबुक पे क्या आया, कल रात ही तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, अरे भैया किसी ने लाइक किया कि नहीं किया, कमेंट आया कि नहीं आया, ये किसने क्या कमेंट कर दिया है, ओ माय गॉड मैसेज नहीं किया, अभी तक मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। और इन सारी चीज़ों में हमारा कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है, और उस आधे घंटे के बीच में हम सोचते ना एक दो रील भी देख ही डाले किया जाता है, और उसमें हमारा जो 1-2 घंटे से आराम से बैठकर हम देखते हैं और पीछे से हमारा वक्त गुजर रहा होता है हौले हौले धीरे धीरे। तो सुबह उठते ही जो काम नहीं करना है वो ये है कि सबसे पहले आप अपना फ़ोन नहीं छुएंगे। हाँ, अलार्म के लिए छुएंगे, अलार्म बंद करेंगे, बेड से उठेंगे, और उसके बाद भले ही अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहली चीज़ फ़ोन ना हो। सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, नोटिफिकेशंस को अवॉइड कीजिए, और इनलेस स्क्रोलिंग को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सुबह 30 मिनट उठने के बाद थोड़ी शांति की डिमांड करता है कि भैया मेडिटेशन मेडिटेशन शांति शांति, और हम सुबह सुबह ही उसको इतना बड़ा हलचल दे देते हैं भूकंप सा कि वो स्क्रॉल में ही चला जाता है, उसे लगता है ये भी ये भी ये भी ये भी, और वहीं से स्टार्ट होती है आपकी ओवरथिंकिंग, यानी कि दिन भर में आप क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये बात आपके मॉर्निंग के 30 मिनट तय कर देते हैं। तो अगली बार जब आप उठेंगे, यानी कि कल से जब आप उठेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे अपने फ़ोन को टच करना। उसकी जगह पर क्या करना है, उसकी जगह पर आपको पीना है पानी। जी हाँ, क्योंकि भैया रात भर आपकी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि आप रात में उठ के तो पानी पी नहीं रहे हैं कि वाटर इनटेक कंप्लीट किया जाए, मैं तो बहुत ज़्यादा फिटनेस के लिए पगलू हो रखा हूँ, ऐसा आप नहीं करते हो, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ऑफकोर्स हम सोते ही हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो उठकर पीना है पानी, इससे मिलती है आपको एनर्जी, काम करने की एनर्जी मिलती है, आँखों को खुलने का टाइम मिलता है कि पानी चला गया अंदर, ला उठ ही जाते हैं, अब क्या ही रहता है, मालिक ने तो पानी पी ही लिया है ना। तो भैया आँखों को भी थोड़ा उठने का टाइम मिलता है, आपके शरीर के अंदर जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें स्पेशली आपका जो पाचन तंत्र होता है वो सक्रिय होता है, क्योंकि उसको भी फ्लश करना है। जिस तरह से आप अपने दुकान की शटर खोलते वक्त सबसे पहले झाड़ू लगाते हो, ऐसे ही आपके पेट के साथ भी होता है, जैसे आपकी आंखें खुलती हैं आपके पेट को भी हर एक चीज़ बाहर निकालनी है, फ्लश आउट करना है। बट अगर आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ कैफिन लेते हो साथ में 30 मिनट स्क्रोलिंग, तो आपका दिमाग और आपका पेट दोनों में हलचल मच जाती है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो पीना है पानी, खुद को हाइड्रेट करना है। और अगर आप 2 ग्लास गर्म पानी पीते हैं तो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका दिन, आपका दिमाग, आपका पेट आपसे बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हम आपको बता दें, सुबह उठ के पानी पीने से आपके वजन कम करने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, इम्प्रूव करता है आपका मेटाबॉलिज्म जो आपका लिवर बनाता है। फिलहाल पानी में आप नींबू डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए शहद वगैरह ना डालें। यूँ तो लोग कहते हैं कि शहद बहुत अच्छा है शरीर के लिए, शहद हमको फैट लॉस करने में मदद करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन शहद भी एक टाइप का शुगर फॉर्म ही है। तो जिन्हें डायबिटिक है या जिन्हें ब्लोटिंग हो जाती है शहद से, जिन्हें शुगर नहीं डाइजेस्ट होता है, वो कोशिश करें, और बाकी आप भी कोशिश करें कि फर्स्ट थिंग जो आप ले रहे हैं वो कैफीन या मीठा ना हो। इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करना,
जी आप चाहे वो गाना भी लगा सकते हो कि लेट्स मूव इट मूव इट। इसमें आप हल्की सी जॉगिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो या नॉर्मल वॉक कर सकते हो। घर के अंदर ही अगर 4-5 राउंड आपने लगा लिए तो कोई मसला है नहीं। आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा सीधे जिम में पहुँच के 2-3 डंबल लगा लिए 3-4 घंटे के लिए बस हो गया। ना ना ना, आपको 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं, 5-10 मिनट, जिसमें आपको अपने मॉर्निंग में थोड़ी सी बॉडी को मूव करना है, भले ही खड़े होकर बेड से सिर्फ स्ट्रेच ही कर लें। इसके बाद जो हम कभी नहीं करते, इसका उल्टा ज़रूर करते हैं, वो ये है कि अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। बट हम सुबह उठ के ही कहते हैं क्या, एक ही लाइन तो हम सुना करते हैं। स्पेशली अगर आप देर तक सोते हैं तो आपके घर वालों का ताना होता है कि कैसी कुंभकर्ण औलाद है मेरी, कुछ नहीं होता, निकम्मा नकारा, ये सारी बातें सुन सुनकर हमारे दिमाग में सोच ले कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। नहीं, आपको सुबह सुबह उठना है, आईने के सामने जाकर खड़ा होना है, या आपने आईना नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चलनी चाहिए आपके, वो ये है कि आप अपने आप से बातें करें, वो भी पॉजिटिव, कि मैं कर सकता हूँ, मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ और मैं सारे चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूँ। आपको ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपका दिमाग आपकी हर एक बात को सुनता है और आप जो कहते हैं आपका शरीर भी उसी तरह से काम करता है। अगर आप अपने आप को लूज़र की कैटेगरी में रखते हैं और यही कहते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग कहता है नहीं, मालिक ने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, करने की क्या ज़रूरत है, कोशिश भी नहीं करूँगा मैं। वही अगर आप कहते हैं ऐसे कैसे नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग कहता है कि भैया मालिक ने कहा है करना पड़ेगा, तो मतलब करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन सोचो, ऐसे मत बैठो, हमारा दिल बैठ जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को पॉजिटिव बातें कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रूसली भी कहा करते थे कि अपने आप को मजाक में भी कभी उल्टा ना बोलो। आपका शरीर हर एक बात सुनता है, हर एक चीज़ याद रखता है, उसे मजाक और हकीकत के बीच में फर्क नहीं पता है। आप जो बोलते हो आपका शरीर और आपका दिमाग वही चीज मानता भी है। इसके बाद बात करेंगे प्लान योर टॉप 3 टास्क। आपको अपने दिन के वो टास्क कंप्लीट करने वाले जो सबसे बड़े बड़े हैं, जिसमें आपके हो सकता है कोई मीटिंग हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई फॉर्म हो, कहीं कुछ करना हो, वो 3 टास्क आपको लिखने हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ आज बाहर घूमने भी जाना हो और हमने कर रखा है कि देखते हैं दोस्त टाइम मिला तो जाएंगे, उस टास्क को ज़रूर लिखें और कोशिश करें जब वो टास्क कंप्लीट हो तो उस पर टिक करें। लिखने से आपका दिमाग को याद रहता है कि मुझे अभी कितनी चीज़ें और करना बाकी हैं, और ये आपकी टास्क को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो ये वो 5 टिप्स हैं, 5 आदतें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर नज़र आता है। एक साथ नहीं आएगा, एक हफ्ते के अंदर नहीं आएगा, एक महीने के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इन आदतों में आ जाएंगे, अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ये शॉर्ट टर्म वाले जो हम काम करते हैं ना, कि सारी ज़िंदगी हम शॉर्टकट के लिए घूमा करते हैं, इसको साइड हटाइए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आदतों को बदलिए और देखिए लॉन्ग टर्म सुकून, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा एक छलावा होता है। ये बात मैंने बहुत सारे उन लोगों से सीखी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, जिन्होंने बहुत जल्दी कुछ हासिल किया है, उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ गंवा भी दिया है। आप बताइए इनमें से कौन सी आदत फिलहाल के लिए भी आप फॉलो कर रहे हैं। और मैं बता सकती हूँ, मैं सुबह उठकर पानी पी रही हूँ और अभी भी मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया है। अब आपकी बारी है कि अगर आप अभी तक पानी नहीं पी कर आए हैं तो जाइए इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक पर, आप पानी पी कर आइए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है। शान की आवाज में आप इस बेहतरीन से गाने को सुन रहे हो और मुझे लगता है ना मॉर्निंग डोज के लिए सबसे स्पेशल सॉन्ग आपको ये मिल चुका है। कितनी खूबसूरती के साथ शान ने कह दिया कि भूल जा जो हुआ, भूल जा अपने दिल को, यूं ना तू सता, जो हुआ बस भूल जा। और यही तो करना है ना बॉस, जो हुआ कल तक, जो किया, फेल हुए, पास हुए, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने माफ़ी मांग ली है तो भाई वो जो रिग्रेट है ना कि पास में हमने कुछ बहुत गलत किया हुआ है, बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, कभी कबाड़ा कर रखी है, उन सब को भूल जा। किसी ने आपका दिल दुखाया है, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ और आगे बढ़ो। और इस बार दिल का सौदा यूं मत करो, अपने पास्ट से सीखना होता है, उसे भूलना, आप चाहें तो भूल भी सकते हैं, नहीं चाहें तो उसको याद रख सकते हैं और अपने फ्यूचर में उस चीज़ की मदद कर सकते हैं, मतलब उस तरह से अपने आप की मदद कर सकते हैं कि हमने जो पास्ट में किया था वो गलतियां रिपीट में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और इसीलिए शान का मेरा पसंदीदा गाना है, जब भी दिल उदास होता है, जब भी दिल मायूस होता है और लगता है यार कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, बस शान की आवाज़ में मैं इस गाने को ज़रूर गुनगुनाती हूँ कि जो हुआ भूल जा। फिलहाल भूलना नहीं है आपको कि आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग ओडा अपनी आशुति के साथ, आपकी अपने एफएम रेडियो कैनसली 89.6 एफएम पर। और हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी जुड़े हुए हैं और जो लिख रहे हैं कि मंजिल बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्ती ज़िद पर होती है, भरोसा ईश्वर पर तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। सुप्रभात डियर लिस्टनर्स, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है आपने। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन लिखा है उन्होंने, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद उनका ही मैसेज आया है कि ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह घड़ी फास्ट चलती है। जी ऐसा नहीं है, बस सुबह सुबह हमारे अंदर की जो क्लॉक है ना, जो हमारी आदतें हैं वो हमें धीमा कर देती हैं, इसलिए सुबह का जो वक्त है वो भागता हुआ नज़र आता है। इसके बाद सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कोई टिप्स बताओ। भाई सोशल मीडिया से दूर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आपके जो फ़ोन है उसमें जो हमेशा टन टन टन टन वाली घंटी बजा करती है उसको ऑफ़ कर दें, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें, और उसके साथ ही अपने दिमाग को कुछ ऐसा काम दें जो उसे पसंद हो। आपके पैशन को फॉलो कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसा इम्पॉर्टेंट वाला काम, कुछ तो ऐसा क्रिएटिविटी वाला काम ज़रूर दे अपने दिमाग को जिसमें वो बिज़ी रहे। आपका दिमाग खाली नहीं बैठना चाहता है, और कहते हैं आपका दिमाग, जिसका दिमाग खाली होता है ना उसका दिमाग शैतान का घर होता है। ये लाइन आपने बचपन से सुनी होगी क्योंकि उस वक्त बहुत खुरापातें आ रही होती, ये भी कर ले, वो भी कर ले, कभी कभार खुद को कुछ कर ले। ये उन लोगों के साथ ज़रूर होता है जो किसी न किसी चीज़ से इस वक्त गुजर रहे हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी ट्रॉमा में है, या किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो उस वक्त अपने दिमाग को ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटिव काम दें, वॉक करें, लोगों से मिलें, खुद को एक जगह पर ना रखें, बंद करके ना रखें, दूसरों से अलग ना रखें और फ़ोन के अंदर ना लगे रहें, क्योंकि फ़ोन आपको डिप्रेशन की तरफ और लेकर जाता है। एंड सबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, सभी लिस्टनर्स को गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गुना में। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इस गाने के उस पार आते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे हम लोग कहा करते हैं कि एनवायरमेंट को बचाओ, एनिमल्स को बचाओ, एनिमल्स से जो लेदर बन रहे हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, उन्हें मत लो, लेकिन उसकी जगह पर करें क्या, क्या किसी ने कोई और तरीका निकाला है? तो जी हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मार्केट में नई चीज़ें आई हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एक ऐसे लेदर की कैटेगरी मार्केट में आ चुकी है जो आपके बड़े काम आने वाली है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है, जो थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है, बजट फ्रेंडली, लेकिन बहुत खूबसूरत। किससे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाई, सब बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर। तो बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा मेरे यानी उन्नति के साथ।
1: ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो क्या 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और भैया, हमने जाने से पहले कहा था आपसे कि अगर आप लेदर चूज करना चाहते हैं लेकिन आप क्रियोलिटी फ्री लेदर चूज करना चाहते हैं, मतलब जानवरों से बना लेदर आपको पसंद नहीं आता, आपको एक अच्छी क्वालिटी भी चाहिए प्लस बजट में चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स मेरे पास आएंगे, क्योंकि नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लेदर के बारे में जो मार्केट में आ चुके हैं, जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, जो एनिमल्स यानी कि जानवरों से नहीं बनते हैं, जिनका इस्तेमाल जो होता है यानी कि जो बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेचर की वो चीज़ें आ रही हैं जिन्हें हमने कभी गौर से देखा ही नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं और क्या नाम है, हम आपको बताते हैं।

भाई अगर आप बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लेदर मिल जाए, तो मेरे पास आपके लिए है कुछ ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाया जाए जहां पर जानवरों से लेदर ना लाए, उनको परेशान ना करे, उनको तकलीफ ना दे, उनको दर्द ना दे, और उसके बाद भी लेदर बनाई जाए प्लस मेरा बिजनेस भी हो जाए, तो आजकल इंडिया में एक नया आइडिया चल रहा है, और वो आइडिया है पेड़ों से और पेड़ों की जो फल होते हैं उनसे निकले हुए लेदर बनाए जा रहे हैं। इवन ये आइडिया बताया जा रहा है। इस आइडिया को लेकर के कई लोग सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सस्टेनेबल भी हो, एनिमल फ्री हो, क्रुएल्टी फ्री हो, लोगों को पसंद आए, प्लस बजट में हो, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस पर काम चल रहा है, सो अभी तो फिलहाल आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ ये आइडियाज बहुत कमाल के हैं, तो चाहे तो आप भी अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज होती है प्रीमियम लेदर फ्रॉम मैंगो वेस्ट। कभी आपने सोचा कि आम को खाने के बाद हम आम फेंक देते हैं, उससे भी लेदर बन सकता है? जी हाँ, ये एक आइडिया है जो बताया जा रहा है, और इस आइडिया में पता चला है भाई कि जो आम आप घर पर उगा रहे हैं, खा रहे हैं, उनसे भी लेदर तैयार किया जा सकता है। इवन कई लोगों ने आइडिया दिया है कि टोमेटो वेस्ट यानी कि टमाटर से जो कचरा निकलता है उससे भी लेदर बन सकता है। आइडियाज की अगर बात करें तो आइडियाज की कमी है नहीं, और आजकल इंडिया अपने बिजनेस माइंड की तरफ कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि हर दूसरा शख्स बिजनेस करने के ख्याल ढूंढ रहा है। और मार्केट में जब हम ऐसे कोई नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं ना, तो मार्केट में उसकी रेंज भी ज्यादा होती है, और अगर आपको डोमिनेट करना है इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट डोमिनेट करने के लिए आपको आइडियाज एकदम रिफ्रेश चाहिए, यानी कि फ्रेश चाहिए। आप वही पुरानी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते हो, जो बिस्लरी आपको पानी दे रहा है वही 20 कंपनियां और भी दे रही हैं। आप अगेन काम तो कर सकते हो, लेकिन आप बिस्लरी की तरह पॉपुलर नहीं हो सकते हो। कपड़े बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड मार्केट में हाई होती है। या तो आप अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें स्टील आता है, क्लोथिंग आती है, ये आपके स्टेशनरी के सामान आते हैं, बुक्स आते हैं, बैग्स आते हैं, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है, तो ये वो आइडियाज़ हैं, यानी कि लेदर बनाने का वो तरीका है, वो आइडियाज़ है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में आपको नहीं पता कब कौन सा इंसान नए तरीके के आइडिया के साथ आ जाए। जैसे कि एक भाई साहब हैं जिन्होंने कहा है कि वो शुगर को बनाते तो हैं, यानी कि चीनी तो बनाते हैं, लेकिन गन्ने से नहीं। वो जो मक्का आपके खेत में लगा होता है, जो आजकल भुट्टे के रूप में आपको काफी जगह मिल रहा है और बहुत पसंद किया जाता है, भुट्टा निकालने के बाद, यानी कि वो मक्का निकालने के बाद जो उसकी स्टेम बच जाती है, वो उस स्टेम से शुगर बना रहे हैं। यानी कि कॉर्न के स्टेम से चीनी बन रही है, ये उनका आइडिया था। और कमाल की बात ये है कि लैब ने उसे अप्रूव भी किया है, और ये भी कहा है कि ये डायबिटिक फ्रेंडली है, यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत

बनाने का, और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं यानी कि जो अनाज होते हैं उनको काटने के बाद, छाटने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं उनसे भी लेदर बनाया जा सकता है, यानी कि एक अच्छा सस्टेनेबल तरीका है कुछ बनाने का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो लोगों की मदद कर सकता है, जो बजट में भी होगा, जो मदद भी करेगा, जो नेचर को हार्म नहीं करेगा। क्योंकि भैया आपको भी पता है कि आजकल हमने नेचर को इतना ज़्यादा हार्म पहुँचा दिया है कि अब उसका तापमान हमें झेलना पड़ रहा है। जहां आपको कभी 30 और 32 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेलनी पड़ जाती थी, वहीं आप 50 की आप झेल रहे हैं। अगर बात करें दूसरी कंट्रीज की, तो जर्मनी जैसी कंट्रीज अपनी गर्मी से उबल रहे हैं, इसलिए रोड पर वाटर टैंक लगाए जा रहे हैं ताकि लोग उसमें आकर खुद को शांत कर सके, खुद को ठंडा कर सके। बर्लिन की पुलिस रोड पर बड़े बड़े वाटर टैंक लेकर घूम रही है, लोगों के ऊपर चलते फिरते शार कर रही है, रोड पर पानी डाल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। मजाक मत बनाना भैया कि 30 से 35 डिग्री में, हम तो यहाँ 50 में भी चाय पी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सन जमीन पर पड़ रहा है जिसकी वजह से, और वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री हुआ करता था, यानी कि ठंड के हिसाब से वहाँ पे घर बनते थे, तो एसी कूलर पंखा भी उनके पास नहीं है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इससे पहले कि ये परेशानी और ज़्यादा बढ़े, मुझे लगता है कि नेचर को बिना नुकसान पहुँचाए जो काम हम कर सकते हैं बजट फ्रेंडली, उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे बिजनेस वुमेंस हैं जो इस चीज़ के आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो प्लांट वेस्ट से कपड़े, चीज़ें और कई बार शुगर और उससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द इस आइडिया पर भी कोई काम करता नज़र आ जाए। अब आप बताइए ये आइडिया आपको कैसा लगा, क्या आपको लगा ये नेचर फ्रेंडली है और एनिमल फ्रेंडली भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह से हमने हर जगह पर नुकसान पहुंचाया है और प्लास्टिक जो हर जगह नजर आ रही है, फिर चाहे वो भारत हो, भारत से बाहर हो, हर जगह प्लास्टिक की संख्या बढ़ती जा रही है, उस दौर में प्लांट वेस्ट से कुछ बनाना या फिर प्लांट वेस्ट का इस्तेमाल करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, सिर्फ मार्केट को डोमिनेट करने के लिए नहीं, नेचर के लिए और प्रॉफिट के लिए भी, कितना प्रॉफिटफुल है, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग, और अभी आर्चना दी के साथ लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और हमारे लिसनर लिख रहे हैं कि आमाची नाम की स्टार्टअप कंपनी है जो आम से लेदर बना रही है। जी बिल्कुल, ये जो मैंने आपको तरीके बताए थे ये उन्हीं स्टार्टअप कंपनीज का ही है। एक मलाई है, एक कैक्टस से बना रहे, कैक्टस से बनाने वाला अहमदाबाद में है, फिलहाल गोंडा में कोई नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कोई गोंडा में भी बना ले। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति और मॉर्निंग का शो चल रहा है। फिलहाल मॉर्निंग के शो में आइए बात करते हैं उनकी, जिन्होंने अपने घर को नहीं चुना, जिन्होंने कुछ और चुना जो शायद हम या आप नहीं चुनते। शायद हम और आप अपना घर चुनते, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक ऐसी महिला है जिसने अपना सुहाग, अपना घर और अपने छत को लात मार दी। और इसकी पीछे की जो वजह थी वो कुछ ये थी कि उन्हें भूखे लोगों को खाना खिलाना था। जब ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड से आकर कही थी कि मुझे भूखे लोगों को खाना खिलाना है, तो उनके हस्बैंड ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी, या तो तुम मेरे साथ इस घर के नीचे, इस छत के नीचे रह लो, या तुम इन भूखे लोगों का सहारा बनो और घर से निकल जाओ। शायद आप या शायद मैं इस जगह पर होती तो शायद ये सोचते कि यार चलो घर पर ही रहते हैं, बट उन्होंने चुना घर से बाहर निकलकर भूखे लोगों को खाना खिलाना। पश्चिम बंगाल की काजली विश्वास खुद भूखी रहती थी। इनकी कहानी शुरू होती है जब ये बहुत छोटी थी और बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। गरीब परिवार में जन्म होने की वजह से घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अगर एक वक्त की रोटी मिल जाया करती थी तो दूसरा वक्त तय था कि खाली पेट ही रहना है, ना खाना मिलेगा ना रोटी मिलेगी, सिर्फ पानी पीकर काम चलाना है। अगर पानी के भी पैसे लगते तो शायद उनके पास पानी पीने के लिए भी पैसे नहीं होते। इस दौरान जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई और 15 साल की हुई तो उनकी शादी करा दी गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब और उन्होंने शादी करने के बाद सोचा कि शायद अब जिंदगी बदल जाएगी, शायद अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद अब दो वक्त की रोटी मिलेगी, शायद अब एक घर मिलेगा, एक अच्छा परिवार, एक प्यार करने वाला पति। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी वो सड़क पर अपने पति के साथ गुजरती और देखती कि कोई भूखा है जिसको खाना नहीं मिला है, जो भूख से तड़प रहा है, तो उन्हें अपनी तकलीफ याद आने लग जाती। वो कहती कि यार मैं भी तो एक वक्त में ऐसी ही थी ना, मुझे भी तो खाना नहीं मिल रहा था। और उन्हें ये तकलीफ अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो चाह रही थी कि जितने भी लोग हैं मैं उन सबका पेट भर लूं। और यही ख्याल लेकर यही बात उन्होंने अपने हस्बैंड से भी कह दी कि सुनिए मुझे ना इन भूखे लोगों को खाना खिलाना है, जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है, मैं उन्हें खाना खिलाऊंगी, इनका पेट मैं भरूंगी। ये बात बोलकर उनके दिमाग में एक ख्याल था कि मेरा पति मुझे सपोर्ट करेगा और कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, नेकी का काम है, किसी का पेट भरना बहुत बड़ी बात होती है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बट जैसा उन्होंने उम्मीद किया था वैसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ इसका उल्टा। उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि तुम्हें अगर भूखे लोगों का अन्नपूर्णा बनने का इतना ही शौक है तो या तो तुम इस घर के अंदर रह लो मेरे साथ हमारी शादी में इस छत के नीचे, या तुम अन्नपूर्णा बनो और मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ये धमकी उन्हें मिल चुकी थी, ये शर्त रख दी गई थी। और इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो सोच रही थी कि अब क्या करें। शायद उनकी जगह पर कोई और होता तो वो अपना हस्बैंड चुनता, अपना परिवार चुनता, अपना घर चुनता, बट उन्होंने चुना कि नहीं, ये भूखे लोग जिन्हें कोई खाना नहीं खिला रहा है, इनकी तकलीफ घर से बाहर निकलकर ठीक की जा सकती है, ना कि घर के अंदर। अगर मुझे कोई सही काम करने से भी रोकता है तो मैं अपना घर छोड़ दूंगी। और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने कानों में पहने जो झुमके थे वो झुमके बेचे, अपने बच्चे को लेकर एक किराए के घर में गई और रोज रोज सड़क पर बैठे भूखे लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। आज वो पूरे 100 लोगों को खाना खिलाती हैं, हर दिन 100 लोगों के लिए वो खाना पकाती हैं और उन्हें फ्री में खिलाती हैं। हर सुबह उठकर उनका सबसे पहला काम होता है 100 लोगों के लिए खाना बनाना, फिर उस खाने को पैक करना,
अपने इस खाने को उठाना, बाहर जाना, प्लस पानी की बॉटल्स लेना और उन सारी चीजों को लेकर के जो सड़क के किनारे बेचारे लाचार मजदूर या फिर वो लोग जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं हैं, जो बस भूखे रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, लोग नहीं है, उन लोगों को जा करके खाना खिलाना, ये काम कर रही हैं काजली विश्वास, जिनके नाम में ही विश्वास है, वो क्यों ना खुद पर विश्वास करें। एक बहुत इंस्पायरिंग लेडी जो शायद हमें इंसानियत सिखा रही है, जहां आजकल हम सिर्फ चीजों को देखकर नजर फेर लेते हैं और कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे से थोड़ी ना होगा, इस चीज का ध्यान तो किसी और को देना चाहिए, और पूरा इल्जाम उठा करके हम सरकार पे डाल देते हैं। वहीं इन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुत टफ था, बहुत सारा चुनौतियों से भरा हुआ था, बट हार ना मानना इन्होंने सीखा था। उनके नाम में विश्वास है और उन्होंने खुद पर विश्वास किया, लोगों को खाना बनाकर, हर दिन 100 लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें खाना खिलाने जाती है। पश्चिम बंगाल की काजली विश्वास, इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग ओडा, आपकी अपनी मॉर्निंग जॉकी के साथ, इसका नाम है उन्नति। स्टे ट्यून्ड।

मुझको भाई मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद आप भी कहने वाले हैं कि इंडिया इंडिया। जी हाँ, फिलहाल आपको पता होगा कि एशियन वर्ल्ड कप चल रहा है, यानी कि एशियन मैच चल रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मेल एंट्री लिया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एंट्री ले रही हैं, जो गेम्स खेल रही हैं, और इस दौरान इंडिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां हम कहा करते हैं कि गोल्ड नहीं आ रहा, गोल्ड नहीं आ रहा, गोल्ड नहीं आ रहा, वहीं पर इस बार इंडिया ने गोल्ड की लाइन लगा दी है। वो अलग बात है कि हमको नहीं पता है कि भैया गोल्ड इंडिया जीत चुका है, और ये बात हमें अभी तक कहीं से भी पता नहीं चल रही है। चाहे इंडियन फीमेल टीम हो या इंडियन मेल टीम, दोनों ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही हिस्ट्री बना रहे हैं। चाहे चाइना की धरती पर जाकर किसी चाइनीज को हराना हो, या फिर जापान के साथ मैच खेलना हो, या हो जर्मनी के साथ पंगे, या फिर न्यूजीलैंड के साथ 2-0 पर किसी को आउट करना हो, इंडिया इस वक्त हर एक फील्ड में अपना नाम बना रहा है। और इस बार तो सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के बाहर भी इंडिया अपना नाम बना रहा है। कैसे भाई? हाल फिलहाल में ही एक मैच हुआ है जो कि बोट का है, यानी कि पानी पर बोट चलाने का है। वहां पर इंडियन आर्मी ने अपना जज्बा दिखाया और जीत हासिल की। वहीं पर अगर योगा की बात करें कि योगा कंपटीशन में क्या हाल रहा है, तो 102 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया फर्स्ट विनर रही है। सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना आया है। जापान के पास सिर्फ 3 गोल्ड मेडल गए हैं, इंडिया के पास पूरे 114 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 102 सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के हैं। वहीं पर इंडियन विमेन हॉकी टीम्स जिसने जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड को 2-0 से बाहर किया है। हम आपको बता दें, वहीं पर इंडियन मेल टीम जो कि वॉलीबॉल में है, जो हमेशा सेमीफाइनल से ही पहले बाहर कर दी जाती थी, उसकी भी एंट्री सेमीफाइनल में हो चुकी है। जिमनास्टिक में जहां अभी तक इंडिया के पास एक भी गोल्ड नहीं था, वहीं पर जिमनास्टिक में इंडिया ने अपना पहला गोल्ड जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ज्योति यारा जी ने अपने नाम पर गोल्ड कर लिया है। विमेंस तीरंदाजी में भी इस बार इंडिया गोल्ड लेकर आया है। तो भाई जहां हम बात करते हैं ना स्पोर्ट्स की, यानी कि खेल कूद की, तो हमें लगता है यार खेल कूद में क्या ही होता है। अगर आप अपने बच्चों को जो खेल कूद पसंद करते हैं, जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, क्रिकेट के अलावा जिन्हें और भी गेम्स में दिलचस्पी होती है, और आप उन्हें घर से बाहर निकलने देते हैं, तो ये होता है। हर बार जब भी ओलंपिक्स आते हैं, हर बार जब भी गेम्स आते हैं, तो हम यही कहते हैं यार इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चाइना के बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, चाइना के बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। हम जब देखो इंडिया से बाहर वालों की तारीफ तो भर भर के करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन जैसे ही बात अपने बच्चों की आती है, हम उनसे कहते हैं कि हैं क्या रखा है इसमें, क्यों कर रहे हो ये, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, ये खिलाड़ी बनने में क्या रखा है। और ये ताना मार कर हम उनके उस पैशन को, उनके उस जज्बे को दबा देते हैं। और जब इनके जज्बे को नहीं दबाया जाता है, तब ऐसा इतिहास रचा जाता है। विमेंस हॉकी टीम हो, विमेंस फुटबॉल टीम हो, मेल्स वॉलीबॉल टीम हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, हर एक जगह पर इंडिया अपना नाम बना रहा है। आपको किसी ने बताया था ये बात? चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग हुडा, अपनी आशुमती के साथ। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, यानी कि इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। भाई आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजुनती के साथ आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले प्रोग्राम में। मैं आपसे एक सवाल करूं, सवाल मेरा ये है कि आपने आज तक बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, पैडमैन जैसे कितने नाम सुने होंगे, बट क्या आपने कभी बर्डमैन का नाम सुना है? नहीं, वो परमैन वाला बर्डमैन नहीं, एक असल जिंदगी वाला बर्डमैन जिसने अपनी पूरी जिंदगी से पक्षियों के नाम कर दी, जो पहले शिकारी था लेकिन एक ऐसा जिंदगी में मोड़ आया कि वो शिकारी पक्षी प्रेमी बन गया और उसने पक्षियों के लिए बहुत काम किए। पक्षियों के लिए काम, 2000 से ज़्यादा पक्षियों पर डॉक्यूमेंट्री की, उनकी बदौलत आज हमारे पास वाइल्ड लाइफ के लिए रूल है। जी हाँ, हम आपको बता दें जो इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आप वाइल्ड सेंचुरी देखते हैं, जो आप साइलेंट सेंचुरी देखते हैं, साइलेंट फॉरेस्ट देखते हैं, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा रोल है। कौन है ये, साइलेंट वैली का संरक्षण क्यों किया उन्होंने और क्यों आज हम उन्हें नहीं जानते हैं, ये सवाल मेरे दिमाग में कई बार आता है। आजकल हम हर किसी को जानते हैं, छोटे से छोटे इंस्टाग्राम पर आ रही वीडियो में कौन वायरल हो रहा है, कौन नहीं वायरल हो रहा है, क्या उसने कहा है, क्या नहीं कहा, ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से पता होती है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जिसने कुछ किया है, जिसने नेचर के लिए कुछ किया है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए डोनेट कर दी है, अभी तक हम उनका नाम नहीं जानते हैं। हमें ये पता है कि अक्षय कुमार ने पक्षी राजन का रोल किया था, उन्होंने रजनीकांत की फिल्म में रोल किया था, ये बात हमको याद है। लेकिन एक असल जिंदगी में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी उन पक्षियों के नाम कर दी, ये बात हमें नहीं पता है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि हम ऐसे महान शख्सियत को, ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में अब नहीं पढ़ते, नहीं जानते, नहीं सुनते, जिन्होंने अपने देश के लिए, जिन्होंने नेचर के लिए, जिन्होंने लोगों के लिए, जिन्होंने जानवरों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं भी आपसे एक सवाल भी कर लूं बैठ कर कि चलिए बर्डमैन छोड़िए, आप मुझे माउंटेन मैन का नाम बता दीजिए, फॉरेस्ट मैन का नाम बता दीजिए, शायद आपको वो भी ना पता हो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक रिवर मैन का नाम बता दीजिए, आप वो भी नहीं जानेंगे। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी इंस्टाग्राम के फेमस क्रिएटर का नाम बता दीजिए, 2 सेकंड में वो नाम सामने आ जाएगा। और यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल हम अपने सोशल मीडिया के ज़माने में, जहां हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वहां हम सिर्फ इंडिया को ट्रॉल करते हैं, इंडिया के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बोला करते हैं। बट वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और पक्षियों के लिए बहुत कुछ किया है। आइए बात कर लेते हैं उस बर्डमैन की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पक्षियों को दे दी। बचपन में शिकार करने गए थे और उन्होंने शिकार में एक छोटी सी चिड़िया को मारा था। छोटी सी चिड़िया जब उनके गन से निकली हुई, उनके बंदूक से निकली हुई गोली से घायल होकर ज़मीन पर गिर गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ भर चुके थे, क्योंकि उस पक्षी के गर्दन पर एक येलो कलर की लाइन थी, यानी कि एक पीली कलर की लाइन खिंची हुई थी। और वो इस चीज़ से बड़े हैरान कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी पक्षी के अंदर ये 2 रंग कैसे हैं? और इस बात को जानने के लिए वो सीधे मुंबई में पहुंच गए, जहां पर एक साइंटिस्ट ने उन्हें सिखाया, एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्हें सिखाया कि पक्षियों को एक अलग नज़रिए से कैसे देखते हैं, साइंस की नज़रिए से कैसे देखते हैं। तो जो लड़का अभी तक पक्षियों का शिकार कर रहा था, जो उन्हें गोलियों से मार रहा था, उसके दिमाग में अब पक्षियों के लिए प्रेम आना शुरू हो गया। उसने पक्षियों के बारे में पढ़ाई की, बर्ड के बारे में सीखा, जाना और अपनी पूरी जिंदगी उनको समर्पित कर दी। हम आपको बता दें, इन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड से जूलॉजी और पक्षी विज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त की थी। भारत लौटने पर उन्होंने नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। BNHS में गाइड के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया था। इसके बाद भारत, बर्मा और अफगानिस्तान के जंगलों के और पहाड़ों पर पैदल या साइकिल से भ्रमण करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जानना था
उन्हें जानना था कि हमारे आसपास जो पक्षी रह रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो कैसे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन से पक्षी सबसे दुर्लभ हैं, कौन से बहुत आम हैं। आज जहां पक्षी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां आज हमें अपने घर में गौरैया भी देखने को नहीं मिल रही है। आपको भी पता होगा कि बचपन में हमें बहुत ज़्यादा स्पैरो देखने को मिलती थी, गौरैया बहुत देखने को मिलती थी, मैना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, वहीं अब इनकी संख्या घटती जा रही है। और उन पक्षियों के ऊपर जानने के लिए, उनकी ज़िंदगी से जुड़ने के लिए वो अक्सर भारत के, बर्मा के, अफगानिस्तान के जंगलों में, पहाड़ों पर दिन रात बस घूमा करते थे इस तलाश में कि शायद शायद उन्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। उन्होंने पक्षियों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें पकड़ा, उनको एक छल्ले में यानी कि एक रिंग में डालकर उनको पकड़ते थे, उनके ऊपर पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और जानते थे कि क्या इनकी प्रजाति ख़त्म तो नहीं होने वाली है, क्या माइग्रेट करने वाले तो नहीं है। और वो हर उस माइग्रेटिंग बर्ड के बारे में जानना पसंद करते थे। जो चिड़िया कहीं अफ्रीका से उड़कर भारत आ रही है, कुछ अमेरिका से उड़कर भारत आ रही, उनका हर एक चीज़ के बारे में वो दिलचस्पी थी जो शायद किसी के अंदर नहीं थी। शायद लोग उन्हें उस वक्त पागल भी कह सकते थे कि पक्षियों के पीछे इतना कौन पड़ता है। बट एक शिकारी को जब प्रेम हुआ तो नेचर से इतना ज्यादा लगाव हुआ, इतना ज्यादा पक्षियों से लगाव हुआ कि उसने एक किताब तक लिख डाली। किताब का नाम था द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स। आज भी वह पक्षी प्रेमी के लिए जाने जाते हैं। हम आपको बता दें, उनके महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म भूषण से दोबारा सम्मानित किया था, यानी कि उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अफसोस की बात, हम उनका नाम नहीं जानते। इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ जो कि इंदिरा गांधी द्वारा पारित किया गया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान शामिल था। इंदिरा गांधी के सलाहकार बने थे वो, डॉक्टर सलीम अली नाम है उनका। आपने नाम शायद कभी नहीं सुना होगा, आप शायद इनको जानते भी नहीं होंगे। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को मुंबई में। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके मामा मामी ने किया था। शुरुआत में उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था और एक दिन जब उनकी एयर गन से एक अजीब सी गौरैया मर गई और उसके ऊपर जो पीला धब्बा था, बस उसी को पहचानने के लिए जब वो एक साइंटिस्ट के पास गए और उन्होंने जब बताया कि चिड़ियों को एक और नज़र से देखा जा सकता है, शिकार की नहीं, साइंस की नज़र से, और इस चीज़ से वो इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने ठान लिया कि अब वो चिड़ियों के ऊपर पढ़ेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS में उन्होंने जॉब की एज अ गाइड। उन्होंने किताब लिखी द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स। उन्होंने साइलेंट वैली का संरक्षण किया। हम आपको बता दें, आज जो आप जंगले देखा करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखा करते हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ उनका है। ये केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, एक सच्चे पर्यावरण के रक्षक भी माने जाते हैं। केरल की साइलेंट वैली के जंगलों को नष्ट होने से बचाने तक भरतपुर के केवालदेव राष्ट्रीय उद्यान को बनवाने तक का सफर इन्होंने तय किया था। और इसीलिए सरकार ने इनको, यानी कि गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पर अफसोस की बात, आज हम इनका नाम नहीं जानते। फिलहाल आपने जाना आज बर्डमैन के बारे में, यानी कि अगली बार जब आपसे कोई कहे ना कि बर्डमैन जानते हो, तो आई होप आपको परमैन का बर्डमैन नहीं याद आएगा, आपको ये बर्डमैन याद आएगा जिसने 2000 से ज्यादा पक्षियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री लिखा है। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में और जान लेते हैं कि क्या कुछ आया है आपके अपने चैट बॉक्स के अंदर, जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से। और एप्लीकेशन पर मौजूद है चैट बॉक्स। एप्लीकेशन आपको मिलता है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रेडियो 89.6 FM के नाम से। तो भाई विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैं सुन रहे हैं उन्नाव से लिखे हैं। हेलो बरेली वाली मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एंड आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। इरफान शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारे इमोजीज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में।
सुजन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, अभी तक नहीं सुना। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, आज का शो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा आपके अपने चैट बॉक्स में। और इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग, और अपनी मॉर्निंग चॉक की उन्नति के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। आपका अगला कार्यक्रम है गांव की गूंज, यानी कि वो मिट्टी की खुशबू जो शायद आपको शहर बैठे मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। हर बार की तरह गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सब मिलकर ला रहे हैं, जिसमें मधुर मधुर गीतों की जो माला है वो पिरोई गई है श्रीमती किरण पांडे की आवाज में। और आप सभी जानते हैं कि जब हम बहराइच चल रहे हैं और अवधि ना बोले तो भाई ये नहीं हो सकता है।
5: का बताई बहिनी, बहुत दिन हुई गवा। गौवा जब जावा करो ना, तब लस्तगा लाग रहा था यार बार जाए के। अब घर में बैठ जाओ, तब बुताई जाओ।
4: तो सुना आप सभी ने, आइए हम सब मिलकर चलते हैं आज बहराइच। अरे बाप रे, ये देखो श्वेता, कितनी जोर की बारिश होने वाली है।

0: अरे जरा बादल तो देखो, कितने काले काले से घिर आए हैं। बारिश तो अब होके ही रहेगी।
1: क्या बात है, क्यों तुम लोग शोर मचाई पड़ी हो? तब से सुन रही हूँ। चलो चलो, गांव भी चलना है। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और जिम्मी कहाँ है?
2: हाँ किरण दी, मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बस चाय ही पीनी है।
3: जिम्मी कितना पाउडर लगा ली हो तुम? इतनी गोरी हो तुम, तब भी इतना पाउडर लगा ली हो?

0: किरण दी, हम लोग कहाँ चलेंगे? कौन से गांव? और ड्राइवर भैया बाहर आ गए हैं गाड़ी लेके, खड़े हैं और हॉर्न जोर जोर से बजा रहे हैं।
1: चलो सब लोग निकलो।
2: जिम्मी, चाय हम लोग वहीं प्रयागपुर चलकर ही पियेंगे। और श्वेता, हम लोग चल रहे हैं प्रयागपुर दीनू काका के गांव।
3: तब तो किरण दीदी गाना बनता है कोई, उठान गीत ही सुनवा दीजिए ना।
2: अच्छा अच्छा ठीक है भाई।

0: अरे रुको रुको, यही घर है दीनू काका का। और वो देखो जमुना काकी।
1: काका राम राम, काकी राम राम।
2: कैसी हो जमुना काकी? दीनू काका मजे में है? हाँ हाँ, मजे महन, सभे मजे महन। आओ आओ बहनी, तोहरे सब मजे महाओ। आज यहाँ कैसे बिटिया लोग?
0: काकी आयन है तुसे ओ काका से भेटाए।
2: अरे तुहार काका हमार कोनो बात नहीं सुनत हैं, या को कहा नहीं मानत हैं। हम कहें कि हमका एक ठो जेवर बनवाए दो, तब कहें कि जेवर का करी हो।

0: काकी गुस्सा ना हुआ करो काका से, काका आपसे बहुत प्यार करते हैं।
1: अरे बहनी हमार करम वे फूट है दादा, का करी।
2: हे काकी कुछ ना करो, तहारी दशा देख के हमें तो एक गाना याद आवत है, करम हमार फूटा सुनो मोरी अम्मा।

0: काकी, सबको प्यार से रहना चाहिए और इतना गुस्सा ना करो। देखो काका सबके लिए चाय बना कर लाए हैं और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी लाए हैं।
1: लगता है भाभी बना रही है। अरे आओ अंदर तो आओ, देखो गांव में कितनी साफ सफाई है, मक्खी मच्छर कुछ दिखाई नहीं दे रहे।
2: बारिश के मौसम में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। अरे साफ सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए, पर बारिश में कुछ ज्यादा ही सफाई करनी चाहिए। इसी मौसम में फंगस वगैरह ज्यादा पड़ती है और इन्फेक्शन तो तुरंत होता है।
1: अरे काका तो काकी को मनाने में ही लगे हैं, वो देखो।
3: गढ़ाए देव दुई झुलनी, गढ़ाए देव दुई झुलनी, हो धना काहे

0: देखो साफ सफाई तो सभी को रखना चाहिए अपने आसपास। लोग क्या करते हैं, खुद का घर तो साफ कर लेते हैं और सारा कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ये बात ठीक नहीं है।
1: सही कहा, कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें ही डालो, सफाई रखो। देखो इस समय डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई पेट से परेशान, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार, मच्छर भी गंदगी में ही पैदा होते हैं, तो सफाई जरूरी है भैया।
2: दीनू काका जाइए, काकी को कहीं घुमा लाइए, सिनेमा दिखा लाइए, तो काकी खुश हो जाएगी, है ना जिम्मी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा, अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा। हे राजा हर

0: चलो सब लोग बहराइच, शांति चाची के यहाँ भी तो चलना है, नहीं तो शाम हो जाएगी, लौटना भी तो है।
1: शांति चाची के पोता हुआ है, अरे कोई कुछ लाया है देने के लिए?
2: हाँ हाँ, एक ड्रेस मैंने ले लिया था रास्ते में ही, 0 साइज का।
0: चलो थोड़ी मिठाई खरीद लेते हैं।
2: फाइनली पहुँच गए शांति चाची के घर। अरे ये क्या, वहाँ कुछ नाच गाना हो रहा है।

0: गांव में अक्सर लोग किसी फंक्शन में नाच बंधाते हैं। आओ अंदर आओ, नाच देखा जाए।
1: आज बच्चे की छठी है तो सब लोग आए हैं और बच्चे की बुआ मीरा दीदी काजल लगा रही हैं।
2: ओके।
3: अरे हाय, देख

0: मजा आ गया गांव घूमने में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गांव से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए और यहाँ आकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए।
1: सही कहा किरण दी आपने, हम शहर को निकल जाते हैं और गांव में बड़े बूढ़ों को तो भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: अरे बहनी, सभे आए हो तो कुछ गा देती हो, हमरे नाती का आज छठी है।
3: हे चाची, मैं किरण बहनी आई है, वहीं से कहती हूँ नाई सभी मिलके गाय दिए।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

नमस्कार आदाब, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है अब आपकी कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और ये खूबसूरत सी पहल है रेडियो ज्ञानसली और स्मार्ट एनजीओ की, जिसके अंदर बात होती है स्वास्थ्य की, आपकी अपने सेहत की। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि, और आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की, उस आवाज की जो हमें बचपन से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है, हमारा वो साइलेंट हीरो जो हमारे लिए चुपचाप बहुत सारे काम करता है, जिसके बारे में आप अक्सर बातें नहीं करते हैं। आपको भी याद होगा कि आपके शरीर में एक छोटा सा अंग है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, सारे विटामिंस को, आयरन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपके अंदर आने वाली हर एक चीज को, आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको कहीं ना कहीं फिल्टर कर रहा है, आपके बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। आजकल की दुनिया में जहां हम डिटॉक्स करने के लिए बाहर से ड्रिंक मंगा रहे हैं, वही काम हमारा लिवर बहुत सालों से हमारे लिए करता आ रहा है। हमारा लिवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जाना जाता है, चीजों को अब्सॉर्ब करता है, यानी कि न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है। लेकिन आजकल की इस बदलती दुनिया में जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो हमारा यही साइलेंट हीरो, यानी कि हमारा लिवर है। तो भाई सृष्टि, तुम

0: बताओ आज नाश्ते में क्या किया था?
1: मैम बस वही सब्जी रोटी।
0: सब्जी रोटी, ओके। भाई आजकल नाश्ते में जब भी हम नाश्ता करने बैठते हैं तो मुझे लगता है लोग सब्जी रोटी, ब्रेड पकौड़े, समोसे, न जाने क्या क्या ऐसा खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है,
1: क्योंकि वो नुकसान करता है हमारे लीवर को भी।
0: अब ये बात तो हर दूसरा बंदा जानता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें नुकसान करती हैं, इसके बाद भी हम खाते हैं क्योंकि हमारी जुबान पर जो चटक टेस्ट लगता है ना, वो टेस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है, होता है ना
1: मैम? वो तो सबको ही होता है।
0: बिल्कुल, एक्चुअल में जो भी चीजें हम खाते हैं उसका असर आपके लीवर पे भी पड़ता है, और आजकल क्योंकि लीवर से जुड़ी कई सारी बीमारियां जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, मार्केट के साथ साथ आपके शरीर के अंदर भी आ चुकी है। यूं तो अब हर कोई आपको जागरूक कर रहा है कि खाने के पीछे लेवल्स को पढ़ना शुरू कर दो, क्या क्या है उसके अंदर, क्या डाला गया है, क्या नहीं डाला गया है, शुगर मत खाओ, हनी मत खाओ, पाम ऑयल मत लो, न जाने कितनी ही बातें हम सुनते हैं। बट इसके अलावा एक और चीज है जो आपको हो सकती है, भाई लीवर इन्फेक्शन का नाम आपने कभी सुना है कि लिवर में इंफेक्शन हो गया हो, या किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि ये सारी चीजें आप मत खाना क्योंकि आपको लिवर में इंफेक्शन हो गया, और आप सोचते हो लिवर इंफेक्शन ये क्या चीज होती है, क्या ये बहुत कॉमन है? क्योंकि फैटी लिवर के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं और कहते हैं कि फैटी लिवर आजकल बहुत आम हो चुका है, हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर होता है और वो ये बात जानता भी नहीं है, बट क्या लिवर इंफेक्शन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो भाई आज आप जानेंगे लिवर इंफेक्शन के बारे में। जैसे एक वक्त में मैं भी गुजर चुकी हूँ जिसका असर ये है कि अब मेरा स्टमक हाइपर सेंसिटिव हो चुका है। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन, मेरे यानी उन्नति के साथ।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को, आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
2: यानी कि ये जो SNCU होता है जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
2: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
2: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
2: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
0: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
0: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ। दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
3: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
0: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
3: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
3: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
0: जी
3: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी
0: जी,
3: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
0: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
3: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाए और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
0: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
3: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जानें और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
3: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
3: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: स्वागत एक बार वापस से आप सबका आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगनी में। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जो कि रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ की खूबसूरत पहल है। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज इस दोपहर में हम बात कर रहे हैं आपके लिवर की। दोस्तों, हम सब अपनी फिटनेस पर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैलोरी काउंट कर रहे हैं, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा रहे हैं, बाहर की चीजों को खाना बंद कर रहे हैं। ऐसा आजकल लोग करते जा रहे हैं, इवन इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां पुराने जमाने में लोगों को शराब पीने की आदत बहुत ज्यादा लग चुकी थी, बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट और गुटखा, पान मसाला खाने की आदत हुआ करती थी, वहीं पर आने वाली जनरेशन अपने प्रोटीन और फाइबर पर ध्यान देने लगी है। वहीं पर आने वाली जनरेशन ने अल्कोहल कंज्यूम करना धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जो कि सही भी है। बट कई बार लिवर इन्फेक्शन होने की एक खास वजह होती है। बस ये नहीं होता कि लिवर इन्फेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आपने शराब पी थी, लिवर इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो गया क्योंकि आपने ऐसा कुछ खा लिया था। कई बार लिवर इन्फेक्शन बच्चों के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं जब मात्र 1.5 या 2 साल की थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे थे, डायरिया हो रहा था और मेरी मम्मी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द का उठना और अचानक से पेट में दर्द एकदम खत्म हो जाना। जैसे ही पेट में दर्द होने लगता था, वैसे ही मैं रोने लग जाती थी और जैसे ही वो दर्द शांत होता था, अगले 2 मिनट के अंदर मैं हंसने लग जाती थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये नाटक कर रही है, बट मेरी मम्मी जो कि अवेयर थी इस मामले में, और उन्होंने कहा कि भाई ये कोई नाटक तो नहीं हो सकता, कोई 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा नाटक नहीं कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने सीधा मुझे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर के पास वो लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ मामूली टेस्ट लिखे और टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया, यानी कि मेरे लिवर में कुछ तो है जो इन्फेक्शन का कारण बन चुका है। आप ये भी नहीं कह सकते कि 1.5 साल के बच्चे ने शराब पी होगी जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ही इसको कुछ बीमारी हुई है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, अगर आपने दूषित पानी पिया है या फिर दूषित खाना खाया है या कोई बैक्टीरिया जो आपके हाथ के जरिए आपके मुंह के अंदर चला गया है, जिससे एक बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो एक वयस्क की तरह बिल्कुल भी नहीं होती, वो कमजोर होती है और इसीलिए बच्चों का बीमार पड़ जाना बहुत आम माना जाता है। इवन उनका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस दौरान जब डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको लिवर इन्फेक्शन हो गया है, तो मम्मी को लगा कि भाई ये बहुत बड़ी बीमारी है, बट उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, लिवर इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है और इसकी कुछ दवाइयां होती हैं जो आपको चलानी पड़ेंगी। लगातार कुछ दिनों तक, एक महीने के आसपास दवाखाने के बाद मुझे कुछ आराम मिला। धीरे धीरे मेरी दवाई बंद कर दी गई और मैं बड़ी होने लगी। बड़े होते होते होते होते मुझे समझ में आया कि जब मैं लगभग 8 से 9 साल की हुई थी, तो हर रात जब भी मैं कुछ खाती उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। अब ये बात तब की है जब मैं थी बरेली में, यानी कि अपने नानी के पास, और उस दौरान रात में अक्सर हफ्ते में 2 से 3 बार मुझे वॉमिट हो जाती। मैं सो रही होती थी और अचानक से इस आवाज के साथ उठती कि नानी मुझे उल्टी हो रही है, और नानी कहती भाई रोज रात में उल्टी क्यों आ रही है। इस बात से वो भी बहुत परेशान थी। एक रोज ऐसा ही हुआ कि जब मैं गई थी किसी पार्टी में और बाहर से खाने के लिए मेरा मना कर दिया गया था कि रोज रात वॉमिटिंग हो रही थी, तो नानी को लगा हो सकता है मुझे बाहर का खाना नुकसान कर रहा हो। अब एक घर में पार्टी चल रही थी, पार्टी में बने थे छोले भटूरे। छोले भटूरे वो तो घर के बने थे ना, और इसी जिद पर मैं अड़ चुकी थी कि घर का बना तो मैं खा ही सकती हूँ, बाहर का नहीं खा सकती। मैंने वो छोले भटूरे खाए और वापस से नानी के मना करने के बाद भी उनको खा पी कर आराम से डकार लेकर घर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचे और रात में सोए, रात के 12 बजे फिर से मुझे वॉमिट हुई, और इस बार नानी ने सोच लिया कि भैया बहुत हो गया, बाहर का खाना तो नहीं खाया था, घर का खाना खाया था, इसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा और अगले ही दिन मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अगेन मेरा चेकअप कराया और उन्होंने बताया कि जो लिवर इन्फेक्शन मुझे बचपन में हुआ था वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरे बॉडी के अंदर है और मेरे लिवर को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से मुझे बार बार ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे बार बार डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और जब भी मैं कोई चीज बाहर की खाती हूँ या कोई बहुत ज्यादा ऑयली बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें मैं खाती हूँ तो मेरी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या, इसके लिए मेरे बाहर का खाना हर एक चीज बंद हो गया। अब बाहर के खाने में वो हर एक चीज आती है जिसको जो आपको बेहद पसंद हो, जो एक बच्चे को बेहद पसंद हो, जिसमें पैकेट वाले फूड आइटम्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, बाहर से बनी छोले भटूरे, समोसे, टिक्की, पानी बताशे, ये हर एक चीज मेरी बंद कर दी गई। 12 साल के होने के बाद जब इनको धीरे धीरे स्टार्ट किया गया तो इसी डर के साथ स्टार्ट किया कहीं ये फिर से दोबारा से ना हो जाए, बट ये दोबारा नहीं आया। लिवर इन्फेक्शन तो मेरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन इसके अलावा जो मुझे तोहफे में मिला वो ये था कि मेरा स्टमक यानी कि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया। इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो चुका था कि एक आम चीज़ जो दूसरा इंसान खा सकता है मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसमें ब्रेड बन ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे अब डाइजेस्ट नहीं होती। कई लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि जब मैं किसी से कहती हूँ मुझे ब्रेड डाइजेस्ट नहीं होता, एंड वो कहते हैं ब्रेड किसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं दूध नहीं पी सकती क्योंकि मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हूँ। हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से बचपन से ही एक तो मुझे दूध पीने के बाद डायरिया हो जाता था, जब भी मैं खाली पेट दूध पीती थी मुझे या तो लूज मोशंस हो जाते थे या तो मुझे डायरिया हो जाता था। बट ये बात मुझे बचपन में समझ में कभी नहीं आई कि दूध पीने की वजह से ऐसा क्यों होता है। अब मैं नानी से ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं दूध पीने की वजह से प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि ना मुझे खुद पता था ना उन्हें ये बात बताई मैंने कभी, तो वो ये बात कभी जान भी नहीं पाई कि दूध मुझे नुकसान कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई, 2020 तक आते आते मैंने समझा कि दूध मुझे सिर्फ डायरिया या लूज मोशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हैवीनेस भी दे रहा है। और बाद में समझ में आया कि मेरी जो गट लाइनिंग है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर रही है वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हो चुकी हूँ। तो दूध की बनी कोई भी चीज जिसमें लैक्टोज आता है वो मेरे पेट को इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज मोशन, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ या फिर ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है और वो ब्लोटिंग 15 दिन से पहले जाती भी नहीं है। अब मैंने भाई दूध तो खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन दूध के अलावा भी दूध से बनी चीजें मुझे धीरे धीरे नुकसान कर रही थी, जिसमें आइसक्रीम आ रही थी, जिसमें आपकी बनी मिठाइयाँ आ रही थी, जिसमें बर्फी आ रही थी, ये सारी चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा नुकसान कर रही थी। धीरे धीरे इन्हें भी बंद किया और अपनी पसंदीदा चीज जिसे मैं खीर कहती हूँ और उसको भी खाना मेरा बंद हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया कि अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट है तो आप आम इंसानों की तरह आम दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप आम दूध का सेवन नहीं कर सकती। ये बात दूसरों को समझाने में बड़ी मुश्किल होती है। जो इंसान जो बचपन से हम दूध पीकर बड़े होते हैं, जब हम किसी को ये समझाते हैं कि नहीं दूध मुझे नुकसान कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अगर दूध नहीं पिया तो तुम क्या करती हो, तुम क्या पीती हो। और इसका पीछे का जब उनको कारण समझाया जाए कि मेरा स्टमक काफी हाइपर सेंसिटिव हो चुका है चीजों को लेकर के, प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में जो शायद आप कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम आता है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आता है, तली हुई पूड़ियाँ आती हैं, इन सारी चीज़ों को मैं एक अच्छी खासी मात्रा में कंज्यूम नहीं कर सकती। और इसकी वजह यह है कि एक वक्त में मुझे लिवर इन्फेक्शन रहा था और वो 4-5 सालों तक लगातार चला था, जिसकी वजह से आज मैं इस हाइपर सेंसिटिविटी से गुजर रही हूँ। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ये तो मेरी एक छोटी सी कहानी थी, मेरी एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, बट हो सकता है आप भी उनमें से एक हों जिनको लिवर इन्फेक्शन की कभी प्रॉब्लम रही हो, या आप भी लैक्टोज इनटॉलरेंट हो सकते हैं। तो ये लिवर इन्फेक्शन है क्या और ये किस किस टाइप का होता है, किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, आज इसको जानेंगे आपके अपने स्वास्थ्य संगनी में। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और इसके बाद मिलते हैं आपसे, बात करते हैं लिवर इन्फेक्शन के बारे में, और तब तक के लिए सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो ज्ञानासली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
6: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
7: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
6: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
7: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
6: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
7: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
6: जी।
7: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगी तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
6: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
7: देखिए आकांक्षा जी ये सच है
6: जी
7: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
6: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है।
7: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
6: जी।
7: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
6: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है।
7: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
6: जी।
7: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
6: जी,
7: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
6: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
7: जी जरूर
6: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
7: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
6: जी।
7: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
6: जी,
7: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
6: जी।
7: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
6: जी,
7: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
6: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
7: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
6: जी।
7: यही बहनें त्वचा पर सुन दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
6: जी।
7: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
6: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
7: देखिए खानसा जी
6: जी,
7: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
6: जी,
7: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
6: जी,
7: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
6: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
7: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
6: जी।
7: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
6: बिल्कुल,
7: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
6: बिल्कुल,
7: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
6: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
7: जी आकांक्षा जी
6: जी। मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
7: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
6: जी।
7: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
7: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है
6: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
7: देखिए आकांक्षा जी
6: जी,
7: मेरा संदेश बहुत साफ है
6: जी।
7: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
6: जी।
7: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
7: जी धन्यवाद मैम।
6: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: हां जी, एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.65 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जो कि स्मार्ट NGO रेडियो कैनसली की प्यारी सी पहल है, जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत की। और आज हम बात कर रहे हैं लीवर संक्रमण यानी कि लीवर इन्फेक्शन की। लीवर इन्फेक्शन से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, और अगर आप इसे समय रहते ना पता लगाएं और इसकी दवा ना कराएं तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ये संक्रमण अक्सर चुपचाप बढ़ते हैं, जिसके लक्षण देखने से पहले ही लीवर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के लीवर इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक तो आता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा आम है, जिसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस ABCDE। वायरल हेपेटाइटिस ए क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर जब आप दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं और अगर वो दूषित भोजन आपके लिवर तक पहुंचता है और उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसे हेपेटाइटिस ए कहा जाता है, जो कि एक तीव्र संक्रमण है जो आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। ये पीलिया, थकान और पेट दर्द जैसे लक्षण को पैदा करता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। ये वायरस लीवर में छुपकर बैठा रहता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये लीवर के लिए साइलेंट किलर या फिर छुपा रुस्तम है। ये सालों तक कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाता। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो भी जाता है तो भी सालों तक आपको कोई लक्षण नहीं मिलता, पर धीरे धीरे लीवर को अंदर से कमजोर करता रहता है। आपका लीवर अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और बाहर से कोई भी लक्षण नहीं आएगा। ये होता है हेपेटाइटिस बी। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि भारत में आ जाकर इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसके टेस्ट करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी अक्सर लीवर साइरोसिस या लीवर कैंसर का भी कारण बन जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं अब हेपेटाइटिस सी की। ये बिल्कुल बी जैसा ही खतरनाक है, पर इसकी कोई भी वैक्सीन हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक लीवर में रहकर लीवर को डैमेज करता है। हालांकि मेडिकल साइंस में इसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयां इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात करें हम हेपेटाइटिस डी की, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये उन्हीं लोगों को होता है अक्सर जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका हो। ये बी के साथ मिलकर लीवर को अक्सर डबल नुकसान पहुंचाता है। और अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई, जो कि बिल्कुल ए की तरह ही होता है, ये गंदे पानी से फैलता है। ये आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और मेनली जो हमें हेपेटाइटिस देखने को मिलता है वो हेपेटाइटिस ए ही होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए अक्सर बच्चों के अंदर ज्यादातर नजर आता है, क्योंकि बच्चे किसी भी तरह का पानी पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, कुछ भी उठाकर खा लेते हैं और उनके मुंह के जरिए ये वायरस उनके लिवर तक पहुंचता है और उनके लिवर को कमजोर करता है, जिसे हम आम भाषा में जॉइंटिस कहते हैं, यानी कि पीलिया का हो जाना, पेट में दर्द होता है, फिर बच्चों को पानी भी हजम नहीं होता। तो अगर आपको कभी भी हेपेटाइटिस हुआ है तो हेपेटाइटिस के ये कुछ मुख्य कारण हैं ABCDE, जिनको आपने समझा। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शन की जो जीवाणिक होते हैं। जीवाणु संक्रमण से लीवर में फोड़े पड़ जाते हैं जो लीवर के अंदर मवाद उत्पन्न करते हैं। ये फोड़े शरीर के अन्य भागों में संक्रमण का कारण हो सकते हैं जो लीवर तक फैल जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं परजीवी संक्रमण की। परजीवी संक्रमण भी लीवर को प्रभावित कर सकता है, जिसमें अमेबिक लीवर फोड़े जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह संक्रमण परजीवी से होता है। यह आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से ही फैलता है। उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है बुखार, ठंड लगना, पेट में दर्द होना या बहुत ज्यादा उल्टियां होना या आपका लीवर का बढ़ जाना। इसके अलावा एक और आता है जो शायद आपको ना पता हो, उसमें आता है फंगल संक्रमण। लीवर में फंगल संक्रमण बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होती है उन्हें लिवर में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हम आपको बता दें ये वो सारे इन्फेक्शन हैं जो आपके लिवर को प्रभावित कर सकते हैं जिसके कारण आपका लिवर इन्फेक्टेड हो सकता है। और अब बात करें इनके लक्षणों की यानी कि लिवर इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो क्या संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण नजर आते हैं। सबसे सामान्य लक्षण ये होता है कि आपको बुखार आता है। अक्सर संक्रमण का पहला संकेत बुखार ही होता है। हम आपको बता दें अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको बुखार आता है। बुखार का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। बुखार का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कोई तो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस एंटर कर चुका है जिससे आपका शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको हराने के लिए ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है जिससे वायरस हार जाए या मर जाए। अगर बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन अभी तक आपकी बॉडी से नहीं गया है और अब आपको उपचार की जरूरत है। इसके बाद आता है थकान। लगातार थकान और ऊर्जा की कमी सामान्य लक्षण है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपको लगातार ऊर्जा में कमी यानी कि एनर्जी आपकी कम लगती है, आप सोकर उठते हो इसके बाद भी आपको थकान है, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो इसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका शरीर किसी ना किसी संक्रमण से अंदर ही अंदर लड़ रहा है और आपका खाना ठीक तरह से नहीं पच रहा, आपके बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपके लिवर से जुड़े हुए कुछ स्पेशल लक्षण यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जो तब नजर आते हैं जब लिवर में ही कोई दिक्कत होती है। पहला आता है पीलिया। हम आपको बता दें बिलिरुबिन के निर्माण के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो आमतौर पर लिवर द्वारा बनाया जाता है। ये लिवर की खराबी को प्रमुख संकेत देता है यानी कि अगर आपके लिवर में कोई दिक्कत है तो साफ तौर पर ये बात क्लियर करता है यानी कि पीलिया, आपके स्किन का पीला पड़ना, आपकी आंखों का पीला पड़ना, आपके नेल्स का पीला पड़ना, ये साफ तौर पर बताता है कि आपका लिवर बिलिरुबिन नाम का ये पदार्थ बहुत ज्यादा बना रहा है और इसके कारण ही आपका शरीर पीला पड़ रहा है और ये लिवर खराब होने का प्रमुख संकेत माना जाता है। इसके अलावा आता है गहरे रंग का पेशाब। अगर आप लगातार दिन में काफी ज्यादा पानी पी रहे हो और इसके बाद भी आपके टॉयलेट का जो कलर है वो बहुत डार्क येलो होता है या फिर किसी भी तरह का डार्क होता है तो हम आपको बता दें ये इसका कारण है कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपके नसों के अंदर जहां पर आपका ब्लड घूम रहा है उसके अंदर बिलिरुबिन का स्तर बढ़ चुका है जिसकी वजह से आपके पेशाब का रंग गहरा हो चुका है। हल्के रंग का मल। हम आपको बता दें पित्त के अपर्याप्त प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप मल का रंग हल्का हो जाता है। त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली होना। त्वचा में पित्त लवाड़ों के जमा होने से खुजली हो सकती है। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है बिना किसी वजह के, अगर आपने कोई भी चीज नहीं खाई है जिससे आपको एलर्जी हो या कोई और कारण नहीं है और आपको लगातार इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके लिवर में कोई ना कोई दिक्कत है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मतली या उल्टी का होना। अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मुझे लिवर इन्फेक्शन हुआ था तो मुझे रात में अक्सर वॉमिटिंग हुआ करती थी। मैं कोई भी चीज़ खाती थी तो रात में जैसे ही सो जाती थी, सोने के बाद मुझे वॉमिट हो जाती थी। बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रात में सोते वक्त ही हो, आपको किसी भी वक्त उल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आपको बार बार उल्टी हो रही है तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और डॉक्टर के पास जाना है। बात करते हैं पेट में दर्द का होना। पेट में दर्द होना, बेचैनी होना या आपके ऊपरी दाहिनी हिस्से में दर्द होना, आपके लिवर के पास सूजन होना या जलन का बहुत ज़्यादा होना, ये वो सारे आम कारण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है या आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। भूख की कमी। संक्रमण से भूख कम हो जाती है जिससे वजन बहुत तेजी से घटना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जिनको लिवर इन्फेक्शन होता है अक्सर वो खाना नहीं खाते या फिर जिन्हें जॉइंटिस होता है यानी कि हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होती है, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। उन्हें अक्सर भूख नहीं लगती है। लोग उनसे पूछते हैं कि भैया खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उनका सीधा जवाब होता है कि यार भूख नहीं लगी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप पहले खाना खाते थे, अच्छी खासी मात्रा में खाते थे, बट अचानक से आपके खाना खाने की मात्रा कम हो गई है और आप पहले की तरह खाना नहीं खा पा रहे हो और आपका वजन भी बहुत तेजी से घट रहा है, तो ये बताता है कि आपके लिवर में या आपके पाचन तंत्र में कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा आता है पेट में सूजन का होना। क्योंकि भाई लिवर आपके पेट के अंदर होता है तो लिवर में सूजन आती है, प्लस आपको इन्फ्लामेशन आपके अपने पेट के ऊपर नजर आती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। सूजन अक्सर आपको अपने पेट के ऊपर अगर नजर आ रही है और वो टाइट टाइट है यानी कि दबाने पर वो बहुत टाइट महसूस हो रही है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, पेट में दर्द भी है, दाहिनी ओर ज्यादा दर्द है, भूख का कम लगना है, तो भाई ये वो सारी कमी है जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में दिक्कत है। पेट में सूजन के साथ साथ अगर आपको लिवर इन्फेक्शन है तो आपके पैरों में भी सूजन आ सकता है। अगर आपके पैरों में सूजन सामान्य से ज्यादा है, अगर आपने कोई काम नहीं किया है और लगातार हफ्तों दो हफ्तों से आपके पैरों में सूजन है तो ये बताता है कि आपके लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इसी के साथ अगर आपको कहीं चोट लग गई है और आपका बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो ये भी एक लक्षण होता है जो ये बताता है कि आपका लिवर अंदर से खराब हो रहा है। खराब लिवर रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन का कम उत्पादन करता है जिसके कारण आपका खून बहुत ज्यादा बहता है। एक सामान सी चोट लगने पर भी अगर आपका हाथ चाकू से भी कट गया है या फिर हल्की सी पिन की निप भी उसके अंदर चली गई है तो बहुत ज्यादा खून बहता है, एक आम से ज्यादा खून बहता है। और अगर ये बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि लिवर वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है जिससे खून ना रुक सके। तो भाई ये वो सारे कारण हैं जो ये दर्शाते हैं, वो सारे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और इन सबको नजरअंदाज नहीं करना होता है। अगर आप इनमें से किसी एक भी लक्षण को देखते हैं, पीलिया, भूख का कम लगना, पेट में दर्द होना, सूजन आना, पैर में सूजन आना, पेट के अंदर इन्फ्लामेशन, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपना टेस्ट जरूर से कराएं। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली की है, आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि अपनी आरजे नदी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं आपके इस सेहत के कार्यक्रम में लिवर इन्फेक्शन के बारे में, जिससे मैं भी काफी ज्यादा परेशान थी और हो सकता है आपके अंदर भी इनमें से कुछ लक्षण नजर आते हों। फिलहाल बात कर लेते हैं कि लिवर इन्फेक्शन किन को ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम बात करें आपके जीवन शैली की, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा शराब का उपयोग करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लगातार शराब के सेवन से लीवर में सूजन का होना, फैटी लीवर का होना, सिरोसिस का होना पड़ सकता है। शराब आपके सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये बात आपको हर दूसरा इंसान बताता है, इवन आपके घर वाले भी आपको ये बात बताते हैं। और मुझे पता है आपको भी ये बात पता होती है कि शराब हमारे सेहत के लिए, हमारे लीवर के लिए कितना ज्यादा खराब है। इसके बाद भी कई लोग शराब का सेवन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जी, हो सकता है कि आपको सामने से वो लक्षण नजर ना आ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कुछ लक्षण फैटी लीवर के, कुछ लक्षण हेपेटाइटिस के आपको नजर नहीं आते हैं, बट अंदर से आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। आजकल लोगों के अंदर फैटी लीवर बहुत ज्यादा पाया जाता है। फैटी लीवर का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने बहुत ज्यादा फैट ले लिया, अगर आप अल्कोहल भी ले रहे हैं तो भी आपको फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा आती है नशीली दवाइयों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिना नशीली दवाएं खाए बिना नींद नहीं आती, अगर आप उनमें से एक हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नशीली दवाएं आपके लीवर को कमजोर करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नशीली दवाएं लेते हैं, नींद की दवा बहुत ज्यादा लेते हैं बिना कारण, बस ये सोचकर कि नींद की दवा ले लेने से मेरी नींद अच्छी हो जाएगी और आप अपनी नींद को सिर्फ नींद की दवाइयों के ऊपर ही छोड़ रखे हैं, तो भैया आपको भी लीवर की इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नशीली दवाइयां लेते हैं तो ये सब मिलकर आपके लीवर को परेशान करते हैं, नुकसान करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिसके कारण आपको हेपेटाइटिस बी सी डी होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको बता दें, अगर आप ड्रग्स लेते हैं यानी कि अगर आप दूषित सुइयों का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिवर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका खान पान अच्छा नहीं होता। भाई, लिवर हमारा मांगता है हमसे अच्छा खाना, हमारा बॉडी हमसे कहते हैं कि कुछ ऐसा खाओ जो हमें परेशान ना करे, जिससे हम सुरक्षित रहें। बट आजकल जिस तरह से हम खाना खाते हैं वो मेनली होते हैं तले भुने, बाहर की चीजें हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसमें पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे लिवर को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और सिर्फ लिवर को नहीं, ये हमारी आंतों को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसका असर आपकी किडनी पर भी पड़ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च वाली चीज़ें खाते हैं, तो आपका लिवर इससे डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, आपके पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर आपको अक्सर सलाह देते हैं कि सब्जियों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें, कार्ब्स का सेवन थोड़ा कम करें, और कोशिश करें कि सब्जियां जब आप पका रहे हों तो उनमें 1-2 लीटर तेल ना डालें, 1-2 चम्मच डालें, क्योंकि आपकी कैलोरीज भी मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आप उनमें से हैं जो नॉन अल्कोहलिक हैं लेकिन फैटी लीवर आपके अंदर नजर आ रहा है, तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं। क्योंकि जब आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं तो आपका जो खाना होता है वो दूषित होता है, आपका जो पानी होता है वो दूषित होता है, और इससे हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि भाई हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाने और पानी से ही होता है। तो अगर आप अपने आसपास अच्छी सफाई नहीं रखते हैं और आपको लगता है सिर्फ घर साफ कर देने भर से ही ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, घर का कूड़ा उठा करके अक्सर आप अपने बगल वाले प्लॉट जो खाली पड़े होते हैं उनमें फेंक आते हैं और सोचते हैं इससे तो सब कुछ ठीक हो गया ना, हमें तो अपना घर साफ कर लिया, अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
3: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसके जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
4: नमस्ते आरजी
3: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
5: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
4: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
3: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
5: बिल्कुल।

0: सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
1: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
0: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
1: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है, मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसको प्यास लगे, तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए?
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीख कर पिता भी त्वचा से

0: त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
1: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
2: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
1: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
2: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
0: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
2: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
1: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें, माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
2: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
1: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
2: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
0: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
1: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
2: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
0: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
1: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
0: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
1: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
2: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
0: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
1: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
2: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। 5वां, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
1: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
2: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: पहला दूध पहला प्यार
1: पहला घंटा जीवन का आधार
2: माँ का साथ पिता का हाथ
1: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत
2: सेहत सही लाभ गई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो भाई जल्दी से आ गए हैं आज हम लोगों का मन हुआ कि हम लोग कोई गाना वाना नहीं चलाएंगे, आज हम लोग जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि एक अंदर से एक बेचैनी थी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की।
4: बिल्कुल, तो बेचैनी को कर लिया है दूर और चढ़ गया है सुन सहेली का सुरूर।
3: देखा, मुझे पता था कि जहाँ पर ये लास्ट में रुरूर रुरूर वाला होता है ना, तो वो सुरूर ही होता है।
4: बिल्कुल।
3: तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएं। हम लोग आ गए हैं दोनों लोग, यानी कि आपकी पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
2: सुन सहेली
3: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई अब आज से हमने एक बार और चेंज कर दिया प्रोग्राम का शेड्यूल, क्योंकि सबसे पहले होता था कि हम लोग एक सॉन्ग आपको सुना देते थे, लेकिन अब वो दया दृष्टि हम लोगों ने कर दी है ख़त्म, यानी कि आज से हम अपनी आवाज़ को सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, आपसे हालचाल लेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे। क्यों अंशिका?
4: बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हर चीज को अपडेट होते रहना चाहिए।
3: हाँ, हमारी फोन भी जब देखो बहुत ज्यादा भर जाती है तो हम अपडेट करते हैं ना अपडेट।
4: बिल्कुल मैम,
3: तो बस यही मान लीजिए कि हमारी फोन जो है वो अपडेट होने वाली है, हो चुकी है। और आज अंशिका ने कहा है कि मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ये सुनने को मिला आज।
4: और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने देखा भी आज,
3: देखा तो इसीलिए इसे पलट के देखा था, और मुझे लगा ये मुझे क्यों देख रही है पलट के ऐसे,
4: तो पलट के देखा और बिल्कुल पलट के देखे तेरा ध्यान किधर है। तो हीरो तो हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे,
3: हाँ
4: हम यहाँ हीरोइन ऐड करेंगे।
3: ना ना ना ना, हीरो की कोई एंट्री नहीं है। हाँ
4: है
3: और
4: है,
3: पलट है। तेरा ध्यान किधर है, ओ बेबी
4: तेरा हीरो इधर है,
3: ओ तेरा हीरो इधर है। जी हाँ, तो भाई चलिए और एक साथ एक ही फ्रेम में इस प्यारी सी दोपहर को विश कर देते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि दोपहर है, लेकिन बारिश का भी जो सुरूर है वो नाइट में होती है, सुबह होती है, बट मौसम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है पहले से, बहुत ही ज़्यादा वाला हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल है, मतलब बहुत गर्मी थी बट अब नॉर्मल है मौसम। तो चलिए एक बार फिर से एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
4: शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला जो होता है, हम आपसे मिलते हैं कुछ प्यारी प्यारी लाइंस को लेकर के, और आज भी आपको आपकी आरजे समता ही सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले
3: पता नहीं क्या तुम बोलोगी अभी।
4: चलिए बोलते हैं।
3: हाँ।
4: तो चेहरे पे छाई है नूरानी रंगत, बड़े दिनों के बाद मिली है इतनी अच्छी संगत, तो चलिए इस संगत का हम भी कुछ मजा उठाते हैं, और जिनकी वजह से ये खुशी आपके चेहरे पर है, उनका शुक्राना अदा करते हुए चलिए एक प्यारी सी कविता सुनते हैं।
3: ओहो, कहाँ, मतलब जैसे नहीं कहते हैं ना कि किसी को कोई इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रहती है, तो अंशिका की ऑब्जर्वेशन मेरे ऊपर बहुत पिछले 6-7 मिनट से ज्यादा बनी हुई थी जिसके कारण से इतनी अच्छी ये कविता निकल पाई। मेरे ख्याल से इस कविता से तो बेटर जो कविता अभी इसने बोली है मेरे लिए वो मुझे बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच दिल से अंशिका। ऐसे ही आप हमारे लिए बहुत अच्छा सा शुभ सोचती रहें ताकि जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके लिए एक शुभ चिंतक बन करके आते हैं, बाकी तो दुख चिंतक ही रहते हैं लोग। और दुख चिंतक के अगर हम लोग ने दिमाग में बैठा लिया तो हर दिन एक चुनौती होती है, हर दिन एक महिलाओं के लिए एक चुनौती भरा होता है। महिलाओं से याद आया कि आज है वेनसडे, हमारा ब्यूटीफुल सा वेनसडे, और वेनसडे के दिन हम स्पेशली बात करते हैं विमेन सेंट्रिक यानी कि महिलाओं से जुड़ी हुई बात। हर दिन हम वैसे तो ये शो ही पूरा महिलाओं का है लेकिन आज के दिन कुछ खास और बहुत खास हम लेकर के आते हैं। तो आज से भाई कॉलेज भी खुल गए हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं और मम्मियों की जो है ना वो फिर से स्कूलिंग शुरू हो चुकी है। तो मम्मियों की कैसे क्या शुरू हो चुकी है स्कूलिंग के बारे में भी बात करेंगे। क्या उनका रूटीन आज से फिर से चेंज हो गया, क्या उनकी रील्स बन रही हैं कल से कि बच्चों को वो बैग टांग करके उनके पीछे पीछे भाग रही हैं और कह रही हैं कि गानों के माध्यम से कह रही हैं कि चल जा जा जा तेरा टाइम शुरू हो गया चल जा। और मम्मियों का टाइम भी शुरू हो गया है भाई, कहाँ सुबह 8-9 बजे उठती थी छुट्टियां भर और कहाँ अब उन्हें 5 बजे ही उठना पड़ रहा है। तो आज से उनका टाइम शेड्यूल भी चेंज हो गया। लेकिन सबसे पहले आइए हम अब चलते हैं आज के सेक्शन यानी कि आज का पहला सेक्शन हम लेते हैं जिसमें होता है पोयम।
4: तो चलिए सुनते हैं कि आज प्यारी प्यारी ग्लो के साथ क्या प्यारा प्यारा सुनाने वाली है मैम।
3: ओके, तो आज का शीर्षक जो है वो है 3 स्तंभ और घर स्वयं और समाज।
4: ये तो बहुत अच्छा है
3: ना, 3 स्तंभ होते हैं महिलाओं के। तो महिलाओं के जो 3 स्तंभ होते हैं उन 3 स्तंभों को किस तरीके से सवारती है, बनाती है और किस तरीके से वो अपने घर को एक महल बनाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं
4: जी।
3: चौके की धीमी आंच से लेकर दफ्तर की ऊंची उड़ानों तक वह संभाल रही है हर जर्रा अपने हौसलों और अरमानों तक। लोग कहते थे जिसे कभी नाजुक, बस घर की चार दीवारी की शान, आज बनकर खड़ी है वो इस बदलते दौर की नई पहचान। घर संभालती है वो सुबह की पहली चाय से लेकर रात की लोरी की थाप तक। ममता की छांव बिखेरती है हर एक रिश्ते के जॉब तक। स्वाद भरा जो उसके हाथों में वो सुकून और कहीं नहीं, त्याग और समर्पण की मूरत उससे सुंदर कोई कहीं जमी नहीं। खुद को भी सवारती है वो पर अब वो सिर्फ दूसरों के लिए खुद को भूल नहीं जाती। अपने सपनों की डायरी में वो खुद अपनी राह बनाती। शिक्षा का गहना पहनकर आत्मविश्वास से वो मुस्कुराती है। घर की जिम्मेदारियों के बीच वो खुद का अस्तित्व बचाती है। और समाज को भी बदलती है वो जब कदम बढ़ते हैं बाहर उसके तो रूढ़ियों के बंधन टूटते हैं। चाहे राजनीति हो या विज्ञान उसके हाथों से नए इतिहास बुनते हैं। वो न्याय की आवाज बनती है, वो बदलाव की मशाल उठाती है। चिंगारी के धागों से लेकर देश की अर्थव्यवस्था चमकाती है। घर की नींव भी वही है और समाज का आकाश भी वही। पहचान लो उसकी इस शक्ति को, अब वो अबला नहीं रही, वो एक नारी है, नारी सशक्त नारी।
4: वाह, सशक्त नारी, और सशक्त नारी के साथ साथ में सशक्त नारी ने ही बहुत अच्छी पोयम भी सुनाई है।
3: हाँ, मैं तो सशक्त हूँ,
4: बल्कि
3: इसमें कोई दो राय नहीं।
4: और सशक्त होने के साथ देखिए, सशक्त होना सिर्फ ये नहीं होता है कि समाज से हमने कोई लड़ाई जीत ली या अपने अपनों से जीत ली, कई बार खुद से जीतना कहलाता है कि एक नारी सशक्त है। तो खुद से जीता है, और देखिए जीतने के बाद क्या होता है ना कि हमें लाइफ से कुछ रिवॉर्ड मिलता है।
3: हाँ।
4: और जब लाइफ से रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है।
3: बिल्कुल।
4: और आई होप सो, मतलब बहुत एकदम दिल की गहराइयों से ये निकलता है कि मैम को रिवॉर्ड मिल गया है, और आई थिंक बहुत बहुत बहुत बेटर मिला हो, ऐसा मेरा कहना है। और वैसे बेटर मिला ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें करती हैं, तो उन्हें बेटर ही मिला है। और वैसे भी अगर कोई बेटर नहीं है तो हमने पहले भी बहुत बार आपसे कहा है, आपको बताया है, फिर बता देते हैं कि हमारी मैम बनाती बहुत अच्छा है, संवारती बहुत अच्छा है, और अगर कोई बिगड़ा है तो ठीक भी बहुत अच्छे से करती है।
3: हाँ, मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मुझे बिगाड़ के बनाना बड़ा मजा आता है, और मतलब क्या ही बता दूं कि
4: फिर वो बिगड़ नहीं सकता,
3: फिर वो बिगड़ नहीं सकता है,
4: वो बचता ही नहीं है,
3: वो बचता नहीं है, एक्चुअली वो बचता नहीं है, और अगर बच भी जाता है तो वो मेरे तीन कमानों से नहीं बच पाता है। खैर कोई नहीं, आइए चलते हैं सीधे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर, जो कि अंशिका बताएंगी।
4: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, बेटी वो नहीं जो अपना घर आंगन महकाती है, बेटी वो है जो दूसरे के घर को भी स्वर्ग बनाती है।
3: आहा, बहुत बढ़िया।
4: कहने का मतलब ये है कि एक बेटी जब अपने घर आंगन में मैम बड़ी होती है, और तो उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बेटियों को हमेशा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है बेटा प्यार नहीं करेगा, पर बेटी में अलग सी ममता होती है, माँ के लिए, पिता के लिए, घर वालों के लिए, हर किसी के लिए। लेकिन एक बेटी अपने घर में जितनी अच्छी पिता के लिए, माँ के लिए होती है, उससे दुगनी बेहतर वो तब होती है जब वो किसी अनजान घर को इतना अपना बना लेती है कि अगर एक दिन के लिए वो उस घर में नहीं है तो कहा जाता है कि अरे यार आज भाभी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, या हस्बैंड कहता है अरे यार वो चली गई है, देख लो घर में कोई सामान कहीं मिल ही नहीं रहा है।
3: लेकिन कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि अगर वो एक दो महीना नहीं आती तो घर में सुकून
4: रहता। बिल्कुल, तो कहीं
3: तो जैसे अंशिका ने कहा ना अभी कि एक लड़की ही घर को स्वर्ग बनाती है और एक लड़की ही घर को नरक बनाती।
4: बिल्कुल, देखिए कभी नहीं कहना चाहिए कि आप कोई बहुत अच्छा काम करेंगे ना तो कहा जाता है यार कितनी अच्छी लड़की है, माँ बाप ने कितनी बेहतर परवरिश दी है, और जब आप कुछ गलत करते हो तो सीधा कहा जाता है पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया है।
3: बिल्कुल,
4: और जो कि किसी के माँ बाप कभी गलत सिखाते ही नहीं है, वो तो हम अपने अंदर चीजें ले आते हैं। तो अगर आप किसी के आंगन की महक बनना चाहते हैं, देखिए शादी करके जब कोई लड़की जाती है मैम तो हमेशा ढेरों शिकायतें शादी के बाद होती हैं, अरे मेरी फैमिली ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर वैसे हैं, और वो तो ऐसी ही बातें करते हैं कि दिमाग बिल्कुल घूम जाता है।
3: बिल्कुल,
4: देखिए थोड़ी सी रियलिटी है और थोड़ी सी इंडियन सोसाइटी में ये होता भी है कि लोग ऐसी ही बातें करेंगे कि आपका दिमाग घूम जाए। ज्यादातर लोग सीधी बातें नहीं करते, क्योंकि किसी किसी के स्वभाव में ही होता है ताने देना, कमियां निकालना कि अरे ये तो ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन पता है दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ली तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड बीतेगी।
3: बिल्कुल,
4: और वो दो चीजें होती है, पहली इग्नोर करना और दूसरी होती है बर्दाश्त करना। इग्नोर करने का मतलब है बेकार की बातों को इग्नोर करें, और बर्दाश्त करने का मतलब होता है कि जहां तक आपकी सेल्फ उससे नहीं हो रही है, क्लैश हो रही है, तब तक आप बर्दाश्त करो। क्योंकि पता है फर्जी की चीजों पे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पता लगा किसी ने दो बातें बोली, हमने सामने गुस्से में तीन बातें बोल दी, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे केवल लड़ाई हुई, कलेश हुआ, आपने इग्नोर कर दिया, तो एक टाइम आने के बाद इंसान कहता है यार ये तो मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही, इससे तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो रहने दो। और पता है मेन बात क्या होती है, सबसे अच्छी बात तब होती है जब आपके लिए कोई और स्टैंड करे।
3: एग्जैक्टली,
4: कि आपको कोई बुरा बोल रहा है तो दूसरा तुरंत आपकी मदर इन लॉ बोल रही है या आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, अरे ऐसे उसे ऐसे कैसे कहा तुमने, वो देखो कितने लगन से काम करती है, या इतनी अच्छी है तुमने कैसे कह दिया। तो ज्यादा बेटर फील होता है कि अरे हमें तो बोलना ही नहीं पड़ रहा है, हमारे लिए तो पहले से ही है लोग काफी स्टैंड करते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और देखिए एक फैमिली को चलाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, तो दोनों चीजों को अपने बिहेवियर में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक लड़की को ये होना चाहिए कि मैं मेरे घर को एडजस्ट कर लूंगी, मैं चला लूंगी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बाकी यार अनजान जगह आप जा रहे हो तो थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, यहाँ न्यू हम कपड़े लेकर के आते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं या ढीले हो जाते हैं, तो हमें एडजस्ट करने में समय लगता है।
3: गुड एग्जाम्पल अंशिका,
4: तो
3: कि जब हम कपड़े ले आते हैं तो हम, लेकिन हम उसको चेंज करा के फिर से ला सकते हैं, पर अगर रिश्ता हो तो वहाँ कैसे चेंज करेंगे?
4: नहीं चेंज करने का साइन नहीं था मैम, बस इतना कहना था कि जैसे आप एडजस्ट कर लेते हो ना कि हम अच्छा अगर ढीला है तो चलो टाइट कर लेते हैं, अगर फिटिंग में कुछ है तो हम जैसे उन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं वैसे ही रिश्तों को भी एडजस्ट करें। जैसे कि एडजस्टमेंट अगर होगी तो चल जाएगा, वरना आजकल तो लड़कियों को ये होता है एडजस्ट नहीं करूंगी, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कभी रिश्तों के आड़े आती है, तो थोड़ा सा मतलब खत्म नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा कम चीजों पे रिएक्ट करना चाहिए।
3: जी जी जी बिल्कुल, इट्स अ ओके तो अंशिका यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम आएंगे फिर से अपने नए सेगमेंट की ओर यानी कि आज के नए टॉपिक की ओर. तब तक के लिए सुनते रहें 89.6 FM पे आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली.
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं. कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं. समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है. बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें.
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे. प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th. आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है. एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य.

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए भाई, आज के प्रोग्राम यानी कि जैसे कहते हैं ना, सेक्शन नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें आज हमारा विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम में हम लेकर के आए हैं चिकनकारी को। चिकनकारी का मतलब है कि आजकल गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, चरम सीमा पर गर्मियाँ हैं। तो भाई, महिलाओं के लिए इस समय जो कंफर्टेबल कपड़ा होता है वो है केवल और केवल चिकन और कॉटन की कुर्तियाँ, वो भी चिकन वाली। कहते हैं ना कि चिकन में बहुत सारे स्मार्ट पीस भी आने लगे हैं कि मतलब हाई फाई पार्टीज में भी मैंने देखा है अंशिका
4: जी,
3: कि चिकन की साड़ियाँ, तो लहंगा, तो सूट, अनारकली, प्लाजो, मतलब हैवी से हैवी चिकन में और कॉस्टली से कॉस्टली चिकन में सब कुछ मिल रहा है आजकल।
4: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो बहुत ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब आप कहीं पे जाते हैं या हम कहीं पे जब घूमने जाते हैं तो हमेशा कहते हैं वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, मुझे वहाँ का स्पेशल चाहिए।
3: हाँ।
4: तो ठीक उसी तरीके से कि चिकन की कुर्तियाँ आजकल, और पहले क्या होता था कि चिकन की कुर्तियों में ये कहा जाता था कि अरे आपको यही एक डिजाइन मिलेगी, बस एक ऐसी ही मिलेगी,
3: मतलब सिर्फ कुर्तियाँ ही आती थी, बहुत रेयर में साड़ियाँ आती थी, बहुत रेयर में जो ऑर्गंडी की साड़ियाँ
4: जी मैम।
3: और अब तो मैं बताऊं, क्योंकि देखो चिकन मेन फेमस कहाँ का होता है पता है तुम्हें? लखनऊ।
4: हाँ।
3: लखनऊ का चिकन, ठीक है, एक रेवड़ी और एक चिकन ये बहुत फेमस होता है। तो मैं बताऊं कि अब जब मैं अभी गई थी तो मैंने देखा अंशिका कि इतनी ज्यादा वैरायटीज की, आप एक उठाओगे ना, आप एक लेने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से 4-5 उठा लो। सेम चीज यहाँ पर हमारे गोंडा में भी ऐसे ही है कि चिकन जो है वो इतनी ज्यादा मतलब भरपूर मात्रा में अब यहाँ पर भी मिल रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम महिलाएं अधिकतर जो जॉब में होती हैं या तो फिर सारा दिन काम करती हैं, चाहे वो किचन में हो, घर में हो, तो कॉटन कपड़े के ऊपर जो चिकन होता है वो उसमें स्वेटिंग को, जैसे हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी में पसीना आता है, तो क्या होता है कि उसको एब्जॉर्व करने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल, सबसे सस्ता एक कपड़ा आता है जो कि चिकन में कुर्तियाँ।
4: जी मैम, और कहीं ना कहीं उस फैब्रिक के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे महिलाओं में होता है कि गर्मियों से, महिलाओं में क्या मुझे लगता है सभी में होता है,
3: हाँ।
4: कि गर्मियों में घमौरी बहुत ज्यादा हो जाती है।
3: हाँ। घमोरियां जो उन्हें दाने होते हैं,
4: हाँ, तो रेड रेड हो जाते हैं, तो वो पता है कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग जो होती है, तो जैसे अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं,
3: हवा का नहीं पास होना,
4: हवा का नहीं पास होना, ये सिंथेटिक हम कई बार क्यों बार बार मना किया जाता है कि गर्मियों में कभी भी आप कोई भी ड्रेस पहनो लेकिन कभी पॉलिस्टर मत पहनो, क्योंकि उसमें स्वेटिंग क्या होती है, पूरी अपने में वही रोक देता है, वो ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो पाती और फिर रैशेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने चिकन की कुर्ती कॉटन पे पहनी है तो वो आराम से ऑक्सीजन पास होती है और आराम से वो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, इसलिए ये फैब्रिक ज़्यादा पसंद किया जाता है। और लखनऊ, मतलब कहते हैं ना लखनऊ गए और नवाबों के शहर में, जहाँ पे पूरी नफाजत होती है, पूरी अदब होती है, और वो तो कहा ही जाता है कि नवाबों का शहर है, तो नवाबों का शहर हमारा लखनऊ है। और लखनऊ के जो नवाब हैं, वहाँ रहने वाले हैं, वो पसंद करते हैं इसे बहुत ज़्यादा। और क्यों पसंद करते हैं, उसके पीछे की कहानी भी है और कहानी बहुत दिलचस्प भी है। लेकिन अगर इतनी जल्दी सब बता दिया आपकी सखियों ने, तो फिर आप कहेंगे कि भाई आज तो हमारी जो सखियां हैं उन्होंने सब बता दिया। तो सब नहीं बताएंगे, कुछ हम राज भी रखेंगे, क्योंकि जो राजे वफा होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। पता है जब किसी से आप मिलो और कोई आपसे ये कहे कि अरे मुझे तुम्हें ये बताना है लेकिन मुझे तुम्हें अभी नहीं बताना है,
3: रुक कर
4: सीक्रेट थोड़ा, तो बड़ी खुशी होती है, यार क्या होगा।
3: नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे लगता है कि जो पहले सीक्रेट है पहले वो बताओ,
4: पहले वो बताओ,
3: क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो इसीलिए मुझे तो बड़ी गुस्सा आती है। मैं कहती हूँ पहले आप बात बात बता दो, उसके बाद हम कुछ खाएंगे कुछ भी।
4: हाँ।
3: तो जहाँ तक हम चिकन की बात कर रहे थे, तो चिकनकारी कहाँ से आई, उसके पीछे का इतिहास क्या है, और सारी चीजों को आज हम आपके साथ ब्रीफ करने वाले हैं।
4: बिल्कुल, तो भाई देखिए, प्यार होता है बहुत ही खूबसूरत, और खूबसूरत तब होता है जब प्यार किसी से भी कर लिया जाए, हमारा जो प्यारा सा शहर है, नवाबों का शहर है यानी लखनऊ, उसे बहुत प्यार है। किस चीज से प्यार है? सुई धागों की आवाज से। क्योंकि जब आप लखनऊ की गलियों से होते हुए अमीनाबाद निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो लखनऊ में जब बहुत टाइम पहले काम चलता था, हाँ। अब तो काम नहीं चलता है, अब तो वो रेडीमेड आपको रेडी होकर के मिलती है, सिर्फ आपको खरीदनी होती है। लेकिन बहुत साल पहले जहाँ पे चिकनकारी का काम चलता था,

0: मिलता है राजस्थान में और कहीं नहीं। तो वो इसी तरीके से हर में अपनी पहचान होती है और अपनी कहानी होती है। तो इसकी भी है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो चलिए अब बताते हैं कि भाई, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछते हैं। सवाल का जवाब हमारे लिसनर्स भी दें और मैम भी दें कि मुगल काल में जितने भी राजा हुए उनमें से एक राजा थे जिनकी बेगम बहुत खूबसूरत थी, तो वो बेगम का नाम क्या था?
1: मुमताज।
0: हाँ
1: शायद, हाँ
0: शायद
1: है पक्का, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोला।
0: मुमताज बहुत खूबसूरत थी और शायद उन्हीं का एक नाम नूरजहां भी कहा जाता है।
1: नूरजहां, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ।
0: तो बेगम नूरजहां जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ। लेकिन सभी को ये पता है कि उनकी खूबसूरती के साथ उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन कला भी थी, जो कि वो बेहद माहिर थी कढ़ाई करने में।
1: ओके।
0: और इसलिए उन्हें इस तरह की सारी ही जो कढ़ाइयाँ होती थी वो बहुत पसंद आती थी। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मुगल जो सम्राट थे उनसे कहा कि मुझे घूमने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, आपको जहाँ जाना है। तो वो घूमते घूमते हुए वो लखनऊ आई।
1: अच्छा।
0: और वहाँ उन्होंने, वहाँ काम चल रहा था
1: ये चिकन
0: का, हाँ, गलियों में। तो उन्होंने अपने जो जिनके साथ वो आई थी उनसे कहा ये बताइए ये क्या हो रहा है, क्योंकि सुई तागों से तब कच्ची मतलब हाथों से काम किया जाता था बहुत टाइम पहले। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनके उन्होंने बताया, मतलब जो उनके साथ आए हुए थे उनके दरबार, उन्होंने बताया कि कुछ नहीं बेगम साहिबा, ये एक कढ़ाई है और उस पर काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे देखना है कि ये क्या है, चलो मुझे दिखाओ। तो वो उनको ले गए और उन्होंने दिखाया, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो पसंद आ गई कि उन्होंने वहीं रुक करके जो कारीगर कारीगरी कर रहा था उससे कहा कि मुझे भी सीखना है। तुम आप ये कैसे करते हैं मुझे भी बताइए। तो उन्होंने कहा बेगम साहिबा एक दिन में तो आप नहीं सीख सकती हैं, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। तो उन्होंने उसको बकायदा बहुत सारी अशर्फियां दी और उससे बोला कि ठीक है आप मेरे महल आ जाइए और मुझे ये सीखना है जैसे भी, जितना भी टाइम लगे। तो उस कारीगर ने उनको सिखा दिया, थोड़ा टाइम लगा, जो कि वो पहले से कढ़ाई करती थी इसलिए वो सीख गई। तो एक दिन वो अपने बाग में टहल रही थी और वहाँ दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था। तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे भी कढ़ाई में उतारा जाए। तो वो उन्होंने उन दो हंसों के जोड़े को एक जो है मखमली शॉल थी और उस पर उन्होंने कढ़ाई की चिकन की, और चिकन की कढ़ाई से वो उन्होंने दो हंसों का जोड़ा उस पर बनाया।
1: ओके।
0: और वो बहुत खूबसूरत बना भी। तो जब उन्होंने अपने मतलब उनको दिखाया, राजा साहब जो थे, तो उन्होंने कहा किसने बनाया है ये। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने इसे बनाया है, उन्होंने कहा कि इसको किसने बनाया और आप उन्हें बुलाइए, मैं उन्हें इनाम दूंगा, क्या बेहतरीन उन्होंने कारीगरी की है। तो उन्होंने कहा फिर मुस्कुरा के कि अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे कुछ, तो ये मैंने बनाया है। तो उन्होंने उसके बाद से ये कर दिया कि ठीक है ये आपने बनाया और बेहद खूबसूरत है और मैं हमेशा इसे अपने बहुत पास रखूँगा। तो जो कि दो हंसों का जोड़ा बनाया उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब भी आप इसको देखेंगे तो हमेशा ये याद करिएगा कि कला जो होती है वो कभी मरती नहीं है। इसलिए एक कला के रूप में उन्होंने उनको दिया और जो सम्राट थे उन्होंने उसे अपने मतलब जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे उन्होंने उसको रख दिया और बोला कि हमेशा मैं इसको अपने पास रखूँगा और साथ ही साथ में जो भी इस कला में आगे बढ़ना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा, मैं उसे पूरा सहयोग दूंगा। और फिर उन्होंने उस एक कला को मतलब चिकनकारी को ये घोषित कर दिया कि अब जिस शहर की ये कला है वो शहर इसी कला के नाम से जाना जाएगा,
1: यानी लखनऊ। ओके, यानी जो आज फेमस है चिकनकारी के कारण, तो ये नूरजहां के इतने अथक प्रयास के कारण।
0: बिल्कुल।
1: वाओ, बहुत ही अच्छी सी ये क्रूर जानकारी जो थी अंशिका ने दी है, तो बड़ा मज़ा आ गया। मतलब मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही थी इसलिए मैं चुपचाप सुन रही थी कि इसका अभी अंशिका कुछ भी जो पूछ लेगी तो मुझे भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो भाई चिकनकारी के लिए जो कि अभी हम लोगों ने आपको बताया वाकई में कि आज लखनऊ में अगर फेमस है तो चिकन तो लखनऊ का।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से तो ये क्यों फेमस हुआ ये आपको जानकारी मिल गई है। अच्छा अंशिका, अब हम इसके दूसरे की ओर हम लोग अगर दूसरे पड़ाव की अगर इसको हम लोग करें रुख करें, तो क्या चिकनकारी को लेकर के हम महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कारोबार हो सकते हैं?
0: बिल्कुल मैम, और लखनऊ में जैसे कि सभी, अभी मैंने आपको स्टोरी बताई कि नूरजहां ने इसे शुरू किया था, इसलिए महिलाओं को ये एक प्रेरणा मिली कि उन्हें शुरू करना चाहिए।
1: हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसको और डेप्थ में हम जानकारी लेंगे, लेकिन
0: ये है कि हमारी प्यारी प्यारी आवाज तो है और हम आपको बताते भी प्यारा प्यारा है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई ज्यादा बोलता है तो मन में आता है यार कितना

0: क्या बोलेंगे।
1: हाँ, एक
0: और
1: गाना
0: हमें भी
1: तो
0: लग गई प्यास,
1: और हमें भी लगी है प्यास, तो बस
0: नहीं नहीं तो ऐसा है, हमें लगी है बहुत प्यास, तो करते हैं एक प्यारी सी विन्यास और चलते हैं प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे, और उसके बाद आते हैं वापस,
1: फिर से आते हैं। और इसकी जानकारी अभी अधूरी है, और इसके यानी चिकनकारी को लेकर के हम अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और उस छोटे से व्यवसाय को हम बाकी और बिग कर सकते हैं। तो भाई बहुत कुछ बताना है, तो इसके लिए लेना पड़ेगा एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। बस एक ही गाने को हम सुनाएंगे आपको, बस हम यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो अभी जिस बात को हम लेके गए थे चिकनकारी की कहानी की ओर और लखनऊ की ओर, तो अभी हमने उस पर थोड़ी सी ही शुरू की थी बात, जो की थी कि आप यानी कि हम महिलाएं किस तरीके से व्यवसाय की ओर जा सकती हैं।
5: बिल्कुल, तो हमने कर ली थी बात की शुरुआत, तो चलिए आप पहुँचा देते हैं उसे उसके अंत तक। तो अंत तक ऐसे पहुंचाते हैं कि चिकनकारी जो है वो बिल्कुल जहां एक बहुत अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, महिलाओं को कहीं ना कहीं जो बहुत पसंद भी आती है और हमारी लखनऊ शहर की खूबसूरती भी बढ़ाती है, लेकिन वही हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी बनाती है।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि एक रोज़गार की तरह भी है कि महिलाएँ इसे बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन रोज़गार की तरह कर सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, चिकनकारी में जो काम होता है वो पूरी तरह से हाथों का काम होता है
4: और पता है बहुत महीन काम भी होता है, मतलब जैसे लगता है कि उसको जड़ा गया है, लेकिन अब तो मशीनों से होने लगा है।
5: हाँ।
4: बट पहले, और अंशिका मैं बता दूं कि मैंने भी काम किया है। मुझे भी आती है वो काम।
5: आपको भी आती है?
4: बिल्कुल। और तुम्हें बता दूं कि मम्मी और मैंने तो बहुत ज्यादा, जैसे नहीं वो पहले आती थी साड़ियाँ भरने के लिए कढ़ाई, तो मैंने वो भी काम किया
5: हुआ। ओ माय गॉड,
4: मैंने बहुतों को बना के दिए साड़ियाँ, सूट, बहुत सारी चिकन में बना के दी।
5: फिर तो मैं भी बनवाऊंगी।
4: बिल्कुल बना के दूंगी। और पता है उसके, अब तो उसकी ट्रेसिंग होने लगी है, पहले तो ट्रेस भी नहीं होता था, अंदाज से पेंसिल से निशान लगा करके कि यहाँ पर ये होना है। नागेश्वर जी पूछ रहे हैं किस बात पर चर्चा हो रही है, तो नागेश्वर जी आप अभी अभी आए हैं, लेकिन अब प्रोग्राम जो है वो 1:30 पे बिल्कुल शुरू हो जाएगा, 1:30 पे हमने एंट्री ले ली थी। तो अभी बात हो रही है चिकनकारी पे, यानी कि लखनऊ की फेमस कढ़ाई जो है वो है चिकनकारी, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है कि महिलाएं अपना व्यवसाय कैसे बना सकती हैं उसको लेकर के।
5: बिल्कुल, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैम, मतलब मैम को ये भी आता है।
4: हाँ, मैं, मुझे आता है।
5: मतलब क्या क्या छुपा रखा है अंदर जो है,
4: बहुत कुछ चीजें
5: वो मैम बताती नहीं है। देखिए
4: कभी कभी जैसे रिवील हो जाती है कि हाँ मुझे ये भी आता है। बट चिकनकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली मैं लखनऊ की हूँ अंशिका, और मुझे चिकन नहीं आएगा, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना।
5: हाँ,
4: ये भी बात है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि व्यवसाय इसमें हम कैसे महिलाओं का बना सकते हैं।
5: तो व्यवसाय आप ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कि सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आजकल महिलाएं जो बिजनेस कर रही हैं उनके लिए सबसे अच्छा हो गया है सहायता समूह केंद्र। वो सबसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है कि उसमें 5 से 10 महिलाएं, 15 महिलाएं मिलकर एक काम शुरू करती हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा भी हो जाता है।
4: बिल्कुल।
5: तो मैं लखनऊ के ही एक थोड़े इंटीरियर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि लखनऊ का ही एक ऐसी जगह है, वहाँ पर एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर कई सारी महिलाएं जो हैं वो दोपहर के बाद मिलती हैं और साथ में समूह में काम करती हैं, और इस समूह का काम ही है चिकनकारी को आगे ले जाना, और उसके साथ कैसे वो एक अच्छा बिजनेस करती हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग क्या करती हैं। कि वो लोग चिकनकारी के जो कढ़ाई है वो कपड़ों पे खुद से करती हैं।
4: हाँ।
5: मतलब अपने हाथों से करती हैं, उन्हें आती है, और वो उसकी कुर्तियाँ और साड़ी वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो पहले उन्हें बनाती हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करती हैं, फिर उन सारे ही प्रोडक्ट्स के फोटोज़, वीडियोज़, ये सारी ही चीज़ें बना करके सोशल मीडिया पे डालती हैं, मतलब इस तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। और इसके साथ साथ सहायता समूह की कई महिलाएं लखनऊ के कई दुकानों में, जो बहुत फेमस जगह है जहां पर चिकनकारी का काम होता है, मतलब जहां चिकनकारी के प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, वहां जाकर उन डीलर्स से भी बात करती हैं कि हमारे पास ये है और अगर आप लेने के लिए इच्छुक हैं या आपके पास कस्टमर्स हैं तो हम बेचना चाहते हैं, और फिर वो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं।
4: बिल्कुल,
5: लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि खुद बनाना, फिर पैकेजिंग करना और उसके बाद जाके वो डीलर्स से खुद कॉन्टैक्ट करना, मीटिंग करना, बात करना, तो कहीं ना कहीं बहुत समय लगता है। पर वो महिलाएं ये मानती हैं कि उन्होंने ये जो काम शुरू किया है इससे उन्हें प्रॉफिट भी काफी होता है।
4: लेकिन मेरा मानना है कि अब आजकल इतनी मेहनत कोई नहीं करता है अंशिका, हर कोई चाहता है कि हमें डायरेक्ट उसका लाभ हो, प्रॉफिट हो। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर आप चिकन का काम शुरू कर सकते हैं तो इजिली आप लखनऊ से मेन मार्केट से लेकर के चिकन की कुर्तियां, साड़ियां और अच्छे से जो भी न्यू वेराइटीज हैं, आप उसको जब आप कहेंगे ना कि मुझे एक व्यवसाय शुरू करना है तो उसको ले करके आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर या कहीं पे भी। तो इससे क्या होगा कि छोटे से जिसे कहते हैं ना छोटी सी मनी, छोटे पैसे से आप बहुत बड़ा इसका व्यवसाय आप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर क्या कहते हैं महिलाओं के पास पॉकेट मनी है या फिर अपने हस्बैंड को बोलती हैं, अपने भाई को, पापा को बोलती हैं कि मुझे ये व्यवसाय शुरू करना है, तो ये कहा जाता है कि अरे यार तुम लोग तुम करो तो, लेकिन पैसे ना डूब जाए या फिर ऐसा हो। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपये का सामान बहुत ही ईजिली हम लोग ले सकते हैं और उसी से कमा करके हम अपने व्यवसाय को इसको आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कम खर्चे में ज्यादा लागत वाली बातें होती हैं।
5: अब इस पे मुझे कुछ
4: बुद्धि
5: कहना
4: का इस्तेमाल,
5: बुद्धि का इस्तेमाल तो मतलब
4: क्या?
5: मतलब मैं लाइंस सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ और वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपने मन में कि मुस्कुराहट और अदाएं तो होती हैं बहुत हसीन और उनकी है भी। मुस्कुराहट और अदाएं तो होती हैं बहुत हसीन उनकी है भी, पर बाखुदा हमें नहीं पता था कि इन खूबसूरत हसीन निगाहों के पीछे इतना खूबसूरत दिमाग भी है।
4: दिमाग ही तो है हमको।
5: नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो फिर गलत हो गया।
4: दिमाग ही तो है और दिमाग के कारण ही तो हमको सुनने को मिला कि तुम दिमाग से काम करती हो। दिमाग ही तो है।
5: नहीं ये ऐसा नहीं है।
4: औरतों को दिमाग होना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग नहीं होगा ना तो क्या ही बता सकती हूँ मैं। और दिमाग तो होना चाहिए भाई, दिमाग होना चाहिए। हाँ, दिमाग होना चाहिए, ठीक है। और आज की जनरेशन के साथ तो बिल्कुल ही है कि दिमाग होना चाहिए और किसी भी व्यवसाय के लिए मैं बताऊं कि दिमाग का होना भी जरूरी है। और फिर से मैं उस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कम से कम लागत लगा करके ही शुरू करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम ज्यादा की लालच में बहुत ज्यादा लॉस कर बैठते हैं।
5: हाँ बिल्कुल,
4: है ना। तो और कुछ है अंशिका बताने के लिए आपको?
5: एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट भी इसके लिए आपको सहायता देती है, मतलब आपकी मदद करती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है ODOP। ODOP का मतलब होता है कि एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि आपकी सिटी और उस सिटी का आपका ही प्रोडक्ट। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि अगर कोई अपनी सिटी की किसी मेन कला को या किसी भी चीज को आगे प्रमोट करना चाहता है तो सरकार उसे लोन यानी कि मुद्रा लोन देती है, मतलब और इसकी कैपेसिटी ये है कि 1 लाख से 5 लाख तक में आपको मिलता है।
4: तो उसके लिए अंशिका कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज हैं?
5: हाँ मैम,
4: जैसे कुछ लोन वगैरह या फिर बैंक के कुछ
5: बैंक से ही मिलता है। जैसे बैंक में अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में, मतलब अब तो सभी का होता है, तो अकाउंट है वहाँ पे आपको जाना है,
4: फॉर्मेलिटीज जैसे जो भी चाहिए उसमें,
5: वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड देना है और जो डॉक्यूमेंट्स और आपसे मांगे जाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि मुझे इस योजना के तहत ये लोन इस काम के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये है कि उसमें आपको कुछ फिर ये मिलता है कि इसमें से आपको इतना ही देना है।
4: ओके, और इसका जो रिस्क है मैं बता दूं लिसनर्स को भी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि हम बैंक लोन ले रहे हैं, तो बैंक लोन जब एक महिला ले लेती है तो फिर उसको ये लगता है कि यार हम इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम छोटा सा तो हमने अभी व्यवसाय शुरू किया है, लोन ले लिया तो इसी चिंता में वो लगता है कि कहीं हम डूब ना जाएं, हमारे पैसे डूब ना जाएं। तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत कम, मतलब जैसे कहते हैं ना, उसकी एक स्कीम बनाई है कि कम जैसे इंटरेस्ट में आप अपने लोन को पूरा कर सकते हैं। मुझे याद है अंशिका, बहुत पहले की बात है, कम से कम 8-9 साल पहले की बात है, और मेरे ही एक मोहल्ले में मोहल्ले में क्या कह लें, मतलब थोड़ा सा दूर में ही कह लें
5: जी जी।
4: तो एक क्या कहते हैं लेडी हैं, उन्होंने ऐसे ही हम लोग में बात हो रही थी कि एक व्यवसाय शुरू करना है और साड़ियों का बिजनेस शुरू उन्होंने किया। तो वो और मैं और मेरे घर की एक मेंबर और थी, हम लोगों ने ऐसे ही आपस में बैठ के डिस्कशन किया। वो मतलब पूछने ही आई थी कि कैसे क्या होगा
5: जी जी।
4: तो उनको फिर हम लोगों ने लोन दिलवाया, मतलब बैंक से उनका लोन हुआ। और लोन के बाद में उन्होंने बहुत ही कम राशि ली, मतलब अपने इसमें कम से कम एक से डेढ़ लाख रुपए बस लिए उन्होंने। तो उन्होंने एक से डेढ़ लाख रुपए लिए और उन्होंने ये तय किया कि आगे आने वाले डेढ़ साल दो साल के अंदर मेरा ये कर्जा उतर जाएगा और फिर से मुझे अगर होगी क्या कहते हैं इसकी नीड हुई तो हम फिर से ले सकते हैं
5: जी।
4: सिंपली उसने एक से डेढ़ लाख रुपए लिए और मंथ दो मंथ में उसने अपना जो उसका इंटरेस्ट होता था वो अलग करती गई
5: जी,
4: मतलब
5: जी।
4: बैंक को तो देती गई लेकिन वो जो उसकी बचत खाता होता था जो उसका अपना पर्सनल था उसमें भी जो उसकी प्रॉफिट होती थी वो उसमें डालती गई है ना। तो उससे क्या हुआ कि उसका दो प्रॉफिट हुआ,
5: दो।
4: एक तो जो उसने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट उसका कम होता गया
5: जी जी।
4: दूसरा जो उसका प्रॉफिट हुआ वो उसका अपने चालू खाते में उसका वो मतलब
5: स्टोर होता गया कहीं ना कहीं,
4: स्टोर पड़ता गया, स्टोर होता गया
5: जी।
4: पहले चालू खाता में आपने 100 रुपए डाले रोज, मैं मतलब मुझे इतना है मुझे पता है कि अगर आप 100 रुपए भी रोज डाल रहे हैं तो महीने के 3,000 रुपए हुए ना
5: जी मैम।
4: तो 3,000 रुपए कम थोड़ी नहीं है
5: आपकी
4: एक अलग इन्वेस्ट के लिए, मतलब बहुत ज्यादा,
5: बहुत ज्यादा हो गए
4: है ना। तो उसने ये समझदारी करी और आज मैं बताऊं उसने अपने घर के कमरे से ये व्यवसाय शुरू किया था। आज उसकी अच्छी खासी एक शॉप है, उसका अपना बुटीक है और मैं बताऊं कि वो यहाँ से वो लोग चले गए, मतलब वो बाहर चले गए, लखनऊ चले गए और उसका वो यहाँ का जो लोन था वो भी क्लियर हो गया। अब वो लखनऊ में अपना बुटीक चलाती है बट मुझसे जब भी मिलती है तो वो मुझे थैंक यू बोलती है कि आप और एक और दो चार और थी लेडीज जिन्होंने हम लोगों ने उसको पूछ के, क्योंकि वो बहुत बेचारी परेशान थी और हम सब लोगों ने उसके मिल करके मदद करी और उसको ऐसे पूछ किया। आज वो जो लेडी है और उसके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। तो कहते हैं ना कि अगर हमने हिम्मत करी है, हम लोगों ने अगर एक हौसला बना लिया है तो सब कुछ हो सकता है यार।
5: मतलब
4: मैं क्या बताऊं कि कहते हैं ना कि एक महिला अपने आप में एक पूरी की पूरी जैसे कहते हैं ना जान है, मतलब वो सब कुछ कर सकती है
5: सब कुछ।
4: तो ये मतलब मेरा मुझसे रहा नहीं गया कि इस चीज को मैं बता दिया मैंने, बट बहुत ही अच्छा लगता है जब उनको मैं देखती हूँ आज। और कहाँ उसने 1,00,000 रुपए से शुरू किया था और उसने 1,00,000 रुपए का भी लोन लिया था,
5: बिल्कुल।
4: तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसीलिए आप सबको भी इस चीज के लिए मोटिवेट करती हूँ कि अगर किसी महिला को अपना जॉब शुरू करना है तो वो कम से कम लागत में शुरू कर सकती है
5: और एक बेहतर उसका आप वो भी बना सकते हैं, मतलब कम से शुरू करके और फिर आप उसको ज्यादा की तरफ ले जाएं।
4: हाँ, हाँ।
5: और बेहतर बने और हमेशा हमेशा अपने हौसले को आगे रखें, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया बहुत बेहतर तरीके से और हमारी मैम भी अपने हौसले को हमेशा आगे रखती हैं।
4: अच्छा
5: ऐसा नहीं,
4: हाँ।
5: मतलब इतना ऐसे आया, मुझे तो लगा था काफी अच्छे से आएगा। और अभी मैम पूछती अंशिका तुम्हें बताओ चाहिए क्या,
4: हाँ
5: क्यों तुम इतनी तारीफ मेरी कर रहे हो।
4: मैंने दिमाग में वही था कि कुछ लग रहा है चाहिए इसको, हाजमोला चाहिए, टॉफी चाहिए, कुछ चाहिए ऐसा, इस वजह से
5: वो तो मुझे ऐसे भी मिल जाता है,
4: ऐसे भी मिल जाता है। चलो तो कोई बात नहीं, अंशिका एक ब्रेक ले लेते हैं और पानी पी के आते हैं, गर्मी बहुत है, बिल्कुल मुंह सूख चुका है, पानी पी के आते हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खूबसूरत से नगमों को सुने, बस हम यू गए, यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इन्फेक्शन।
5: yes.
4: अब इन्फेक्शन के लिए हम आपको बता दें कि बहुत ज्यादा और जल्दी जब इन्फेक्शन होता है, इट मींस कि वो महिलाओं में होता है। और खास करके इस मॉनसून में। तो मॉनसून में क्या इन्फेक्शन होते हैं वो बताएंगी आपको अंशिका, लेकिन उसका निवारण, उसको ठीक करना मैं
5: क्योंकि हमारी
4: अंशिका कहती है कि आप ठीक बड़ी जल्दी करती है,
5: अच्छे से करती,
4: लोगों को हील बड़ा जल्दी करती हैं, तो इसीलिए अच्छे से करती है। तो इसीलिए उसका कारण बताएंगी अंशिका एंड निवारण बताऊंगी मैं आपको।
5: तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कारण की तरफ। तो कारण ये है कि बरसात में नॉर्मली क्या होता है ना कि जब मौसम ऐसा होता है तो हमारे घर में बहुत जल्दी दीवारों पे गीले कपड़े जो होते हैं वहाँ सीलन जल्दी आ जाती है। आप पुरानी किताबें रखते हैं, अलमारी में सीलन आ जाती है, और सीलन की वजह से कहीं ना कहीं फंगस हो जाती है। और ये फंगस जो जम जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा बारीक जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी वजह से जब आप हाथ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए बरसात के पानी से किताबें गीली हुई और आपने सोचा कि लाओ मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, और फिर आपने उस पर हाथ लगाया तो कहीं ना कहीं जो फंगस पानी में था, जो बुक्स पे था, वो आपके हाथों में आ गया। और फिर जब उसी हाथ से हम काम करते हैं
4: या आपने आपको कहीं टच कर लिया, स्किन पे टच कर लिया, बिल्कुल कहीं पे टच कर लिया, तो वो उसके आपके हाथों के माध्यम से हमारी स्किन पे पहुंच जाते हैं।
5: हाँ, और फिर हमें शुरू हो जाती है इन्फेक्शन। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम इसे पहचान नहीं पाते।
4: हाँ।
5: मतलब हमें लगता है कि नहीं, वो तो पानी था ना, बारिश का पानी था, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि आप ये जान सकते हैं कि आपको मॉनसून इन्फेक्शन हुआ है। वो ये होते हैं कि लगातार छींक आने का मतलब है कि आपने, जैसे मान लीजिए एक दिन बारिश हुई और आपने कुछ उसको क्लीन किया और उसी की शाम से आपको छींकें आना शुरू हो गई। और छींक भी ऐसी नहीं आई कि एक बार आई बस रुक गई, वो लगातार आपको आती रहेगी, 4-5 बार 6 बार आएगी। तो वहाँ आपको ये रियलाइज करना है कि हाँ, लगता है मैंने टच किया था तो मुझे इस वजह से इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी बात होती है आँख पे, गले पे, इन सब पे तेज खुजली। तेज खुजली का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर उसको, जब खुजली होगी और आप हाथों से वो करेंगे तो रेड वो उतनी जगह रेड हो जाती है। ज्यादातर गले के पास और नाक पे ही वो रेड होता है, जिससे पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। या फिर आपको लगातार खांसी आना और आपके गले में खराश हो जाना, और खराश भी ऐसी होना कि 2-3 बार के बाद आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होने लगे।
4: हाँ,
5: ऐसी खराश।
4: हाँ, ऐसा है। ये कारण जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि ये इन्फेक्शन जो होता है ना, ये आपकी आवाज भी बदल सकता है।
5: बिल्कुल। तो अब आवाज बदलते हैं क्योंकि अब है बदलने की बारी। तो हमने अपनी आवाज, मतलब मैं अभी तक बोल रही थी, और आप बदलाव करते हैं और आपकी अपनी आरजस समता की आवाज सुनते हैं, और चलिए कुछ ठीक करते हैं।
4: ओके, तो ठीक करने की बारी हमारी आती है, तो
5: देखते हैं आज मैम किसे ठीक करती हैं।
4: नहीं, मैं तो अब ठीक करने का जो मैंने
5: डिपार्टमेंट
4: मैंने थोड़ा सा अभी ढील कर रखा है इस समय, क्योंकि इस समय चल रहा है मेरा हीलिंग
5: प्रोसेस।
4: तो मैंने अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज,
5: छुट्टी दे दी है?
4: नहीं नहीं, मेरा काम वही है।
5: अच्छा,
4: पर मेरा प्रमोशन हो गया है इस समय, तो मैं थोड़ा सा हीलिंग पावर की ओर ज्यादा हूँ।
5: जी जी जी मैम।
4: तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारी होम केयर होती है उसको हम सबसे पहले उसको ठीक करेंगे। तो आपकी अपने जैसे जो भी है ना मतलब प्रॉब्लम्स होती है वो अपने आप ठीक होने लगेंगी। कहते हैं ना कि पहले हम जड़ पे काम करें।
5: जी मैम।
4: तो जड़ पे काम करने का सीधा सीधा आता है कि अगर आपके घर में सीलन है, फंगस है, तो उसको आप साफ करें सबसे पहले। तो क्योंकि घर के जिस भी हिस्से में सीलन या फंगस दिखे तो उसे तुरंत आपको साफ करना है। अब किससे साफ करना है? वेनेगर का यूज करना है, बेकिंग सोडा के पानी से साफ करें, ताकि सफाई करते समय आपके हाथों पे भी अगर लग जा रहा है तो उसका असर वो कम हो। एंड सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हाथ में और मुंह पे आपको मास्क और ग्लव्स पहन करके ही ये सारे फंगस को साफ करना है। समझ में आया?
5: जी मैम।
4: पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि आपके अगर बिस्तर पे और आपके कपड़ों को अगर फंगस लग गया है या फिर सीलन आ गई है, तो उसको सुखाने का काम आप कड़ी धूप में करें, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं। चादर में, तकिए के कवर और पर्दों को गर्म पानी में ही धोएं, मतलब ये बारिश के मौसम में, ठीक है? जब भी तेज धूप निकले तो उसे अच्छी तरीके से सुखाएं, ताकि जो भी डस्ट हो वो उसमें मर जाए। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं जब घर की डस्टिंग करती हैं तो कोई भी ऐसे डस्टर ले लिया, कपड़ा ले लिया, उसको डस्ट किया और वो धूल जो है ना वो उनके बालों में, उनके मुंह में, नाक में, हाथों में, उनके कपड़ों में लग जाती है, और उसके बाद वो सीधे फिर क्या कहते हैं, बच्चा रो रहा है या हस्बैंड को कहीं जाना है तो फटाफट वो किचन गई, हाँ हाँ बस आप 5 मिनट बैठो, मैं फटाफट खाना नाश्ता रेडी करती हूँ। तो एक तो आप धूल से सने हुए हो, ठीक है?
5: जी जी।
4: दूसरा, आपने हैंड वॉश नहीं किया, आपने अपने कपड़ों से ही पोंछ लिया, तो वो भी एक बैक्टीरिया हुआ। उसके बाद में आपने सीधे नाश्ता बनाया, चाय बनाई, तो क्या कहीं ना कहीं वो कर्ड उसमें भी गया, आपके साथ साथ आपके पूरी फैमिली तक वो नुकसान पहुंच गया।
5: जी मैम।
4: तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है? एंड अगर आपके घर में वेंटिलेशन है तो उसका ध्यान जरूर रखें। जब भी बारिश थमे तो घर की खिड़कियां खोलें, ताकि ताजी हवा और रोशनी अंदर आ सके, ताकि आपके जो भी मतलब आपके आपके बेड पे या आपके वार्डरोब पर जो भी इस तरीके का कोई फंगस हो तो वो धूप के माध्यम से बाहर निकल जाए, और जो एक नमी है वो भी धूप जो है वो सोख लें। साथ ही साथ में आप पूरे काम को करने के बाद में बारिश के समय जब तेज बारिश होती है तो आप स्टीम का ज़रूर भी इस्तेमाल करें। आप सादे पानी को मतलब आप सादा पानी लें और उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा गर्म कर लें, हल्का सा गर्म कर लें, और नाक के माध्यम से और हल्का सा मुंह खोलिएगा और पूरी गर्म वो जो भाप होती है उसका आप सेवन करिए, ताकि आपके अंदर अगर बैक्टीरिया चले भी गए हैं, वो धूल मिट्टी के कण चले भी गए हैं, तो वो बाहर निकल आए।
5: वाह, बहुत ही अच्छे से बताया मैम ने, और देखिए कितना अच्छे से मतलब फोर्स देके मैम ने बताया, बाहर निकल आए, मतलब बाहर निकलना ही चाहिए।
4: खराब खराब चीजों को बाहर तो निकलना ही चाहिए ना।
5: और निकाल भी कौन रहा है, मतलब अब तो वो तो निकलने ही निकलने चाहिए।
4: मैं अभी तो प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे और किसी को निकालना होता है ना तो सीधा सीधा एक फंडा आता है, गो टू हेल।
5: यस यस, आई नो मैम, आई नो वेरी वेल। और
4: गो टू हेल, आई नो वेरी वेल।
5: अरे वाह,
4: ये तो बहुत ही अच्छा सा एक बन गया ना,
5: मतलब आजकल हम लोग वो क्या कहते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा है, मतलब बनाते बहुत अच्छा।
4: नागेश्वर जी कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा सास को भी बोलने दो, नहीं तो फिर बोलेगी कि मेरी बहू तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती है।
5: अरे मतलब मेरी इतनी कहाँ, आप नागेश्वर जी, या तो आपने गलत कहा, ऐसा हो सकता है कि मेरी सास को ना बोलने दूं?
4: जी,
5: क्योंकि अगर मैं सासू माँ को नहीं बोलने दूंगी ना तो ऑन एयर कुछ नहीं होगा और ऑफ एयर होगा, क्या बात है भैया, बहुत तुम मतलब मैंने थोड़ी सी ढील क्या दे दी है, तो बहू जी सुधर जाइए, वरना तो फिर आप ही को
4: अभी
5: देखना।
4: भी मेरे पास घर की तिजोरी की चाबियां मेरे पास,
5: पावर है मेरे पास, ये मत समझना कि मैंने सब,
4: मेरी कमर में आज भी वो तिजोरी की चाबियां हैं,
5: त्याग नहीं दिया है मैंने, संन्यास नहीं ले लिया है कि अगर बहू आ गई तो सब बहू को अर्पण करके और बाद में चलो भैया अब हमारी तो हो गई, वैसा वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है नागेश्वर जी,
4: बस आप कर रहे हैं, यहाँ कोई सास नहीं है, कोई बहू नहीं है, यहाँ सब बराबर ही है।
5: नहीं नहीं, अच्छा है,
4: तो
5: अगर मुझे रियलिटी में इतनी अच्छी सास मिल जाती तो फिर तो अच्छा था मुझे, ऐसा
4: बैठने नहीं दूंगी, इतना जान लेना। सारा दिन काम करवाऊंगी। तो चलो नागेश्वर जी एंड नागेश्वर जी हंस रहे हैं बहुत बड़ा सा मुंह फाड़ करके। तो नागेश्वर जी, सविता जी एंड सविता दुबे एंड हमारी प्यारी अनिंदिता मैम भी अभी आई हुई हैं, और मैंने देखा ही नहीं यार, 2:24 पे उनका मैसेज आया है एंड वो लिख रही हैं गुड शो, थैंक यू सो मच,
5: थैंक यू मैम,
4: थैंक यू सो मच। अंशिका भी आपको थैंक यू बोल रही है एंड मैं भी आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नागेश्वर जी एंड महक हमारी नई लिसनर्स हैं, तो महक प्लीज़ हमें बताएं कि आपको हमारा शो पिछले 2 दिनों से आप सुन रही हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा, स्पेशली महक क्योंकि आप हमारी नई लिसनर्स में से एक हैं। एंड मोहन जी समोसा वाले, तो जलेबी खाएं और खाएं, तो आपके पास अगर जलेबी और समोसे की शॉप है तो अंशिका के मुंह में ऑलरेडी पानी आ जाता है, तो प्लीज़ उसे एक समोसा 2 समोसा या जलेबी खिला दीजिए, ठीक है। और कौन आए हैं, एंड नागेश्वर जी अगेन एंड अगेन, तो चलिए इरफान शाह जी, सुमन जी एंड तीर्थ प्रसाद सोनी जी, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे और आपके पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो चलिए अंशिका यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए, और आज का टिप ऑफ द डे रेडी है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक और एक सुंदर सा गाना आपको सुनाएंगे।

0: तो भाई आ गए हैं हम और फिर से, और बिल्कुल नहीं हुई हमसे जो है वो इंतज़ार की थी, बहुत थी बेताबी आपसे बताने की टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे फटाफट से बता देती हूँ कि हमारी प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी महिलाओं के लिए ये है कि आप अपने चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे मॉल्स में जाएं या जहां भी जाएं, वहां लिफ्ट को छोड़ करके आपको सीढ़ियों का यूज करना चाहिए।
1: वो क्यों?
0: वो इसलिए कि जो महिलाएं वर्कआउट नहीं कर पाती, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो उनको फिट रखने की ये एक अच्छी सी टेक्निक है कि अगर लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का होता है तो उनको फिट रखने की ये एक अच्छी सी टेक्निक है कि अगर लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का उपयोग करेंगे
1: तो फिर तो हमें हफ्ते में एक बार मॉल जाना चाहिए।
0: हाँ,
1: हफ्ते में एक बार आप मॉल जाइए और वहाँ भरपूर सीढ़ियों का यूज करिए। आप इस आप ना स्केटिंग से मत जाइएगा, क्योंकि एक्सलेटर से आप जाएंगे तो फटाफट पहुँच जाएंगे, तो आपने जाना है सीढ़ी से। ये आप आज आपका टिप ऑफ द डे। तो मेरा गाना भी आ गया, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन आज के लिए अलविदा कहेंगे अंशिका और हम दोनों, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
0: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा लेके आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम। जी हाँ, कॉलर टून गुंडा। और आज दिन है बुधवार। बुधवार थोड़ा सा हम वाइजी मनाते, थोड़ा सा बुद्धिमानी यूज़ करते हैं उसमें और अपने दिन को बेहतर बनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ये सप्ताह का तीसरा दिन होता है और हम उस पड़ाव पे होते हैं जब हमारे पूरे हफ्ते के वर्क को हम वाइजली थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरे करने के, मतलब आधा कम्प्लीट हो चुका होता है और आधा बाकी होता है, उस काम को हम दिमाग लगा के जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज के दिन को हम मानते हैं वाइजी वाला वेंसडे। फिलहाल बढ़ेंगे आपके कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले बता दें आपने ट्यून क्या करके रखा हुआ है। आपने ट्यून कर रखा है रेडियो कैनसले 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन, और वक्त है आपकी फरमाइशों को पूरा करने का। जी हाँ, आकांक्षा आई है और आपकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा। स्टूडियो का नंबर वही है आपका पुराना 6393314 29, यानी कि 6393316429। चलिए चलते हैं आज के सफर के पहले सॉन्ग की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि जिस हिसाब से मूड बना रखा है इस मौसम ने, कभी बद्री करता है, कभी बारिश करता है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो एक प्यारा सा नगमा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहते हैं कि बारिश में लोग पूछते हैं ना, अक्सर पूछते हैं कि अच्छा मुझसे कितना प्यार करते हो, तो कभी भी अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो फिर उससे आप ये कहिएगा कि जब बरसात आएगी ना तो मुझसे सेम सवाल आप दोबारा से करिएगा, और जब आपके सामने ये सवाल रखा जाए कि मुझसे कितना प्यार करते हो तो उसे कहिएगा, पूछा करते हो ना कि कितना प्यार है तुमसे, तो लो अब गिन लो बारिश की ये बूंदें। बिल्कुल ना, बारिश की बूंदों को कोई गिन सकता है, बस उसमें भीगना अच्छा लगता है, और जब आप भीगते हो ना बारिश में तो आप बूंदों पर जाते ही नहीं हो, आप तो बस कहीं किसी एहसास में गुम हो जाते हो, और बस उसी एहसास को कहते हैं प्यार। जब प्यार की बारी आती है तो भी आप बस भीगना पसंद करते हो, गिनना और कंपेयर करना या फिर मेजरमेंट करना, ये तो प्यार का मसला नहीं है जनाब, तो उससे ऊपर उठिए। और अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने आपसे पूछा कि कितना प्यार करते हो, तो जवाब में यही दीजिएगा कि पूछा करते हो ना कि कितना प्यार है तुमसे, तो लो अब गिन लो बारिश की ये बूंदे। और हाँ, इसके अलावा एक और प्यारी सी बात, तो बात ये थी कि बारिश सा इश्क तेरा, बारिश सा ये इश्क तेरा मुसलसल बरसात बरसता रहा, बारिश सा ये इश्क तेरा मुसलसल बरसता रहा, भीगता रहा दिल मेरा तुझमें ही कहीं डूबता रहा। तो ये होता है बारिश, ये होती है बरसात, और ऐसा ही होता है कहीं ना कहीं इश्क, ना हम उसको भांप पाते हैं ना ज़्यादा उसमें दिमाग लगा पाते हैं, लेकिन हाँ एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि आज की पहली डिमांड जो आपकी अपने आरजी आकांक्षा की प्लेलिस्ट से है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो एंजॉय करिए इस नगमे को, उसके बाद आते हैं आज की फर्स्ट डिमांड लेकर के। अगर सबलू जी ने अभी तक लिंक भेज दिया होगा तो उनकी डिमांड होगी, वरना रविंद्र जी की बड़ी प्यारी सी डिमांड आई है हमारे गोविंदा जी के पे फिल्माया गया गाना। फिलहाल उससे पहले आपकी अपनी आरजी आकांक्षा की पसंद का ये नगमा आप तक पहुंच रहा है, एंजॉय करिए। जस्ट यू गई और यू आई आप सभी से दोबारा से मुलाकात करने, लेकिन हाँ उससे पहले उस बारिश को ज़रूर महसूस करिएगा जब कभी आधी रात में कड़कती बिजली बरसी हो, कोई अचानक से मेहमान आपके घर आया हो, और उस बारिश में कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना हो जैसा कि ये गाना आपको बता रहा है, तो उस फीलिंग को जिंदा करिए और एंजॉय करिए ये प्यारा सा गाना आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की प्लेलिस्ट से। आप सुन रहे हैं 3 से 4 के सफर में आपका अपना पसंदीदा शो, जी हाँ फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा को।

किसी रिश्ते में गर्म जोशी आती है या बहुत ज्यादा पीक पे मोहब्बत होती है, भले ही आजू बाजू चारों तरफ ठंडा मौसम हो, पर उस प्यार की जलन में कोई ना कोई तो तपता है। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता है जब कोई खास अचानक से आपके दरवाजे पे दस्तक दे और आपके चेहरे पे प्यारे से मुस्कान आ जाए। एंजॉय करिए इस तरह।

ना दोस्तों, भीगी होती है रात लेकिन जल रहा होता है किसी का मन, किसी का दिल। कि शायद नहीं, ये पूरा यकीन से मैं कह सकती हूँ कि वो जो जलने का जो तड़प होता है उसका कारण बस इतना होता है कि अभी तो हम साथ हैं, कुछ पल में सामने वाला चला जाएगा। मतलब मुलाकात में ऐसा कितनी मतलब अजीब सी बात होती है, हम इतना खुश होते किसी से मिलने पे कि खिल उठते उसको देख के, पर जैसे ही आधा टाइम बीतता स्पेंड होता है हम इस चिंता में मतलब फंस जाते हैं कि कुछ ही पल बाद अगला हमसे दूर होने वाला है। हम मतलब सच बोले तो प्रेजेंट पे हम कभी फोकस कर ही नहीं पाते हैं, पर हाँ जितना भी एहसासात होता है हमारा ऐसा वाला रोमांटिक वाला, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं होता। हम जिंदगी भर ऐसी मुलाकातों को कभी भूल नहीं पाते। फिलहाल आज की पहली डिमांड लेते हैं हम अपने सबलू सावंत जी की ओर से, और इनको भी सुनना एक प्यारा सा रोमांटिक वाला सॉन्ग, और फिर आएंगे एक अपने प्यारे लिसनर रविंद्र जी की डिमांड के साथ में, जिन्होंने भाई हमारी चीची जी पर फिल्माया गया गाने की डिमांड की है, दैट टाइटल ट्रैक ऑफ राजा बाबू। तो जाइएगा कहीं नहीं, 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने शो कॉलेज इन गोंडा को। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और ये गाना हमारे सबलू सावंत जी की ओर से भाई मुंबई से।

काफी सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। भाई हम दो दिन गायब थे और सबको पता चल गया हम बीमार थे। चलिए आते हैं मैसेजेस की ओर भी, लेकिन उससे पहले दो चार प्यारे प्यारे नगमे आए हुए हैं और रोमांटिक और साथ में कुछ इनहेंस करने वाले मूड को आए हुए हैं, तो उसको पहले एंजॉय करेंगे फिर आएंगे आपकी चैट बॉक्स की ओर। तब तक एंजॉय करिए सबलू जी की इस प्यारी सी डिमांड को।

यहाँ तो सब लोजी ने बता दिया मौसम बदलते ही ये भी किसी के प्यार में पड़ चुके हैं, हो सकता है आम के प्यार में पड़ गए हो। भाई आम का मौसम है 10-15 दिन ही मुश्किल से हम खा पाते हैं, तो आम के प्यार में अगर आप पड़ गए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है, बधाई हो आपको कि आप आम के प्यार में पड़ गए हैं। वैसे आम का ही मैंने जिक्र किया, यहाँ पे फल की बात करी, किसी आम इंसान की बात नहीं करी, क्योंकि आप सभी हमारे लिए बेहद खास हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, डिमांड हमारे पास में रविंद्र जी की, आइए एंजॉय करते हैं इस राजा बाबू से टाइटल ट्रैक को, फिर आते हैं पंडित जी की डिमांड के साथ और उसके बाद में अमित कुमार जी आपके डिमांड, एंजॉय करते रहिए।

क्या बात है भाई, बारिश को लेके बड़ी प्यारी से लाइन आई हुई, हम खुद को रोक नहीं पाए हैं। नागेश्वर ठाकर जी लिखते हैं रतलाम की गलियों से, कह दो बारिश से कि थोड़ा थम के बरस, कह दो बारिश से कि थोड़ा थम के बरस, पहले इतना भी ना बरस कि वो आ ना सके और फिर बाद में इतना बरस कि वो जा ना सके। ओह क्या बात है, क्या बात कह दी आपने, थैंक यू सो मच।

शुक्रिया रविंद्र जी की डिमांड पे अभी आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया। और अगर आप भी अपने डिमांड्स को हम तक पहुंचाना चाहते हैं बेशक फोन उठाइए और मिला लीजिए वही नंबर जो आपका पसंदीदा नंबर है 6393316429 यानी कि 6393 3164 29। आगे बढ़ेंगे हम आपके मैसेजेस की ओर भी जरूर आएंगे लेकिन उससे पहले दो प्यारे प्यारे रोमांटिक वाले गाने सुनना चाहेंगे और आप तक भी पहुंचाना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड मेरे पास में आई है प्रबल मिश्रा जी पंडित जी की ओर से। फिर नेक्स्ट डिमांड होगी हमारी अमित कुमार जी की। लगातार एक से बढ़कर एक रोमांटिक और हिट सॉन्ग आप एंजॉय करें आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। एंजॉय करते हैं इस बहुत ही प्यारी से रोमांटिक वाले सॉन्ग को। और हाँ, अगर किसी से मोहब्बत है तो थोड़ा सा फील जरूर कर लीजिएगा।

0: था दोस्तों, गाना बहुत ही उम्दा था, बहुत प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग। और बिल्कुल सही बात है कि महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आंखों से ऐसी शरारत करेंगे। कहते हैं ना कि नजर से ही कहीं ना कहीं दिल तक पहुंचने का रास्ता बनता है। तो जब नजरें किसी की आप पे पड़ती हैं तो आप मुस्कुरा जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और चेहरा आपका ब्लश करने लगता है। शायद यही प्यार है और शायद इसी को बोलते हैं कि प्यार में सवरना। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे पास में आई हुई है हमारे प्यारे लिसनर अमित कुमार जी की ओर से, और इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे अपने प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे वाले लिसनर इट्स कुमार जी को, जो हमें सुन रहे हैं एमपी रीवा से। चिंटू जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई लिखते हैं, भारी बारिश के कारण लड़कियों के मेकअप धुल गए, सेल्फी में भारी गिरावट है, ओ माय गॉड। चलिए सर, तो फिर हम अपने प्यारे लिसनर यानी कि कुमार साहब को अमित जी की स्पाइसी डिमांड को डेडिकेट करेंगे, और साथ ही साथ में चिंटू जी के नाम भी कर देते हैं भैया, क्योंकि आंखें खोल के देख लीजिएगा, बारिश में हो सकता है किसी ने मेकअप ना किया हो और सेल्फी अभी भी ली जा रही हो। एंजॉय करते हैं इस प्यारी सी डिमांड को। अभी आपने एक एंजॉय किया है प्रबल जी की डिमांड, और ये नेक्स्ट डिमांड हमारे अमित कुमार जी की ओर से मोहब्बतें मूवी से, जो कि एवरग्रीन मूवीज में से एक मानी जाती है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।
1: जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है और होता ही रहेगा। और नेहा जी का कहना है बहराई से जो मैं सुनती है, मैम जी अब तो मेकअप की जरूरत भी नहीं है, बारिश में भी सेल्फी अब अच्छी आ जाती है, कारण है फिल्टर। जी हाँ जनाब, तो हमारे चिंटू जी को थोड़ा सा अपग्रेड करिए कि भाई फिल्टर का जमाना है। और दूसरी बात ये है कि भाई गुलाब जामुन में मिठास कम नहीं हुई है, बस थोड़ा सा रफ्तार कम करने की सोचा था हमने, लेकिन आप लोग हैं कि हमारी रफ्तार को बढ़ा ही देते हैं। आज ही हमको एक सलाह मिली थी कि अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम कर लिया करिए, क्योंकि लोगों को हो सकता है आपकी बातें समझना है, लेकिन हमें लगता है आप लोगों को हमारी रफ्तार तेज होने की ही आदत पड़ गई है। तो एंजॉय करते रहिए फिलहाल ये रफ्तार वाला बहुत ही प्यारा सा 90s हिट से एक नगमा मोहब्बत मूवी का। और ये डिमांड है अमित जी की और डेडिकेशन में आया हुआ है हमारी ओर से इट्स कुमार साहब को और हमारे चिंटू जी को। और बड़े ही दिनों देर से आए हैं कुछ हमारे प्यारे श्रोता, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है। एंजॉय करते रहिए, आते हैं चैट बॉक्स की ओर इस नगमे के बाद।

हाँ दोस्तों, तो घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि 3:27 हो चुका है और आधा सफर कहीं ना कहीं आपके आज के शो का कंप्लीट होने को है। जस्ट 3 मिनट बाद हम लेंगे एक प्यारी सी डिमांड, लेकिन उससे पहले लेना चाहेंगे आप सभी के पैगामात को। आते हैं चैट बॉक्स की ओर और रुख करते हैं आप सभी के मैसेजेस की ओर, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों ने हम तक क्या क्या क्या क्या लिख के भेजा हुआ है। चलिए तो फिर चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर, जिसमें हमें सबसे पहला मैसेज हमें जो दिख रहा है वो है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि हमारे सुरेंद्र यादव जी का गौरा चौकी से। फिर हमारे मुस्तफ़ा जी सऊदी अरेबिया से, मुस्तफ़ा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरक्षान सारी जी हमारी सीतापुर से जुड़ी हुई हैं। गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, मेरा सॉन्ग डेडिकेट है प्रमुख कुमार जी को। ओके, तो प्रमुख कुमार जी आपकी डेडिकेशन में एक प्यारा सा गाना आया हुआ है, आप बने रहिएगा, सुनिएगा जरूर, जाइएगा कहीं नहीं, बस कुछ देर बाद आप तक ये गाना जरूर पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख कुमार जी लुधियाना से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून प्यारे उद्घोषक का महोदया जी। ओके, बहुत बहुत स्वागत है एंड शुक्रिया। सबलू सावंत जी हैं हमारे प्यारे सावरे बलम जी सांता क्रूज मुंबई से। शुभ दोपहर आर्य आकांक्षा जी, शुभ दोपहर आपको भी। प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी हमारे आ गए हैं, गुड आफ्टरनून आपको। और हाँ जी, राधे राधे जरूर मेंशन किया करिए, अच्छा लगता है, राधे राधे जी हाँ। और इसके अलावा नागेश्वर धाकर जी हैं, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार नमस्कार आपको भी। रतलाम की गलियों से हमारे प्यारे सुखी राम जी। इसके अलावा कमल नयन जी हैं, आकांक्षा मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी कमल जी, और उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे। इसके अलावा अमित चौधरी जी हैं, जो हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं, नमस्ते यवतमाल महाराष्ट्र से ही हमें सुन रहे हैं, नमस्कार आपको भी। और मैसेज में आया हुआ है, प्रमुख जी लिखते हैं, प्रिय प्रसारक महोदया जी, आज का प्रोग्राम काफ़ी दिन बाद सुन रहे हैं, एक्चुअली हम 2 दिन बाद खुद ही आ रहे हैं, हम इस समय किसी कारणवश तनिक चिंतित थे, आप तनिक थे, हम बहुत ज़्यादा थे पिछले 20 दिनों से, फिलहाल 2 दिन के रेस्ट के बाद में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और हाँ, हमारी गैर मौजूदगी में भी आप लोगों ने उतना ही प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आयुषी जी ने भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया मैंने सुना था, लेकिन आपकी आवाज़ कान में पड़ते ही चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई है, ओहो अब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए, जिंदगी हमारी सफल हो जाए जनाब। बस ये समझ लीजिए, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अगर आप किसी को प्यार और मुस्कान बांटते हैं तो ये आपने समझ लीजिए आपकी जिंदगी का सार्थक पल होता है। मुस्तफ़ा जी को गाना काफ़ी पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। लवली सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ में आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, और उन्होंने फीडबैक दिया है, भाई हमारी चॉइस के गाने को बहुत अच्छा गीत है, थैंक यू सो मच। और नागेश्वर जी कहते हैं, बारिश कितनी हो रही है बाहर लेकिन दिल की आग को बुझा नहीं सकता। हाँ ये तो है, वही इसलिए तो मैंने गाना बजाया था। अब फिर से दोबारा नहीं बताएंगे, रहने दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे इसलिए वापस से आते हैं। चिंटू जी हमारे साथ में, हेलो एवरीवन, हेलो आपको भी, कैसे हो आप सभी, बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारे हैं सभी, बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा, जब बारिश हो तो बाहर बैठा करो, किस्मत खुल जाएगी, और अगर किस्मत ना खुली तो क्या हुआ, कितने दिनों से ना धुली वो शक्ल तो धुल जाएगी। ओ माय गॉड, चिंटू जी आप भी बड़े मजाकिया हो जी। हाँ जी, एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिएगा। जब बारिश हो तो बाहर बैठा करो, किस्मत खुल जाएगी, और अगर किस्मत ना खुली तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई, कितने दिलों से ना धुली हुई वो शक्ल तो धुल जाएगी। ओ माय गॉड, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। नेहा जी हैं बहराइच से, नमस्कार गुलाब जामुन दीदी, शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आपको भी बड़ी दीदी। हाँ, ये हमारी बड़की दीदी हैं, और इनसे भी बड़की दीदी हमारी नीना जी हैं, यानी हमारी मंगू जी तो आ गई, चंगू जी का पता नहीं है, देखते हैं कब तक आती हैं। गाँव में पहली बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है, लेकिन शहर में नहीं, गलत बात है नागेश्वर जी, आप जहाँ रह रहे हैं आपके उधर का इलाका ऐसा होगा, लेकिन हमारे इधर भी, और पहली बारिश नहीं, हर बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है। और इट्स कुमार साहब है एमपी रीवा से, लिखते हैं, वेरी गुड गुड इवनिंग आरजे एंड ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी वेरी लवली वाला गुड इवनिंग टू यू सर। और नेक्स्ट मैसेज की बात करें जी, तो हमारे बीच में है मुकेश यादव जी गोंडा से, लिखते हैं, गुड नहीं अब ध्यान से सुनिएगा, गुड अर्ध आफ्टरनून डियर मैम आरजे आकांक्षा जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों की जितने भी ये प्यारे वाले स्किल्स तो हमको निखर के आते हैं ना दिख के मैसेजेस में, हम सब समझते हैं, इसलिए हमने अच्छे से पढ़ भी दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखा है फिर नेक्स्ट मैसेज में हमारे प्यारे लिसनर्स ने, कि आप लोगों ने बहुत सारा फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सविता दुबे जी आ गई हरकापुर से, गुलाब लेके और ही करते हुए चेहरे के साथ में, आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें, ये दुआ है आपके लिए। और नेक्स्ट
मिश ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरी बाइक का इंजन ऑयल का फिल्टर खराब हो गया है, क्या ये फिल्टर काम कर सकता है? आप कुछ भी कर सकते हैं कुमार साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। जी हाँ, आप बस ट्राई करके देखिएगा एक दफ़ा। और इसके बाद में ओके, मुकेश जी ने कहा भैया आज हमारे लिए कोई गाना नहीं प्ले करिएगा, लेकिन हम आपके लिए एक प्यारा सा गाना सोच रखा है हमने, हम जरूर वहां तक आएंगे। उससे पहले लेंगे एक लाइन, हमारे प्रबल मिश्रा जी लिखते हैं, जीवन में सबसे सुंदर चीज इंसान का स्वभाव होता है, क्योंकि रूप और पैसा एक दिन साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी सोच और अच्छे संस्कार हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, इसलिए हर हाल में दिल और सोच दोनों साफ रखिए, साफ सुथरे कपड़े भी रखिए बारिश में, वरना फिर थोड़े दिनों बाद में उससे आने लगी बदबू, तो थोड़ा सा सुखा खा के रखिएगा। ये हमारी ओर से हिदायत थी, जितना साफ कपड़ा उससे कई गुना ज्यादा आपका दिल और दिमाग दोनों साफ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी। और आज दीदी गायब हैं, दो दिन बाद हम आए तो वो गायब। ओहो, तो दीदी जी को ढूंढिए, तब तक हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा। और ये नगमे की डिमांड आई हुई हमारे पास में हमारे प्यारे लिसनर हैं, जिनका नाम है बताते हैं आप सभी को, इनका नाम है मोहम्मद शाकिर जी। चलिए इनके पसंद का ये गाना प्ले करते हैं, फिर आते हैं हम अपने प्यारे लिसनर यानी के सुखी राम जी और अपने कमल नयन जी की डिमांड के साथ में। अब इन्हीं दोनों नगमों में से कोई ये गाना हम अपने प्यारे मुकेश जी को डेडिकेट करेंगे, उससे पहले एंजॉय करिए इस प्यारी सी डिमांड को। 3 से 4 के सफर में शो है आपका कॉलर ट्यून गुंडा।

भाई रीना शर्मा जी भी हमारे साथ में रुड़की उत्तराखंड से जुड़ गई हैं। लिखती हैं, दो दिन बाद आपकी आवाज सुनाई दी प्रोग्राम में, वो मजा नहीं था। कोई बात नहीं, फिलहाल हम फिर से आ गए हैं और एंजॉय करी इस प्यारे से नगमे को आपके लिए स्पेशली, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम बड़ा अच्छा होता है। एंजॉय करिए रीना जी।

हमें लगता है दोस्तों हम चिपकाने का काम बड़ा अच्छा करते हैं। हमारे सारे लिसनर्स हमसे कहते हैं दीदी हमको भी कहीं चिपका दीजिए, कोई कहता है हमें कहीं चस्पा कर दीजिए, कोई कहता है हमको भी कहीं पे ऐड कर लीजिए। तो भैया अगर किसी का दिल टूटे, दिमाग टूटे, कपड़ा फटे, कुछ भी हो, सिलाई केंद्र यही मौजूद है 3 से 4 के सफर में। एंजॉय करिए इस गाने को।

हाँ जी श्रोताओं, और अब वक्त हो गया है कमल नयन जी की डिमांड को कंप्लीट करने का। चलिए चलते हैं इसे और रुक करते हैं, फिर आते हैं अपने सुखी राम जी की प्यारी सी डिमांड के साथ, और उसके बाद में होंगी हमारी अजीत साहब की डिमांड, और फिर हमारे दरक्षा अंसारी जी की डिमांड जो कि डेडिकेशन में आई है प्रमुख जी के। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

आईना अगर है तो फिर चश्मा लगाना क्यों, ऐसा सवाल करते हैं हमारे सबलू जी। तो चलिए आपको जवाब दे देते हैं। आईना एक चीज का रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन जो चश्मा है वो आपको धूप से बचाता है और गड्ढे से बचाता है कहीं ना कहीं, और रिफ्लेक्शन आपकी आंखों को तो नहीं चाहिए ना जनाब, इसलिए चश्मा लगाना जरूरी है। उम्मीद है आप तक जवाब मिल गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे सुखी राम जी की। अभी आपने एंजॉय किया कमल नयन जी की डिमांड को, और उसमें हमने चिपका दिया था हमारे प्यारे मुकेश अंबानी जी को। हाँ जी, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। हाँ जी, जो हमें दिल से सुनते हैं ना, दिल का अमीर आदमी अंबानी ही होगा।

बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी और हमारे सुखी राम जी की ओर से, और इसको हमने डेडिकेट किया था हमारे चिंटू जी को भाई, जिन्होंने कहा हमको भी कहीं चिपका दीजिएगा। तो लीजिए, आप भी चिपक गए और अब बारी आगे हमारे अजीज साहब की डिमांड को कंप्लीट करने की। और इस नगमे के बाद हम आएंगे अपनी दरक्षा जी के सॉन्ग की ओर, जो कि प्रमुख जी को डेडिकेट है। उसके बाद सुरेंद्र यादव जी का नगमा है, जो हम समर्पित करेंगे अपने अजय मिश्रा जी को, और साथ ही में किसी ब्लैक चश्मे वाले को जिसने चश्मा लगा रखा है और साथ में डीपी भी लगा रखा है। तो भैया जिसने काला काला चश्मा लगा रखा है, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करिएगा।

मनी जी, अगर वक्त रहा तो लास्ट डिमांड आप ही की लेंगे, परेशान ना होइए। और थोड़ी थोड़ी देर हो रही है, ज्यादा देर नहीं हो रही है, वक्त ही है, आगे पीछे होता रहता है, बीतता है, क्या कर सकते हैं हम, रोक तो नहीं सकते ना वक्त को।

मैं किसी नजर को तो इंतजार आज भी है, लेकिन उस बारिश का और उस रात का जो अभी कुछ दिन पहले ही बीती थी, काश वो फिर से मौका आए, वो क्षमा फिर से बने और हम फिर से एक दफा बारिश में भीजे। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड आई हमारे पास में दरकशान अंसारी जी की, गाना बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग हमारे प्रमुख जी के लिए फ्रॉम लुधियाना। चलिए एंजॉय करते, सीतापुर से आए हुआ प्यारा सा नगमा किसी के लिए बतौर पैगाम।

मौसम का आनंद उठा रहे हैं प्रमोद कुमार जी फ्रॉम लुधियाना, और भाई फीडबैक लेके आ रहे हैं। दरक्षा जी प्लीज आके उनको रिप्लाई करिएगा। और रामकृष्ण नंदन जी हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ में इलाहाबाद से। गुड आफ्टरनून आरजे आकांक्षा मैडम, आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बड़ी वाली शुभ दोपहर आपको। सर एक्सेप्ट करिएगा हमारी ओर से, फिलहाल ये गाना बहुत प्यारा सा है, एंजॉय करिए।

परसू है मितवा जी। हाँ दोस्तों, आंखों से ही तो सारा काम होता है भाई, चाहे मौसम हो या कुछ भी हो, आप सबसे पहले देख के उस पर लुभाते हैं उस पर। और हमारे नागेश्वर जी कहते हैं लगता है दरक्षा अंसारी सो गई नहीं, सोनी गई थी, बस आप लोग के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। और सबसे सामने लिखते हैं आंखें भी कई कलर की होती हैं, नीली, काली, पीली, भूरी। वैसे आपकी कौन सी, वैसे पीली भी होती है क्या? मैंने बोल दिया था एक्स्ट्रा हो गया, और मैं एक्स्ट्रा देती हूँ। ये मौसम का जादू है मितवा, ये कौन से अघोरी से बढ़ाई किया था, ऐसा जादू चला है कि सबका सब मौसम के दीवाने हो गए। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने पंडित जी, सोचने की बात है। वैसे जवाब देंगे हमारे नागेश्वर जी इस बात का। अभी हम बढ़ेंगे उस गाने की ओर जो हमारे पास में आई हुई है, किसकी डिमांड पे? हमारे प्यारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे, फ्रॉम गौरा चौकी से। गौरा चौकी में जिस जिसने काले चश्मे लगाए उन सभी को डेडिकेट ये गाना। लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे अजय मिश्रा जी को डेडिकेट, और उसके बाद में चैट बॉक्स में जिसने भी डीपी लगाई है काले चश्मे के साथ में उसको भी डेडिकेट। भैया डेडिकेशन करते हुए ढेर सारे लोगों को हमने चिपका दिया एक ही गाना और एक ही फ्रेम में, आप सभी को पहनना होगा ये काला चश्मा। एंजॉय करते 90s से बहुत ही उम्दा सुहाग मूवी का ये सॉन्ग। वाह वाह वाह, क्या बात है।

भाई बड़ी ही बेहतरीन सी डिमांड थी हमारे सुरेंद्र यादव जी की, और नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में आई हुई है रमेश कुमार जी की, और इस डिमांड को हम डेडिकेट करने वाले हैं अपनी प्यारी ऋषि मंगू जी को। नेहा जी आपके लिए स्पेशली ये गाना एंजॉय करिए।

भाई ऐसी कलाकारी होती है सबलू जी, हम तो डरा गए थे पढ़ के मैसेज आपका, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। लिखते हैं, तेरी काली आंखों का जादू ना जाने किस किस के दिल पे चला है। ओह हो, आपको पता है सच में ऐसा हुआ है? चलिए कोई बात नहीं। तेरी काली काली आंखों का जादू ना जाने किस किस दिल पे चला है, मुस्कुरा कर तूने होठों से कई दिल के चैन तक छीन लिए हैं। करिश्मा करिश्मा करिश्मा करिश्मा करिश्मा करिश्मा करिश्मा, ये इतना करिश्मा इन्होंने करवा दिया है हमसे जिसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

98.8 से बड़ा ही प्यारा सा नगमा, और हमारे नागेश्वर जी कहते हैं भैया चंगू मंगू दोनों को डेडिकेट करो, नहीं जो आया उसी को करेंगे, जो नहीं आया वो लेट लतीफ है इसलिए उसको नहीं मिलेगा, जो आएगा वो पाएगा, वो होता नहीं खोया पाया के अंदर, बस ऐसा ही समझ लीजिए कुछ। और हाँ जी, लास्ट डिमांड लेंगे मनी जी की, लेकिन उससे पहले एक और डिमांड लेते हैं क्योंकि वक्त ने बता दिया 3:54 हो गया। भैया इतनी जल्दी समय भागता है पता ही नहीं चलता है। सचिन शुक्ला जी जुड़े हुए हमारे साथ में दिल्ली से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और कुछ हमें ऐसे प्यार से चुप चुप के सुनते हैं उन सबका भी अभिनंदन है जो जहाँ से सुनना है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड मेरे पास में आई हुई है राजेश जी की, और इनको सुनना है घर आजा परदेसी। चलिए परदेसी को बुलाते हैं घर तक और सुनते हैं, परदेश मूवी से नहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से, ये प्यारा सा नगमा बड़े दिनों बाद।

और सब नागेश्वर जी का कहना है 3 तारीख से फिर बारिश शुरू होगी, लेकिन हमारी तो बारिश रुक ही नहीं रही ना, 2-4 बूंद ही सही लेकिन वो बरस जरूर जाते हैं। और अभी चलते हैं, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं अपने राजेश जी की डिमांड को, और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके अमित चौधरी जी की, जो हमें सुनने हैं महाराष्ट्र यवतमाल से, और आज कुछ डिमांड रह जाएंगी तो उसके लिए पहले से ही माफी।

क्या गाना था, वाह वाह मजा आ गया भाई। जिस जिसके भाई बहन या कोई भी कमाने के लिए ही घर से बाहर होगा उसका तो दिल दहल गया होगा, हमें पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है अमित चौधरी जी की महाराष्ट्र से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। फिर आते हैं नेक्स्ट लास्ट डिमांड लेकर के मनीष शर्मा जी की भटपुरा से, और जिन जिनकी डिमांड है जाएगी वो है हमारे आज प्यारे लिसनर देवी प्रसाद जी। देवी प्रसाद जी के अलावा है राकेश वर्मा जी जो हमें सुनते हैं जस्ट बगल से यानी कि दुखरनाथ से। प्रिंसी जी हैं, आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के कारण आप सभी की डिमांड आज हमसे रह जाएंगी। तो एंजॉय करते हैं फिलहाल इस डिमांड को, अमित चौधरी जी की डिमांड को।

से भर के रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और नींद और चैना दोनों आएंगी तब जब आपके सपने पूरे होंगे। तो पूरी कोशिश से अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। इसी ख्वाहिश के साथ में अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। शो चला था आपका कॉलर ट्यून गोंडा, मैं थी आपकी होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ था 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। ये लास्ट डिमांड हमारे मनीष शर्मा जी की भटपुरवा से। मिलते हैं कल आपके इसी शो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षा

0: 9891823। मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। यस ऑफ कोर्स, शाम में 5 बजते ही आपको ख्याल आता है कि आज गोधूली में आखिर कौन गेस्ट आ रहे होंगे, किस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी जो ये जिज्ञासा है उसको हम शांत करते हैं और आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज उस विषय को लेकर के कौन आया है। जी हाँ, हम नारी शक्ति की बात हमेशा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम सामने से कोई एग्जाम्पल देखते हैं एक ऐसी यंग गर्ल का जो अपनी फैमिली से दूर हो करके भी बहुत कुछ कर रही हो और स्पेशली सोसाइटी को सर्व कर रही हो, समाज के लिए समाज का सेवा भाव लेकर के चल रही हो, तो सच में खुशी भी होती है और एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं वो सेट कर रही होती हैं। तो हमारी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा। दरअसल आज हमारे साथ में मौजूद हैं मिस सपना, जो कि SCTA डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त TB प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि दोस्तों हमने बताया है आपको कि आज हमारे साथ में मिस सपना मौजूद हैं, टीबी के प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रही हैं, इस पे आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। टीबी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसका कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का सपना है कि 2025 तक इस भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए। जिस तरह से पोलियो मुक्त किया गया उस तरह से टीबी मुक्त किया जाए, इसकी मुहिम भी बहुत तेजी से चलाई जा रही है। इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम अपने गेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मिस सपना के बारे में हम जानेंगे कि भाई वो कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से वो आई हैं और इस काम को करते हुए उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा सपना जी, कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, अपनी फैमिली के बारे में, पिताजी क्या करते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है।
2: मैं सपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा से टीबी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। मैं रहने वाली गोरखपुर की हूँ। मेरे परिवार में 6 लोग हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्टडी भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं।
1: ओके।
2: और मेरी जो स्टडी है वो प्रॉपर गोरखपुर से हुई है, जैसे कि प्राइमरी की शिक्षा मेरी राजकीय कॉलेज से हुई है और ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी से किया है गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय से। बाकी आगे का मेरा जो भी स्किल रहा है वो स्किल डेवलपमेंट में मैंने GDA किया, जिसके थ्रू मैं मेडिकल फील्ड में उतरी और मुझे जो ट्रेनिंग दी गई उसके अकॉर्डिंग मैं टीबी के बारे में जानी और उस पर काम करना शुरू किया।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। थोड़ा सा वापस से चलते हैं आपके गोरखपुर के साइड। आप हमारे गोरखपुर से हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है गोंडा और गोरखपुर की, है मेरे ख्याल से 150 से 160 किलोमीटर के आसपास है। जी, तो हम जानना चाहेंगे, तभी बहुत सारे चेंजेस हैं। असल में कहते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है और स्पेशली अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जगह जगह पे थोड़ा सा भाषा में चेंज आ जाता है, पहनावे ओढ़ावे में चेंज आ जाता है और अपनी भाषा शैली के अंदर भी अंतर आ जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बचपना कैसा रहा था। बच्चे शरारती होते हैं, शरारत करती थी आप, कैसी थी आप? ये बहुत सीधे बच्चे थे?
2: नहीं, मैं शरारत करती थी और अभी भी थोड़ी बहुत है, बट बचपन में बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, मतलब अभी भी बरकरार रखा?
2: अभी भी बरकरार रखा खुद को।
1: ये अच्छी बात है। दरअसल हम अपने शो के दौरान कहते भी हैं कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने न दे, जिंदा रखें, क्योंकि वही बच्चा आपको रियल लाइफ से रूबरू कराता है। बेशक। तो आप भी, आपने कहा कि बाकी बच्चों की तरह आप भी थोड़ा सा शरारती रही हैं।
2: जी।
1: पापा से कैसा आपका कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? मम्मी से कैसा आपकी कोऑर्डिनेशन है?
2: पापा से बहुत अच्छा रिलेशन है, मम्मी से फ्रेंडली है, मम्मी दोस्त की तरह है, हर जगह सपोर्टिव है। उन्हीं की वजह से मैं कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी हूँ मैं मम्मी पापा की वजह से हूँ, लेकिन ज्यादातर सपोर्ट मम्मी ने किया है कि फील्ड वर्क में जाओ और समाज सेवा भी करो।
1: बेशक, मैं खुद भी इस बात को कहीं ना कहीं कोट करने वाला था कि एक फीमेल होकर के आप फील्ड वर्क में हैं तो ये सच में काफी चैलेंजिंग होता है। हालांकि ये कोई अलग की

0: बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, थोड़ा सा चैलेंज जो है वो फीमेल्स के लिए जो फील्ड की जॉब्स है उनके लिए बढ़ जाता है। पढ़ाई में कैसी थी आप? एवरेज थी या टॉपर थी? किस तरह की परफॉर्मेंस?
1: एवरेज थी, बहुत ज्यादा टॉपर नहीं, बट एवरेज थी, सही थी जो भी था।
0: ओके, तो एवरेज पढ़ाई थी, मतलब जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, एक बात ये होती है कि बचपन से हमारा कोई ना कोई सपना होता है, कोई ख्वाहिश होती है, और कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के कहने पे अपने करियर को ऑप्ट करते हैं। जैसे पापा कहते हैं या कोई रिलेटिव बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, इसमें स्कोप ज्यादा है। एक होता है कि बच्चा खुद से डिसाइड करता है। आफ्टर ट्वेल्थ आपको मौका मिलता है कि आप किस स्ट्रीम से जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे कि आपके करियर में वो हेल्पफुल हो। तो आपके लिहाज से अभी तो आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये कोई सपना आपका खुद का था या ये घर वालों का सपना आप पूरा कर रहे हो?
1: नहीं, ये मेरा खुद का था।
0: अच्छा, आपका खुद का सपना?
1: खुद का था, मेडिकल फील्ड में आके काम करना। और जब मैं मेडिकल फील्ड में आई तो उसके बाद और भी मुझे जैसे अंदर से सेवा भाव जो जागृत होता है वो फील हुआ कि नहीं, मुझे करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके पूरा समर्पित ही कर दो मेडिकल फील्ड में।
0: ओके, वैसे लड़कियों के पास जो कहा जाता है कि भाई बहुत सेफ्टी वाली जॉब होती है, टीचिंग की होती है, एक बैंकिंग की होती है, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो हेल्थ सेक्टर में ही क्यों आ पाए?
1: हेल्थ सेक्टर में एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे पसंद आए कि मतलब इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रहे हैं और मैंने सपोर्ट किया कि हाँ, मेडिकल फील्ड में सपोर्ट की हूँ और वो मेरा सपोर्ट सक्सेस हुआ कि वो फिर खाली नहीं हुआ, तो मैंने मुझे खुशी मिली कि नहीं करना चाहिए, ताकि आगे भी दो चार लोगों में जब पता चले कि हाँ, मेडिकल फील्ड में सपोर्टिव लोग हैं जिनके वजह से मेरी जान भी बच सकती है, मैं स्वस्थ हो सकती हूँ, इस वजह से जागर।
0: मतलब आपको ऐसी फील्ड लगी कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ हम डायरेक्ट लोगों की
1: मदद कर सकते हैं,
0: इवन जान तक बचा लेते हैं अपने कार्य के जरिए।
1: जी,
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सपना जी, एक बात है कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो सारी कोशिशें सिर्फ हमारी नहीं होती
1: जी,
0: हमारे आसपास के लोगों का बड़ा रोल होता है, फिर वो चाहे रोकने में हो या सपोर्ट करने में। तो मैं रोकने की बात पे तो ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ, ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी बढ़त में किसने सबसे ज्यादा आपकी हेल्प?
1: मेरी मम्मी ने।
0: किस तरह से?
1: फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। मैं कहीं अगर मेंटली डगमगा रही हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, पीछे नहीं हटना है, आपको आगे ही रहना है।
0: अच्छा, तो मतलब एक तो ये कि भाई फाइनेंशियली लोगों को हेल्प चाहिए होती है कि आपको कोर्स करना है, बाहर जाना पड़ना है, उसमें पैसे लगते हैं। दूसरी बात है कि मेंटली एक मोरल सपोर्ट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो मैं हूँ आपके साथ, आप बेस्ट करो और अच्छा करोगे। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मम्मी से ज्यादा मिली।
1: मम्मी से।
0: फ्रेंड्स का कितना रोल रहा?
1: फ्रेंड्स का भी रोल रहा, वो लोग भी हैप्पी रहे कि आप इस फील्ड में निकले हो। मेरे काफी फ्रेंड लोग मेडिकल फील्ड में हैं, बट मैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब ज्वाइन हुई तो मेरे दोस्तों को खुशी मिली कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सपोर्ट भी किया कि आप वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करना।
0: मतलब ये कि फ्रेंड्स का भी साथ मिला आपको?
1: हाँ, साथ मिला है।
0: Exactly, भाई हेल्थ सेक्टर है ही ऐसा कि आप डायरेक्ट लोगों की हेल्प करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने बताया कि आपने DDU से ग्रेजुएशन किया, BSc किया, उस दौरान की जर्नी के बारे में बताया, कैसा रहा वहाँ पे आपकी पढ़ाई के दौरान वो जो फेज था, क्या सीखा आपने, कैसे आप चीजों को समझ पाए?
1: वहाँ भी ठीक था। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत हाई लेवल क्लास से नहीं हूँ, बट जो भी हूँ तो बस पढ़ाई पे ध्यान रहता था, कंसंट्रेशन रहता था। फैमिली कंबाइंड है तो चाचा का ज्यादा सपोर्ट रहा कि पढ़ो, बस सक्सेस रहो, तो वही लाइफ चली, बस पढ़ाई करो, बाकी एंजॉय करो, बहुत ज्यादा नहीं ऐसा कुछ रहा।
0: मतलब आपका मानना है कि इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए,
1: टेंशन नहीं लेना चाहिए,
0: काम बढ़िया आराम से करो और फुल टू एंजॉय करो। अच्छा, कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कई सारी राय आ जाती है, कोई कहता है कि ये नहीं ये करना है, और फिर अगर आप नहीं करते तो खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि यार स्पेस इतना ही मिल पाता कि अलग से स्टडी किया जाए या अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ इस तरह के चैलेंजेस रहे क्या लाइफ में?
1: नहीं, ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं रहे हैं। मैंने अगर बताया कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो सपोर्ट मम्मी का रहा, साथ में पापा और चाचा का भी रहा। सब लोग हैप्पी थे कि हाँ, और अभी भी वो लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारी बिटिया जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीबी क्लिनिक पे काम कर रही है, तो उन्हें प्राउड फील होता है।
0: आप चूंकि एक फीमेल हैं, तो आपके यहाँ से कितनी फीमेल्स ने इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए, घर से बाहर निकली हो, जॉब की हो, या पहली है?
1: मेरी फैमिली से।
0: आपकी फैमिली?
1: मैं अकेली हूँ।
0: आप अकेले हैं। अच्छा, आप बहनों में कितनी बहनें हैं, अगर हम ज्वाइंट फैमिली में ऑल ओवर बात करें, आपकी बहन और चाचा की बेटियां?
1: मेरे खुद के 3 भाई हैं, चाचा के 2 बेटे हैं, मैं अकेली हूँ, 5 लोगों में अकेली लड़की।
0: अच्छा, मतलब आप खुद ही अकेली है ही हैं। यही तो वजह नहीं कि सभी ने आपको सपोर्ट किया, अकेले होने की वजह से इतना माना सबने?
1: हाँ,
0: ये भी हो सकता है, फैक्टर हो सकता है।
1: ये भी है कि अकेली है, कुछ करना चाहती है तो सपोर्ट है।
0: बेशक। एंड यस ऑफ कोर्स, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब आपने ये कहीं ना कहीं बताया कि आप जॉब करने निकल रहे हो, तो बाकी लोगों का क्या रवैया था सुनने के बाद कि आप जॉब करने जा रहे हो?
1: बाकी का अच्छा ही रिस्पांस था, सबने बोला। मैंने डिटेल बताया, मैं दिल्ली में इस कंपनी से हूँ, एजेंसी से, और मेरे वर्क के बारे में बताया, तो सबने हाँ बोल दिया, मम्मी ने भी, और बाकी तैयारियां भाई लोगों ने सपोर्ट किया। भाई हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी हैं, लेकिन सब लोग सपोर्टिव हैं, सबने अच्छे से मतलब सपोर्ट किया है। और जॉब करने में चाहे वो फील्ड वर्क हो या फिर ऑफिस का हो, कभी रोका नहीं गया, सबने बहुत सपोर्ट किया।
0: सबने अपना अपना रोल
1: बहुत अच्छे से निभाया है।
0: भाई ने भाई का फर्ज निभाया, पिताजी ने पिताजी का, माताजी ने माताजी का, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं आपके करियर पे। चूंकि आपने बताया था, एक आपने टर्म इस्तेमाल किया था GDA, ये GDA कौन सा आपने कोर्स किया था मेडिकल सेक्टर में आने का, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: ये GDA एक स्किल डेवलपमेंट का होता है, सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है स्किल डेवलपमेंट का। तो ये जो है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, जिसमें पेशेंट केयरिंग के बारे में बताई जाती है। मैक्सिमम ये 6 से 8 महीने का होता है कोर्स, जिसमें इंटर्नशिप दी जाती है और आपको 2-3 महीने की मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है हॉस्पिटल में। आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे जब जाओगे तो आपको वहाँ सारी चीजें नर्स वाली ही सिखाई जाएंगी। टोटल आपकी जनरल वार्ड में भी ड्यूटी लगेगी, प्राइवेट वार्ड में भी लगेगी, इमरजेंसी में भी। जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे आपको शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉपर आपको नर्स का ही सारा काम करना होता है। ट्रेनिंग देने के बाद आप वहाँ से जब निकल रहे हो तो आप अपना खुद इतना इम्प्रूव कर चुके होते हो कि आप जॉब खोज सको। फिर आप जहाँ भी हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहो वहाँ आप अपना इंटरव्यू दो, अपना एक्सपीरियंस दो, फिर वहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैं जो है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का ही कोर्स करके मैं निकली मेडिकल फील्ड में। और मैंने मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, मैं ये जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, ये गोरखनाथ मंदिर के पास में होता है, 10 नंबर बोरिंग के पास इसका सेंटर खुला हुआ है, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग वहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद मुझे भेजा गया राणा हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर है, ट्रामा सेंटर, डॉक्टर सोना घोष जी का है, जो IVF स्पेशलिस्ट है।
0: दिल्ली में?
1: नहीं, गोरखपुर में।
0: ओके।
1: गोरखपुर में
0: इंटर्नशिप के लिए?
1: हाँ।
0: ओके।
1: डॉक्टर राणा जी के वहाँ पे हुई, जहाँ से मैं वहाँ से काफी टाइम तक मैंने वहाँ पे स्टाफ नर्स का जॉब किया। ट्रेनिंग के बाद भी मैंने जॉब किया, उसके बाद मैं दिल्ली का आया वैकेंसी, वहाँ से इंटरव्यू लिया गया ऑनलाइन, उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई।
0: ओके। थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में जानना विस्तार से बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कितने टाइम का कोर्स था, कितना फीस है, स्कोप और क्या क्या हो सकते हैं, इस बात को भी हम जानेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी और भी लड़कियां हैं जो इस वक्त इस शो को सुन रही हैं, और साथ ही साथ हो सकता है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई ये कोर्स सस्ता है या महंगा है, इसको कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितना स्कोप है इसको करने के बाद। ये बहुत अहम जानकारी हो सकता हो किसी की जिंदगी में, जस्ट कि ये छोटा सा कोर्स करने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को करेंगे ऑफ कोर्स इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे फिलहाल एक गाना सुनाने का। इस गाने को एंजॉय करिए। वापस से मिलते हैं, आते हैं, मिस सपना से बात करते हैं इसी शो में जिसका नाम है गोधुली। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आज इस गोधुली प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मिस सपना, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा से ही है, SCTA के पद पर कार्यरत है। जाने से पहले अभी हमने ब्रेक पे बात किया था GDA कोर्स के बारे में, यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, मुझे लगता है कि उन लिसनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास बहुत भारी भरकम बजट नहीं है कोई प्राइवेट कोर्स करने का। तो गवर्नमेंट का ये कौन सा कोर्स है, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस लगती है और क्या क्या सिखाया जाता है इसके बारे में?
1: GDA का जो कोर्स है वो मैक्सिमम 6 से 8 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है मेडिकल का, जिसमें आप हॉस्पिटल में जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है जो भी नर्स का काम होता है वो आपको सिखाए जाएंगे। फर्स्ट एड करना, ड्रिप चलाना, वीगो लगाने का काम, जो भी पेशेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं वो आपको कराया जाएगा। और बाकी चीज़ें जो मेंटेनेंस होती हैं, रजिस्टर मेंटेन करना, अपने सीनियर के अंडर में रह के सीखने की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उस 3 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड में। और आपको वहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हो।
0: ओके, तो जैसा कि नाम ही है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, उस तरह से जनरल चीजें, बेसिक्स बताई जाती हैं जो पेशेंट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको क्योर करने के बारे में।
1: जी।
0: एंड इसके अलावा हम जानना चाहेंगे इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने मंथ का कोर्स है ये?
1: ये 8 मंथ का है, जैसा कि मैंने बताया 8 मंथ का है, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और स्टडी का भी होगा।
0: अच्छा, मतलब आपको थ्योरी भी दी जाएगी और प्रैक्टिकल
1: भी
0: 8 महीने में होगा।
1: 8 महीने।
0: ओके, फीस कितनी लगती है या कितना खर्चा आता है इस कोर्स को करने में?
1: मैक्सिमम स्टार्टिंग 2 से 3 हजार के आसपास है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये जो फाइनेंशियली दिक्कत है लड़कियों का कि हम GNM नहीं कर पा रहे हैं, ANM नहीं कर पा रहे हैं, चाहे BSc नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बच्चियां नहीं कर पाती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन करें और वहां से अपने फ्यूचर का तैयारी करें। वहां से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बेस्ट मिलेगा, जो आप आगे करना चाहती हैं उस पे आप कर सकती हैं।
0: ओके, तो बताया लगभग 8 महीने का कोर्स है जिसमें थ्योरी भी होती है और 3 महीने का प्रैक्टिकल भी होता है। 2 से 2500-3000 मैक्सिमम आपका रुपए लगता है, मतलब नथिंग मांग के चलते हैं, क्योंकि अगर मैं ANM GNM की बात करूं तो वो कुछ लाख में कोर्सेज जाते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, और मुझे नहीं लगता नहीं कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर पाएगा। क्योंकि जो भी जनरल क्लास फैमिली से आता है उसके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, घर को चलाना होता है, तो इस कोर्स में इतना इन्वेस्टमेंट हर कोई तो नहीं कर पाता है। तो इट मींस कि ये है कि ये जो आप कोर्स बता रहे हैं ये कोई भी क्या कर सकता है?
1: हाँ, कोई भी कर सकता है,
0: कोई भी कर सकता है,
1: चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए अवेलेबल है ये कोर्स।
0: अच्छा, तो मतलब ये मान के चले कि ये
1: फ्री ऑफ कॉस्ट है।
0: ये स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का है, कौशल विकास
1: उसके थ्रू है। जैसे कौशल विकास की तरफ से आते हैं कंप्यूटर्स कोर्स भी, वैसे मेडिकल फील्ड्स में भी आते हैं, तो ये मेडिकल फील्ड्स के लिए है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट।
0: ओके, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और श्रोताओं अगर आप सुन रहे हैं इस बात को तो ऑफ कोर्स इसको नोट कर लें कि अगर आप में से कोई करना चाहता हो, हेल्थ सेक्टर में आना चाहता हो एक अच्छे कोर्स के साथ, तो गवर्नमेंट का जो ये GDA है, स्किल डेवलपमेंट के तहत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये एक अच्छा कोर्स हो सकता है। 8 महीने आपको देने होंगे और 3,000 से 4,000 के आसपास जो भी आपकी प्रैक्टिकल में खर्चे आते होंगे बस वो आपको पे करना है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा स्कोप होता है इंटर्नशिप करके किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का, क्लिनिक पे काम करने का, वो आपके स्कोप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बात हो गई GDA कोर्स के बारे में, अब आते हैं आपकी पहली जॉब पे। सो पहली जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: पहली जॉब का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा, मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा था। मैं फर्स्ट जॉब मैंने दिल्ली में किया, न्यू अशोक नगर में, जहाँ पे महाराष्ट्र की एक एजेंसी है पेस हेल्थ केयर, जिसमें मैंने इंटरव्यू के थ्रू हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू। मैंने दिल्ली में जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरा वर्क था अटेंडेंट प्रोवाइडर। जैसे कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में, एडल्ट पेशेंट या ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनकी केयरिंग फैमिली मेंबर में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज को अवेलेबल कराने के लिए ये एजेंसी पेशेंट हेल्थ केयर के तरफ से एक अटेंडेंट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि किसी लड़की, फीमेल पेशेंट के लिए लड़की को भेजा जाता है जिसकी ड्यूटी 12 से 24 घंटे की होती है। अगर एजेंट जो है, क्लाइंट हमारा 12 घंटे का रखना चाहता है तो वो 12 घंटे के लिए भी देती है एजेंसी उनको, और अटेंडेंट देती है। और अगर उन्हें 24 घंटे ओल्ड एज के जो पेशेंट है जिनको आवश्यकता है कि हमारे पास 24 घंटे कोई रहे, हमारा केयरिंग करे, ख्याल रखे, मुझे टाइमली मेडिसिन दे, वो पेशेंट के लिए 12 घंटे के प्रोवाइड कराया जाता है। तो उस पे मैं अटेंडेंट प्रोवाइडर थी, जिसपे मैंने लड़कियों को सिखाना होता है कि आप उनके प्रिकॉशन के हिसाब से, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप उनके मेडिसिन कब दोगे, आप उनकी केयरिंग कैसे करोगे, एक पेशेंट को कैसा महसूस कराना, उसके साथ क्या रिलेशन आपको अच्छा रखना है। जैसे कुछ ओल्ड एज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, 80+ होते हैं, 85+ एज के जो पेशेंट होते हैं, उनके साथ हमें बहुत विनम्र होकर रहना होता है, जिससे कि उन्हें चिड़चिड़ापन ना हो, मेडिसिन लेने में वो आनाकानी ना करे। तो उनके लिए होम केयरिंग के लिए पेशेंट के पास भेजा जाता है, वो उस पे मैं वर्क कर रही थी।
0: ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं जो अटेंडेंट है वो आप प्रोवाइड करा देते, और उसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको 12 घंटे या 24 आवर्स 24 घंटे के लिए चाहिए होता था कि उनका कोई ख्याल रख सके, तो उस तरह के आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। अच्छा, इसमें तो आप कहीं ना कहीं एक जो ट्रेनिंग वाला पार्ट आपने कहा, ये तो आपका काम आ रहा था कि आप ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह से पेशेंट्स का ख्याल रखना है, और ये चीज आपने इसी कोर्स में सीखा था।
1: इसी कोर्स में सीखा था। जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं जो बेड रेस्ट पे होते हैं, जैसे कि 85+ हुए, 80+ हुए, उन पेशेंट को बाथरूम तक नहीं ले जा सकते, तो जो एडल्ट डायपर आते हैं वो बांधना सिखाना। जैसे किसी क्लाइंट के पास हम भेज रहे हैं अपना अटेंडेंट, तो उसे सिखाते हैं कि जो मेडिसिन आप दे रहे हो ये देना है, कैसे देना है वो सीख लो, उसके बाद डायपर बांधना, उस चीज को कैसे चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग का वर्क होता था सिखाना अटेंडेंट प्रोवाइडर में।
0: ओके, तो ये तो अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपने कहा कि दिल्ली का। कुछ चैलेंजेस आए थे क्या, गोरखपुर से सीधे दिल्ली का सफर, काफी कुछ चीजें चेंज भी हुई होंगी, कैसा था?
1: चेंजेस थे वहाँ पे। पहली बात तो अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने टाउन को छोड़ के जाने पे, अदर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम शिफ्ट हो रहे हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कतें आती हैं, मुझे भी आई, थोड़े से हौसले थोड़े डगमगाए, बट मम्मी, मैंने शुरुआत में बताया कि जो भी सपोर्ट रहा मम्मी का रहा, उन्होंने वहाँ भी हमें सपोर्ट किया कि नहीं आप रहो, परेशान ना हो, और मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, बाकी अच्छा चला। वहाँ भी 3 साल की जॉब रही हमारी, फिर
0: 3 साल दिया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने वहाँ से गेन किया। उसके बाद सेकंड जॉब फिर कहाँ ज्वाइन किया?
1: सेकंड जॉब हमने ज्वाइन किया, डॉक्टर VN अग्रवाल हैं हमारे गोरखपुर के, जिनका हॉस्पिटल चलता है नारायणी हॉस्पिटल के नाम से, गोरखपुर में मोहद्दीपुर में डॉक्टर VN अग्रवाल जी हैं, नारायणी हॉस्पिटल के चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। उनके वहाँ मैंने जॉब किया। जॉब के साथ में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। वहीं से हमें टीबी के बारे में भी पता चला, क्योंकि वो चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, मेडिसिन लिखते थे, पेशेंट को देखते थे, तो उनकी ओपीडी से मुझे पता चला कि हाँ टीबी पे भी वर्क हो रहा है और टीबी कितनी भयानक बीमारी है उसके बारे में, पेशेंट के लिए कितना दिक्कत है, वो सारी चीजें वहां से पता चली।
0: ओके, तो आप चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास में आपने अच्छा खासा टाइम दिया
1: मैंने,
0: और वहीं से आपको ये कहीं ना कहीं पता चला कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है, कैसे होता है और इसकी अवेयरनेस को लेकर के हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी जॉब आपकी इसके बाद फिर कहाँ थी?
1: तीसरी जॉब हमारी ये प्रोजेक्ट है HLF PPT, हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, जिसमें मैं ज्वाइन हुई 2022 में। 2022 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया। इंटरव्यू बेसिस पे सारी चीज़ें थी, मेडिकल फील्ड से जुड़े रहने की वजह से और भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और अभी भी परफॉर्मेंस स्टेट लेवल पे अच्छे चल रहे हैं हमारे। पूरा प्रयास है कि हम टारगेट को अपने अचीव कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है।
0: ओके, तो एक सवाल जहन में उठ रहा है कि आप अपने घर पे थी, अपने टाउन में थी, अच्छा खासा काम कर रही थी, आपको ये पता चला कि भाई एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टीबी पे काम कर रही, जिसका भी आपने नाम भी लिया HLF PPT। सो ये HLF PPT के तहत आपको अपना टाउन छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्या वजह थी उस जॉब में से इस जॉब में आने की?
1: वजह यही थी कि जैसे कुछ नया सीखने की,
0: नयापन।
1: हाँ, स्टाफ नर्स का काम तो हमने करा ही, साथ में ये हुआ कि टीबी पे अगर काम हो रहा है तो उसमें भी सीखना चाहिए कि क्या है कैसे। तो ज्यादातर मेरी इच्छा होती है कि जो नई चीजें हैं, नई चीजों के बारे में जानकारी होने पे मैं नई चीजों को सीखना चाहती हूँ, और इसमें भी काफी चीजें अच्छी हैं जो मुझे नॉलेज नहीं थी और वो नॉलेज मुझे यहाँ से मिला टीबी के बारे में।
0: यानी आपकी पर्सनालिटी ऐसे है कि आप थोड़ा नएपन को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लगता है कि जो चीजें आपने सीख ली है उससे कुछ इतर भी सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंड यस, ऑफकोर्स अगर ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स नेशनल लेवल पे काम कर रही है तो आपको एक्सपोजर भी उसी तरह मिलते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर बार आप सिर्फ खुद से करके नहीं सीखते हैं बल्कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहां से बहुत सीखते हैं। एंड अब चूंकि आपने नाम ले लिया है HLF PPT का, सो हम ये जानना चाहेंगे HLF PPT ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, कहाँ पे, कैसे, क्या, और गोंडा में इसका क्या काम हो रहा है?
1: इसका मेन ब्रांच तो नोएडा में है और ये काम पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 22 से एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बता सकती, बट पूरे स्टेट में चल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में। और अभी मैं ज्वाइन हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। बाकी अदर भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, ये सारी डिस्ट्रिक्टों में भी ये काम चल रहे हैं। तो मैं यहाँ गोंडा से ज्वाइन कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट पे काम, और हमारा मेन टारगेट है कि पेशेंट जो टीबी के हमारे हैं उन तक हम पहुंच सकें, हमारा अचीवमेंट हो कि वो स्वस्थ हो सकें, टीबी ग्रसित ना रहे भारत।
0: तो आपको गोंडा आए हुए कितना समय हो गया?
1: मुझे गोंडा आए हुए 2 साल हो गए, मैं 2 साल से यहाँ वर्क कर रही हूँ टीबी पे।
0: 2 साल में गोंडा ने आपको कितना एक्सेप्ट किया?
1: बहुत ज्यादा।
0: ओके,
1: गोंडा से बहुत प्यार मिला मुझे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी, बाकी यहाँ के लोगों से भी बहुत प्यार मिला, अच्छा लगा।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा अच्छा लगा और लोगों से बहुत प्यार मिला। आपने गोंडा को कितना एक्सेप्ट किया?
1: गोंडा को एक्सेप्ट किया मैंने ज्यादा, और अभी भी कर भी रही हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं कर सकूँ अच्छा परफॉर्मेंस गोंडा में।
0: तो मतलब आप कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगी है कि हाँ आप जितना अच्छा अपना बेस्ट दे पाए उतना आप बेस्ट दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि आपने बोला है कि आप टीबी पे काम कर रहे हैं और संस्था का नाम भी बताया, इसमें आप एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी उस पोस्ट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ ड्यूटीज होंगी, आपने पोस्ट बताया भी था SCTA
1: जी।
0: तो SCTA के बारे में भी हम जानकारी हासिल करने वाले हैं कि आखिर SCTA है क्या, इस पोस्ट पे क्या क्या काम करना होता है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के उस पार वापस आते हैं और बातचीत जारी रखते हैं अपने इस शो की जिसका नाम है गोधुली। सुनते रहिए गोंडा वाला FM 89.6 FM, चूंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
10: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। शो चल रहा है गोधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और हमारे साथ में आज हमसे चर्चा में मौजूद हैं मिस सपना, जो कि SCTA है, सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। तो अभी जाने से पहले हमने बातचीत की थी कि आप आने के बाद SCTA के बारे में बताएं कि आपके जॉब का जो रोल है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
11: हमारा जो ड्यूटी है, प्राइवेट डॉक्टरों से मिलना, उनके पास से पेशेंट का डेटा कलेक्ट करना। जो भी पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए प्राइवेट में, उनका डेटा कलेक्ट करना, उनका सैंपल कलेक्शन करना, सैंपल कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जांच कराना, टीबी क्लिनिक से। जांच कराने के बाद उनका पॉजिटिव आने पे ट्रीटमेंट चालू करना, उन्हें बताना कि आपको क्या दिक्कतें हैं, कितना मंथ का दवा चलेगा और क्या प्रिकॉशन रखना है आपको, ये सारी चीजें हैं।
10: ओके, यानी आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो HLF PPT बताए, एक थर्ड पार्टी है और कहीं ना कहीं ये टीबी कंट्रोल करने को लेकर के काम कर रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सपना है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत
11: कर दें।
10: ऑलराइट, एंड अभी जस्ट आपने बताया कि कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी जो लोग आते हैं उनके सैंपल्स को कलेक्ट करना, पॉजिटिव आने पे ट्रीटमेंट करना। हम जानना ये चाहेंगे कि टीबी के बारे में पहले हमको आप बताएं कि आखिर टीबी क्या है और कितनी गंभीर बीमारी है।
11: टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स को डिजीज करता है, हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी जाता है। जैसे कि अगर हमें गिल्टी है बॉडी में कहीं, तो पस बन रहे हैं, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। हमारे लंग्स में होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ये माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे पार्ट को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज कर देते हैं। ये बैक्टीरियल बीमारी है जिससे हमारे फेफड़े में कंटिन्यू बैक्टीरिया फैलते रहते हैं। कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा वजन में गिरावट है, रात में सोने पे पसीने आ रहे हैं। ये सारे जो है टीबी के लक्षण हैं, जिसमें आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं। अगर आपको ऐसा फील है तो तुरंत तत्काल में डॉक्टर को दिखाएं, इसको अवॉइड ना करें, जिससे कि समय रहते इलाज चालू किया जा सके।
10: क्या ये एक बहुत गंभीर बीमारी है?
11: जी बिल्कुल।
10: ओके, तो आपने कहा कि टीबी जो है वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी और कहीं ना कहीं फैलती भी बहुत तेजी से है। अभी तक जो हम और बाकी जनरल लोग जानते हैं कि टीबी बहुत ज्यादा जब खांसी आती है तो ही उसका एक लक्षण माना जाता है। लक्षणों के बारे में थोड़ा सा आप और बता दें कि किन किन तरह की अगर चीजें आपके अंदर लक्षण आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए।
11: टीबी का लक्षण, मेन लक्षण यही है कि जैसे कि खांसी आ रही है, साथ में बलगम भी बन रहे हैं। दूसरा लक्षण है फीवर है, आपको कंटिन्यू 25 से 30 दिन फीवर रह गए, थकान हो रही है और आपके वजन में गिरावट आ रही है। वजन का भी गिरना, फीवर आना और साथ में खांसी आने पे बलगम आना, कंटिन्यू ये 25 से 30 दिन का जो लक्षण आएगा, इसमें आपको टीबी की इन्फेक्शन हो सकती है। कभी कभी होता है पेशेंट को जानकारी ना होने की वजह से कंटिन्यू खांसने से ब्लड भी आते हैं, जो कि बैक्टीरिया फेफड़े को इतना ज्यादा इफेक्ट कर चुका है जिसकी वजह से ब्लड आते हैं। तो आप तत्काल इसका जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें, जहां तक हो डॉक्टर के संपर्क में रह के इसका जांच करा के दवा चालू करें।
10: मतलब आपने कहा कि अगर इस तरह की कोई लक्षण है तो आपको खुद से जा करके डॉक्टर से मिलना होगा, जांच करानी होगी और अगर इसका आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट चलवाना होगा। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा था कि आप प्राइवेट में भी जाते हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका पॉजिटिव अगर आती है रिपोर्ट तो उसको लेकर के ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जांच कहां होती है, कैसे होती है और कितने दिन का कोर्स चलता है।
11: जिस पेशेंट को ये सारी लक्षणे आती हैं, डॉक्टर हमें इनका डेटा देते हैं, हम पेशेंट से मिलते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर उन्हें पल्मोनरी जैसे कि फेफड़े में इन्फेक्शन है तो उनका स्पूटम जाएगा सैंपल के लिए। एक डिब्बी दी जाती है जो कि हमें जिला अस्पताल से प्रोवाइड कराया जाता है। पेशेंट को एक डिब्बी दी जाती है जिसका नाम है फाल्कन ट्यूब। उस ट्यूब में 3 to 5 ml, 3 to 5 ml के बीच में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं स्पूटम का। उस सैंपल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाते हैं टीबी क्लिनिक में, वहाँ पे जांचें लगती हैं। उस स्पूटम को जांच के बाद जो टेस्ट आते हैं, रिपोर्ट आती हैं, उसके थ्रू डॉक्टर को फॉर्म करके उसके बाद पेशेंट को बुला के उसका दवा चालू किया जाता है। अगर पेशेंट पॉजिटिव आ गए तो उन्हें तत्काल में बुला के दवा चालू कराई जाती है जिसके थ्रू उसका दवा चालू हो सके।
10: अच्छा, क्या टीबी में भी कुछ स्टेजेस होती हैं कि अर्ली स्टेज है, एक होता है कि एक लास्ट स्टेज है?
11: होती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल स्टेज है, जैसे डिटेक्टेड आ गया, पॉजिटिव आ गए तो नॉर्मल है। अगर वही सेकंड जांच भी लगती है, फर्स्ट जांच लगती है ट्रूनाट में, उसके बाद जो जांच आई पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव के बाद एक रिफैम्पसिन जांच लगती है। रिफैम्पसिन में पता करना होता है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी टीबी है। तो उसमें अगर मीडियम में है, हाई, मीडियम, लो, इतने 3 स्टेज होते हैं। अगर हाई है, हाई के बाद भी अगर उसमें लास्ट स्टेज होता है MDR, मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट जिसे बोला जाता है, इस कैटेगरी में जाने के बाद पेशेंट को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पेशेंट एक्टिव है, हमारे संपर्क में है, हम फॉलोअप उसका लेते रहते हैं कंटिन्यू, हर 2 मंथ पे उसको बुलाते हैं, जांच कराते हैं, तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। और काफी पेशेंट ऐसे हैं जो MDR होते हुए भी ठीक हो चुके हैं, बाकी प्रिकॉशन पे उनको ध्यान रखने को कहा जाता है।
10: Okay, ना, आपने कहा कि कई स्टेजेस इस बीमारी में भी होती है जैसे कई बीमारियों में होती है, और आपने जो एक डेंजरस स्टेज का नाम लिया वो MDR बताया है
11: जी।
10: कि अगर MDR हो जाता है थोड़ा सा ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं फिर वो आपके हाथ से केस जा रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो उससे पूरी तरह से क्योर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि MDR होने तक का वेट तो नहीं करना चाहिए,
11: बिल्कुल भी नहीं करना। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है, आप कंटिन्यू 6 मंथ का दवा चलाइए, 6 मंथ में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारा प्रयास जो है वो भी सक्सेस होगा, सफल होंगे हम आपको ट्रीट करने में। तो अच्छा फील होता है कि मरीज ने हमारे हिसाब से दवा खाया, 6 महीने कंटिन्यू दवा चलाया।
10: बेशक बेशक, सही बात है। और इसी के चलते अब हम अगली बात पे आते हैं, क्योंकि आपने इसकी बात की है कि भाई ये टेस्टिंग होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये टेस्टिंग, मान लीजिए अगर किसी को कोई शक है या वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता है, पहली चीज तो थोड़ा सा इंसान को लगता है कि यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, पता नहीं कितनी भीड़ होगी, डॉक्टर प्रॉपर टाइम देंगे नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई कराना चाहता है तो कौन से कमरे में कहां पे जांच होती है, कहां इसका डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसके बारे में बताएं।
11: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में एक टीबी क्लिनिक डिपार्टमेंट है, जहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप वहां की कमरा नंबर 1 में जाएंगे, वहां पे आप पर्चा बनवाएंगे, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी इस समय अवेलेबल आपको मिलेंगे जो टीबी के पेशेंटों के देखते हैं। उनकी ओपीडी लेने के बाद उनको अपनी समस्या बताएं, उनके अकॉर्डिंग जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इनका चेस्ट एक्सरे कराना है, स्पूटम आ रहे हैं तो स्पूटम भी जांच करानी है, वो डॉक्टर आपको कराएंगे। और 4 नंबर और 2 नंबर में आपका स्पूटम जांच चलेगा, वहाँ चलती है, वो आपको कराना होगा। और एक्सरे कराना होगा तो 3 नंबर कमरे में आपको एक्सरे कर दिया जाएगा।
10: ओके, तो ये आपने बता दिया है कि भाई एक बाकायदा टीवी का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसे आप टीबी क्लिनिक बोल रहे हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीछे की साइड है।
11: पीछे के साइड है।
10: ओके, तो यानी पर्चा कटाना है, सीधे वहीं जाना है और वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आपने ड्यूरेशन की बात कही, 9 महीने लगभग इसकी दवा चलती है।
11: जो टीबी के पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो 6 से 9 महीने चलता है। अगर इन्फेक्टेड ज्यादा है तो उनका 9 महीने कंटिन्यू चलेगा। नॉर्मल टीबी है तो आपका 6 मंथ का मेडिसिन चलेगा, जिसमें आप रिकवरी अच्छा कर लेंगे, प्रॉपर दवा खाएंगे, प्रॉपर ख्याल रखेंगे अपना, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।
10: ओके, आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको 2 साल हो गए हैं गोंडा में आए हुए। टीबी को लेकर के गोंडा में क्या स्टेटस है, मतलब गोंडा में किस तरह पेशेंट्स आपको ज्यादा बढ़ते मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, किस तरह से आपकी जो संस्था है वो काम कर रही है टीबी को खत्म करने के लिए?
11: हमारी जो संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। पूरा प्रयास है, पूरी टीम की हमारी सहयोग है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ठीक हो सके। वैसे गोंडा में टीबी के मरीज तो काफी हैं, मिल भी रहे हैं, और बस हम उन्हें जागरूक करना है कि घर में अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोई ऐसा सिम्पटम दिख रहे हैं, तो उन्हें तत्काल दिखाया जाए डॉक्टर को, जिससे हमारे तक पेशेंट पहुंच सके, जिससे हम उन्हें इनरोल करके उनका ट्रीटमेंट चालू कर सके और जहां तक हो सके हम उसे ठीक कर सके और जो भी सुविधाएं हैं उसे मुहैया करा सके।
10: ओके,
11: उपलब्ध कराएं।
10: सुविधाओं की बात आपने कही, सुविधाओं में चूंकि एक बहुत खास बात है कि पोषण की कमी से भी टीबी जो है वो हो जाता है, वो देखा जाता है, इसको लेकर के भी क्या कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कोई सहायता दी जाती है, अगर है तो क्या है?
11: गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पेशेंट को एक निश्चय पोर्टल का जो ऐप है उस पे उन्हें इनरोल किया जाता है। पेशेंट को इनरोल करने के बाद उसके सारी जांचें होती हैं, उसके डेटा को फीड किया जाता है, फैमिली मेंबर कितने हैं इस पे बात की जाती है, पूरी काउंसलिंग के बाद मरीज को उस पे एंट्री की जाती है, उसके बाद जो मरीज है बैंक पासबुक आधार कार्ड उसका अगर बना है तो लिया जाता है, नहीं बना है तो उसको बताया जाता है कि आप ऑनलाइन खाता खुलवाएं, जिससे कि जो सरकारी स्टेट से हमें पोषण आहार का सुविधा आपको दिलानी है वो हम दिला सके आसानी से। तो पेशेंट का बैंक पासबुक चाहिए होता है और आधार कार्ड, जिसके थ्रू पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्ट सरकार की तरफ से 500 रुपया पर मंथ का जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक इंटरव्यू में योगी जी ने भी बताया था कि टीबी मुक्त हमारा भारत होना चाहिए 2025 तक। उन्होंने अपने एक सभा में बोला था कि जैसे कि पोषण आहार के लिए भी पैसा दिया जाएगा, मरीज को स्वस्थ रखने के लिए जहां तक हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्हीं की मुहिम के तहत हम लोग चल रहे हैं। जो 6 मंथ का दवा होता है उसमें हम पर मंथ 500 रुपए का पोषण आहार का जाता है। पहले पोषण आहार बन के आता था कि क्या खाने की चीजें हैं, खाने की चीजों से रिलेटेड दी जाती थी और अब जो है डायरेक्ट पेशेंट के खाते में पैसे दिए जाते हैं, तो मरीज के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है पोषण आहार के लिए।
10: ओके, तो आपने कहा डायरेक्ट जो है वो अकाउंट में जाता है जो भी पेशेंट्स हैं। आपकी टीम में इस वक्त पूरे गोंडा में कितने लोग हैं और क्या क्या उनका रोल है?
11: हमारे एचएलएफ पीपीटी की टीम में 6 लोग हैं, 6 लोग पूरे काम कर रहे हैं। 6 लोगों में अकेली महिलाओं में मैं हूँ, अकेली महिला काम कर रही हूँ। साथ में हमारे 5 लोग और हैं जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे हैं और SCTA के पोस्ट पे हैं। हम 6 लोग मिलके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है टीवी पे।
10: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है एंड ऑफ कोर्स हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में।
11: धन्यवाद।
10: बिल्कुल, SCTA आप हैं, आपने अपनी पोजीशन बताई है, तो ये आपके अंडर में कितने एरियाज अभी आ रहे हैं?
11: मेरे अंडर में 3 TU दिए गए हैं। 3 TU में नवाबगंज है, जो मैं नवाबगंज विजिट करती हूँ, वहाँ के भी पेशेंट को कलेक्ट करती हूँ। दूसरा है मनकापुर, जहाँ डॉक्टर राम अजोरी जी इस समय काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट गोंडा, जो मैं इस समय देख रही हूँ, और यहाँ भी डॉक्टर AK उपाध्याय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीबी पे। समीर गुप्ता जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। मतलब हाँ, पूरे सपोर्टिव डॉक्टर हैं, जहाँ तक हो सकता हम भारत हमारा तो जीत ही जाएगा टीवी पे, हमें जहाँ तक फील हुआ है दो साल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और डॉक्टर राजश्री हैं नवाबगंज हॉस्पिटल की
10: जी,
11: गोनार्ध हॉस्पिटल की डॉक्टर राजश्री मैडम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहाँ से भी हमें कलेक्शन अच्छे मिलते हैं पेशेंट के।
10: वाह, क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। कहीं ना कहीं आप फील्ड में चल रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि हाँ जो भी होगा बेहतर होगा। अब चूंकि चलने का वक्त बहुत करीब आ गया, बस थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि लोगों को मिथ क्या होता है, मिसकंसेप्शन जिसे हम बोलते हैं, गलत फहमियाँ, तो टीबी को लेकर के आप ज्यादातर लोगों से क्या देखती हैं कि उनके मन में क्या गलत फहमियाँ हैं?
11: पेशेंटों में देखने को मिलता है कि टीबी ऐसा कुछ है नहीं, जिन्हें नहीं मालूम है गाँव से आए हुए मरीज को कि क्या है टीबी, तो उन्हें बताया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि आप अपने इन्फेक्टेड हो, परिवार में किसी और को इन्फेक्टेड मत करो, आप प्रिकॉशन में रहो, जागरूक रहो, समय से दवा खाओ, अपना ख्याल रखो और बाकी फैमिली से बच के रहो और उन्हें भी बचा के रखो जिससे बढ़ने ना पाए। तो प्रॉपर टीबी के मरीजों को मास्क लगा के रखना चाहिए, कहीं भी खांसी आने पे थूकना नहीं चाहिए जिससे कि अदर किसी को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हवाओं में वो धूल करके थ्रू जाते हैं बैक्टीरिया जो स्वस्थ व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकता है।
10: ओके, तो मतलब मोटा मोटा अगर हम जाने तो लोग मतलब बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि ये काफी गंभीर बीमारी है। चलिए, ये बात तो बहुत सही आपने बताया कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरियस तो लेने की अभी जरूरत है हम सभी लोगों को। अब इसके अलावा हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो आपकी 2 साल में कुछ सीख रही होगी, इनसाइट लर्निंग रही होगी, तो क्या लगता है आपने अभी तक क्या जाना इस टीबी पे काम करते हुए, इसके प्रोजेक्ट पे?
11: इस प्रोजेक्ट पे काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमें पेशेंट को कैसे ठीक करना है, कैसे जागरूक करना है लोगों को। और मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ आज आई हूँ तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा कि FM रेडियो सहारे मैं अच्छा संदेश दे सकूं कि जो भी मुझे सुन रहा है वो लोग समझे कि हाँ टीबी का जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है डिजीज या लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत संपर्क करें जिससे कि हम उस पे काम कर सकें। और सपोर्ट, जब आपका सपोर्ट रहेगा तो हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
10: क्या बात है भाई, तो
11: क्योंकि मेरी अपील है यहाँ से, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ से
10: जी
11: अपील करने का कि आप लोग जागरूक रहे, जनता जागरूक रहे भारत की, तो टीवी को हराया जा सकता है।
10: क्या बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिस सपना का सपना है कि टीवी मुक्त हो जाए भारत।
11: बिल्कुल।
10: चलिए, ये तो बात अच्छी है कि आपने अपने नाम को ही अपना सपना बना डाला, ड्रीम है, और ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। ऑफकोर्स आप लोग दूर दूर से आकर के गोंडा में अगर हमारे लिए सर्व कर रहे हैं तो हम गोंडा वासियों का भी फर्ज बनता है कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करें, आपके साथ एक अच्छा बिहेव करें, और कहीं ना कहीं टीबी को हराने में हम अपनी जो भूमिका है उसको बड़ी ही सक्रियता के साथ आपके सामने रखें। ये बहुत अच्छी बात है। आपसे अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप गोरखपुर की हैं, गोंडा में आए 2 साल हुआ है, तो आपको बता दें कि ये गोंडा का पहला FM है, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। आपको क्या लगता है, जिस तरह के हम प्रोग्राम्स करते हैं, ये लोगों के लिए आने वाले समय में क्या भूमिका निभा रहा होगा, कितना फायदेमंद?
11: मेरे हिसाब से तो ये FM रेडियो ज्ञानस्थली बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा, और मेरी तरफ से पूरा शुभकामनाएं है कि आप लोग भूमिका निभाएं अपनी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मतलब सपोर्ट के लिए खड़ा करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सब लोग जागरूक रहें, सब लोग सपोर्टिव रहें, जिससे हम आगे काम कर सके अपने भारत देश में।
10: बेशक, यानी एक स्वस्थ समाज का आपने भी सपना देखा है।
11: सपना देखा है, और बाकी सबका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा हमारा।
10: बेशक, तो आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान भी आपसे अपील करते हैं कि प्लीज आज आप लोग HLF PPT की टीम को जरूर सपोर्ट करें, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो हमको इंश्योर करना ही होगा। तो आपको बता दें कि आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ आज की जो खास मेहमान हैं वो मिस सपना हैं, जो कि हमने बताया SCTA हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके हमारे इस स्टूडियो में आई और लोगों को जागरूक करने के लिए आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच।
11: थैंक यू सो मच।
10: सो दोस्तों, आप सुनते रहिए अपना गोंडा वाला FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। वापस से मुलाकात होगी इसी शो में एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों को लेकर के हाजिर होंगे आपके RJ अदनान। स्टे ट्यून।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

शुभ संध्या एंड यस, आप सभी का स्वागत है आपकी वाली शाम। वेरी वेरी गुड इवनिंग, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जो भी फील करे उसी से कनेक्ट हो जाएं। और आपकी आरजे बीना के साथ आप सुन रहे अपना पसंदीदा शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, आज कुछ खास अंदाज में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की शाम थोड़ी अलग है, क्योंकि आज ताल से ताल मिलाने के लिए हमारे दो टीम्स एक साथ रेडी होके आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को मैं जगाने के लिए अगर कुछ कहूँ तो वो आपको क्या कहते हैं ना कि चाय के साथ एंटरटेन तो करेगा ही, लेकिन मोटिवेट भी करेगा। तो चलिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, जिसको सुन के आपकी जो कहते हैं ना रू जीतने की पथ पे भाग चलेगी। तो फिलहाल जहाँ से जो भी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट है वो फटाफट से रेडी हो जाइए। और पिछली बार तो लड़कियों ने जीत के मज़ा दिला दिया था दोनों ही टीमों को, लेकिन इस बार मैं चाहूँगी हमारे लड़कों की टीम जीते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टेबिलिटी वो बनी रहे। फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम को प्रेरणा देने के लिए कहना चाहूँगी कि गौर फरमाइए, थोड़ा सा थोड़ी सीरियस वाली बात हो जाए। और सीरियस वाली बात में जब सीरियस वाली कविता होती है ना, तो आप लोग का मन भी कहता है कि हाँ यार अब तो जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है। और अगर मतलब ऐसे तो ये तो गेम वाली बात होती है, आप लोग अपनी अपनी बारी पे कॉल करते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ एक दिन कि दोनों के टीम मेंबर को आमने सामने कर दूँ तो क्या होगा? वो लिसनर्स जो अगले अंताक्षरी पे अवेलेबल रहेंगे और वो मेरे साथ आके लाइव कर सकते हैं, वो जरा मुझे चैट रूम में ज़रूर बताएंगे, मैं आप लोगों से बात करूँगी आज। तो चलिए आपको सुना दूँ मैं एक प्यारी सी कविता, ध्यान दीजिएगा। हार से मत अपनी पहचान बनाना, हार से मत अपनी पहचान बनाना, हर ठोकर को नया आसमान बनाना। राह कठिन हो तो हौसला बढ़ा लेना, आंधियों में भी अपना पसंदीदा दीप जलाना। जो गिरकर फिर से संभल जाता है वही इतिहास बदल जाता है। मंजिल उन्हीं को गले लगाती है जो हर मुश्किल में मुस्कुराता है। किस्मत भी उनका साथ निभाती है जो मेहनत से अपनी तकदीर लिख जाता है। सूरज भी हर शाम ढल जाता है और हर सुबह नया उजाला आता है। तुम भी अपने सपनों पर विश्वास रखो, हर दिन नया एक प्रयास रखो। डर को अपने कदमों की बेड़ी मत बनने दो, उम्मीद को अपने दिल से दूर मत होने दो। जीत केवल मंजिल तक पहुंचने तक की नहीं, हर दिन अपने कल को बेहतर बनाना है। उठो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिन्होंने पढ़ा है कि सिर्फ चलते जाना है, सिर्फ चलते जाना है। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी को आप लोग थोड़ा सा और एंटरटेनिंग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपकी दोनों टीमों के मेंबर्स जो हैं वो आके अपनी अटेंडेंस लगा दें कि भाई हम लोग एकदम तैयार हैं, तो फिर मैदान फतेह करने में कौन सी देरी हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को और फिर आगे बात करते हैं, देखते हैं कौन क्या करता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। आज की शाम अंताक्षरी के नाम और होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन पहले एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88408123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98 38 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कोई किसी का ठिकाना हो या ना हो, लेकिन आप सभी का एक ठिकाना तो जरूर है गोंडा शहर में, आपका अपना रेडियो स्टेशन 89.6 FM, जहां से जाने का तो जी नहीं चाहता है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस चले ना यहीं सुबह शाम बिता दूं और आप लोग के साथ बैठे बैठे, जैसे अंताक्षरी की बात आज हुई है तो आगे बहुत कुछ बताने को है। शुरुआत तो पहले बहुत सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करने से करूँगी, क्योंकि देखिए अंताक्षरी जैसे अक्षरों से शुरू होती है। और एक बार की बात है, ऐसे मतलब हम लोग बैठे हुए थे और हंसी मजाक होने लगा कि यार तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या आता है, और इसी बीच में जंग जैसी छिड़ गई और सबने बोला ए टू जेड, तो सब लोग आसानी से सुना देते हैं कॉन्सोनेंट कितने हैं, वॉवल कितने, लेकिन जब बात हिंदी पे आके अटकती है ना तो अच्छे अच्छों की आवाज़ अटक जाती है। और ऐसे जब कहा गया कि अच्छा चलो बताओ स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे पूछी जाने लगी ना भाई, सबके सब फ्रीज हो गए, सबकी हालत ख़राब हो गई लिटरली। मतलब किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि हिंदी को थोड़ा सा व्याख्या कर दे। हमें बड़ा आसान लगता है ना, और ख़ास तौर पे हम लोग के स्कूलों में और हर जगह ये भी दिखाया जाता है कि अरे हिंदी क्या है, हिंदी तो सबको आती है, हिंदी एक बार पढ़ने में हो जाएगा। मतलब बहुत ऐसे ही किसी को सुना होगा कि यार मेरी हिंदी कमज़ोर है कहते हुए, बाकी सबके सब यही कहेंगे हिंदी हिंदी तो बड़ी आसान है, हलवा हिंदी में क्या करना है, लिखना ही तो होता है, यही तो करना होता है, ये तो हो ही जाएगा, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। पर सच बताऊं हिंदी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। और हिंदी के लेटर्स की ही आज बात करूंगी, यानी कि हिंदी के एक एक अक्षर की बात करूंगी, हिंदी के स्वर व्यंजन के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हम आपकी बचपन की कहानी से कि आपने कैसे छोटा बड़ा सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ज्ञान की बात सुनिए। पहली ज्ञान की बात यह है कि हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उनको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और हिंदी में कुल अगर वर्ण की बात करें 52 वर्ण होते हैं, 52, और जिसमें 11 स्वर होते हैं। याद रखिएगा स्वर 11 है। कई बार मैंने किसी को 13 बोलते सुन लिया, 13 स्वर है, नहीं 15 है, ऐसे करते रहते हैं। 11, देखिए हमारे यहाँ 11 रुपए देना शुभ माना जाता है, तो 11 स्वर हैं, ठीक है। और 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है, ठीक है, वही आपका वोवल कॉन्सोनेंट वाला 33 कॉन्सोनेंट या व्यंजन आप कह सकते हैं। बाकी हिंदी की कहानी अलग है थोड़ी, मतलब इंग्लिश से तो काफ़ी अलग है और डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द आपको सुना दूंगी ना कि आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा इस शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के वर्ण कितने हैं? 52, जिन्हें आप लेटर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। इनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। 11 और 33 कितना हुआ? 44। बाकी क्या है? 4 जो है इसमें संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 2 जो इसमें है वो है द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन, ठीक है। और ये हो जाता है आपका 52 का खेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समझ के आप लोगों की समझ थोड़ी अच्छी हुई होगी, जान के मतलब थोड़ा लगा होगा कि यार कुछ तो पता चला, भूल गया था मैं तो। थैंक यू आरजू बीना, मन में तो बोल ही रहे होंगे, चैट रूम में भी लिखने की हिम्मत नहीं होगी कि यार मैं लिख दूंगा तो सब सोचेंगे मुझे ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो चीज़ें समझते हुए आपको मज़ा आ रहा होगा, और मज़े वाली बात भी है यार। कुछ जैसे बहुत सारे हमें बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन अचानक से कोई पूछ लेता है ना, तोते उड़ जाते हैं हम लोग के। सच बता रही हूँ, सच, ठीक है। तो हिंदी जो है हमारी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, सबसे खास बात ये भी है, हिंदी जो होती है वो राजभाषा है हमारी। तो 52 इसमें लेटर्स या अक्षर बोल सकते हैं, इसमें वर्ण हुए, और ये हमारे बोलने की जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और कहते हैं लोग कि जो वर्णमाला है ये 4th सदी में पहली बार लिखी गई थी या बनी थी। वर्णमाला के प्रचलित शब्द तो लोगों को याद रहते हैं, लेकिन जो वर्णमाला है वो लोगों को नहीं याद रहती, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में इसका जन्म हुआ है, और हिंदी भाषा को आप जानते ही हैं। वैसे हिंदी दिवस आज नहीं है, अंताक्षरी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा और बता दूँ ध्यान से। तो वर्णमाला जो है वो हमारे जो लैंग्वेज है उसको ईजी बनाती है, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के मिला के हमने सेंटेंस पढ़ा होगा, वर्ड पढ़ा होगा कि शब्द कैसे बनता है, ये अक्षरों का
एक प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं जिनको जानना चाहिए। तो सबसे पहले स्वर जान लीजिए क्या है। स्वर जो है वो है अ आ ई ई उ ऊ ऋ ष ए ए ओ औ अंग अहा। इसमें अंग और अहा जो हैं, अंग जो है अनुस्वार है और जो अहा है वो विसर्ग है। जरा याद रखिएगा, अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अहा को विसर्ग। वैसे मेरी हिंदी बहुत टाइट नहीं है लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके बारे में उसी के हिसाब से आप लोग को बता रही हूँ। तो बिल्कुल अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आरजे बीना गलत बता रही है तो भाई उसको लोड दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आदमी हूँ, आदमी से गलती हो जाती है, और इंसान हूँ मतलब आदमी तो नहीं। तो चलिए, व्यंजन तो आप सभी को पता होंगे, कोई है इसमें ऐसा जिसको व्यंजन नहीं मालूम है? चलिए बता देती हूँ। क ख ग घ ड च छ झ झ ञ त ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ म प फ ब भ म य र ल व श स ह। ह तक जो है ये व्यंजन है, ठीक है, 33 हो गए। और संयुक्त व्यंजन की बात करूँ, छ त्र ज्ञ श्र, ये जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन है। ऐसा ना हो मैं नहीं वैसे कोई वर्ड लेटर दे दूँ। ज्ञ दे दिया था तो एक बार आप लोग मेरे मतलब पीछे ही पड़ गए थे, ज्ञ से कोई गाना ही नहीं है, तो मैंने आपको माँ सरस्वती का एक गाना सुनाया तो आपको याद आया, ठीक है। और एक गाना भी बड़ा प्यारा सा है माँ सरस्वती का, ये कभी सुनाऊंगी आपको टाइम मिला तो। तो हिंदी जो है बोली जाने वाली बहुत ज़्यादा फेमस भाषा है और नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा हिंदी जानते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हर राज्य में बोली जाती है, खास तौर पे राजस्थान में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार, यहाँ पे मुख्य तौर पे मतलब लोग बात करते हैं। लेकिन कुछ जगह जाएंगे, तमिलनाडु ओडू में जाएंगे तो आपको हिंदी बोलना मतलब पाप हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, एक बात हो गई जो आपके समझने लायक थी और मैंने आपको समझा दी। आप बताइए आपको कैसा लगा हिंदी के बारे में इतना कुछ जान के, हिंदी जिसके माथे पर बिंदी। और फिलहाल मुझे मेरी टीम दिख रही है थोड़ी सी लेजी, क्योंकि कोई अभी तक चैट रूम में ये नहीं बताने के लिए आया है कि अंताक्षरी खेलने वाला कौन कौन टीम मेंबर से कौन कौन है। वो तो मुझे पता ही, आप लोग का अलार्म जो है ना सीधे 7 बजे बजता है और कुछ लोगों का तो 7:30 बजे बजता है, तो अलार्म को थोड़ा सा जल्दी लगा लिया करिए। और चलिए हम सीखते हैं थोड़ा सा और ज्ञान इस छोटे से गाने के साथ।

सो टीमें तैयार दिख रही हैं और हमारे साथ प्रकाश और मिश्रा ऑप्टिकल्स दोनों साथ दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब लड़कों की टीम जो है आज ज़्यादा तेज़ है, मतलब तेज़ इन सेंस की मतलब सबसे पहले आके प्रेजेंस अपनी दिखा दी, लगा दिया कि हाँ भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये तैयारी आगे देखते हैं कहाँ तक जाएगी। तो चलिए हम एक और बढ़िया सा गाना सुनते हैं और जानते हैं कि आप लोग कहाँ से कितनी तैयारी लेकर आए हैं। फिलहाल चलिए एक मोस्ट ट्रेंडिंग गाना सुनने की बारी है और हम लोग एंजॉय करते हैं ये पहला सा गाना। मैं वापस आऊँगा से।

एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी होती है और इसी के साथ हम पूरे तो हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो कुछ वक्त बाकी है पूरा होने में, क्योंकि अभी शाम का जो कहते हैं ना वो दीवानापन थोड़ा बाकी है। तो फिलहाल आप लोगों से मैं जान लेती हूँ कि वैसे आप लोग क्या गाने वाले हैं और कौन क्या गाने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि जब म्यूज़िकल शुरुआत की बात आप लोग करते हैं तो मुझे अक्सर कहते हैं कि अर्जुबीन अगर आप शुरुआत करती तो ज़्यादा सही होता। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद है और उसी के साथ हम भी शुरुआत करते हैं कि कौन लाइव हो जाता है मेरे साथ और कौन नहीं हो पाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जो मेरे साथ तुरंत लाइव हो जाएगा चैट रूम में उसको मैं दे दूँगी अपने ही गाने में से एक वर्ड और आपको सुनाना होगा एक प्यारा सा गाना। और चलिए देखते हैं कौन निभा पाता है इस गाने का साथ मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग मेरा साथ निभाएंगे। लेट्स हैव दिस सॉन्ग, आई होप गेस कर लेंगे आप लोग आसानी से। तो लेट्स बिगिन द सॉन्ग। गेस करने वाले ने गाना तो गेस कर लिया।

गाना तो गेस कर लिया आप लोगों ने, एक टाइम का बहुत जाना माना गाना रहा है और हम सभी के दिलों पे राज करने वाला गाना रहा है।

जैसे ये गाना मेरे स्किल का नहीं था क्योंकि मुझे मेरे स्किल का कैरियोके चाहिए था और वो मुझे मिला नहीं, और इसीलिए इस गाने को मैं इतने अच्छे से निभा नहीं पाई और इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस गाने को तो मैं नहीं निभा पाई, लेकिन हाँ उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। और अब मैं आप लोग को आज की अंताक्षरी के रूल्स भी बता देती हूँ स्टार्टिंग से कि आज क्या क्या कैसे कैसे कब कब होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए राउंड वन जो है उसमें आपको मेरे दिए हुए वर्ड्स मिलेंगे और उन वर्ड्स पे आपको गाना गाना होगा। और जैसे टीम ए को मैंने वर्ड दिया तो टीम बी को भी मैं ही वर्ड दूंगी, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि वर्ड्स मेरे ही दिए हुए आपको चुनने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी आगे इस जर्नी को बरकरार रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक दीवानगी नहीं आएगी तब तक हमारी शायरी अधूरी रह जाएगी।

वैसे दीवाना दुनिया कहे या ना कहे, लेकिन आपको ये बता दूं आज डॉक्टर्स डे है। आसपास कोई भी डॉक्टर मिले तो उसे थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है डॉक्टर्स ने हमारी ज़िंदगी को कहें तो एकदम फैसिलिटेट करके रखा है।

0: सो सबसे पहला कॉल आ चुका है और चलिए देखते हैं आवाज किसकी। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसी हैं आशु जी? मैंने देखिए आपको पहचान लिया।
1: बहुत अच्छे मैम।
0: कैसा है वेदर आपके शहर का?
1: मैम गर्मी बहुत है, बादल आके चले जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही।
0: लेकिन हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है।
1: वहाँ बहुत बढ़िया है मौसम।
0: आप हमारे शहर में आ सकती हैं। फिलहाल आपका शहर भी है, आप आए ना तो बात अलग है। तो चलिए, मैं आज जैसा कि डॉक्टर्स डे है तो मैं आपको शब्द भी पहला दूंगी अच्छा सा। आप रेडी हैं?
1: बिल्कुल मैम, अगर आएगा तो जरूर।
0: क्यों नहीं आएगा? मरहम। एक अल्ताफ राजा का गाना है, चलिए आपको पहला शब्द मैंने कठिन दिया तो मैं बता देती हूँ। उसमें उन्होंने एक शायरी से शुरुआत की है और अल्ताफ राजा को तो जानती होंगी आप।
1: मैम उतना मैं तो नहीं इतना जानती।
0: चलिए आप सोचिए, मरहम से आपको गाना याद आ जाएगा। मैं आपको टाइम दूंगी, पूरा टाइम दूंगी। अब आपको सोचना पड़ेगा, पहला कॉल और वो भी सोचना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कोई आसान शब्द दे देती हूँ क्योंकि पहला शब्द इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप दे देते हैं आपको शब्द दवा।
1: दवा। सोचना पड़ेगा मैम, क्योंकि अभी बाहर गई थी, बाहर से तुरंत आई, तुरंत कॉल की हूँ आपको।
0: मतलब आपको शब्द नहीं याद आ रहे?
1: दवा।
0: दवा। चलिए दिल की, दिल पे ही गाना सुना दीजिए आप, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती हूँ मैं। दिल दिल
1: दिल दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है ये बेकरारी क्यों हो रही है, जानता ही नहीं, ओ दिल है ईमानदारी।
0: क्या बात है, दिल माने या ना माने, फिलहाल आज हमारा दिल नहीं मानेगा बिना खेले।
1: मैम आई तुरंत कॉल गप्पू कर ली मैम, बाहर से आई।
0: मैंने सोचा लड़कियों की टीम से कोई आया है उसको रोक के रखते हैं। क्योंकि लड़कियों की टीम से भी कोई मुझे दिखा नहीं है। थैंक यू सो मच आशु जी। तो भाई आशु जी ने आके खाता खोल दिया लड़कियों का और इसी के साथ अब लड़कों की कॉल की बारी है। और लड़कों को मैं बता देती हूँ कि अगर आपने मरहम से गाना सुना दिया तो आपको आपके पॉइंट मिलेंगे प्लस 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ, इश्क़ छड़या तू कखदा नहीं सानू, इश्क़

0: हमारे साथ अगले कॉलर आ चुके हैं, चलिए आवाज सुनते हैं उनकी, कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, आपका नाम?
1: अमित कुमार।
0: अमित, आप आ गए हैं?
1: जी बिल्कुल आ गए हैं।
0: अमित जी, मरहम से गाना सुना दीजिए।
1: इससे
0: मरहम से?
1: ओ मैम, ये सब मुझे नहीं आता।
0: ये सब नहीं आता, तो चलिए सुना दीजिए इश्क से गाना।
1: देख,
0: इश्क
1: के बिना क्या जीना यारो, इश्क के बिना क्या मरना यारो। आगे नहीं आता, आता है मैम बस कुछ लाइंस में मिस्टेक हो जाएगा।
0: मतलब मिस्टेक हो जाएगा, मतलब पॉइंट नहीं थे।
1: आता है
0: कोशिश करिए।
1: जी जी बिल्कुल, कर ले
0: गाइए, कोशिश तो करिए। हमें
1: मैम एक सेकंड, इसके बिना क्या जीना यारो, इसके बिना क्या मरना यारो।
0: गुड़ से भी मीठा इश्क, इश्क वादा ये पक्का इश्क। फिलहाल ये गाना ताल से ताल मिला फिल्म का है, और इसी के साथ लड़कों की टीम को भी 20 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन लड़कों को एक ऑफर मैंने दिया था कि अगर आप मरहम से गाना सुना देंगे और इसी के साथ आपको मिल जाएंगे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यानी ये बोनस पॉइंट। लेकिन लड़के गा नहीं पाए, तो मैं ही बता देती हूँ, एक गाना मैंने सुना था, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। गौर फरमाइएगा कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम ना मिला मरहम की जगह, मरहम की कसम मरहम गए। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। बड़ा बढ़िया सा गाना था, और ये शब्द भी मुझे इसी से याद आया था। चलिए आगे सुनते हैं ये गाना।

0: चलिए अब देखते हैं अगला मतलब कॉल किसका है। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
1: मेरा नाम मोशिना अंसारी है।
0: मोशिना, काफी दिनों बाद, फिलहाल कहाँ है, गुजरात या फिर?
1: नहीं नहीं, गुजरात में ही हूँ।
0: क्या बात है, और फाइनली काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। कैसी हैं आप, कैसा है आपके?
1: मैं आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको याद
1: मैं आपने जो गाना गाया था बहुत ही अच्छा था, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने उसको निभाया नहीं अच्छी लगे? जैसे मुझे तो बहुत ही पसंद आया, वो एक शो आ रहा है इस समय जिसमें मेरे बहुत ही प्यारे जज हैं, वो एक वर्ड कहते हैं चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, तो मुझे आपका जो वो लगा जो आपने गाया बहुत ही प्यारा, तो मैं उसको ऐसा बोलूंगी आपने बहुत ही प्यारा और चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिया।
0: थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपने अब लड़कियों की टीम से कॉल कर ही दिया, तो अब मैं शब्द दे दूं?
1: जी।
0: चलिए,
1: बहुत टफ मत देना मैम।
0: पक्का? चलिए पानी से सुना दीजिए गाना, हम लोग के यहाँ पानी बहुत बरस रहा है।
1: हाँ, मेरे वहाँ तो बारिश नहीं हो रही फिलहाल, बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसा कि आशु मैम ने कहा गर्मी बेसास्ता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही।
0: चलिए पानी से सुनाइए।

0: जाएगी बारी हो, बस मुझे इतना ही आता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना गाना है लेकिन मेरे दिल के करीब है, मुझे अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। फिलहाल मौशिना आगे बनी रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आपकी टीम को आपकी जरूरत है, अभी आपकी टीम से आप और आशीष जी ही हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए लड़कियों की टीम ने आगे बढ़ा दिया है मामला और अब देखते हैं लड़कों की तरफ से कॉल किसका आता है। तब तक के लिए म्यूजिकल जर्नी बरकरार है।

तो चलिए, आवाज़ हमें नहीं मिली लेकिन हम आवाज़ का इंतज़ार करेंगे आगे। और देखिए, लड़कियों की टीम से तो लड़कियां आ रही हैं और लड़कों की टीम से थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे चाय और फ्रेंच फ्राइज़ मेरे लिए आ गए हैं और मैं जा रही हूँ खाने, लखनऊ से आई हूँ तो इसलिए छोड़ भी नहीं सकती। तो चलिए, आप भी इन्जॉय करिए और कॉल करते रहिए। लड़कों की टीम मुझे थोड़ी ढीली लग रही है, चलिए देखते क्या होता है।

0: हम इंतजार नहीं करते हैं, अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो सो हमारे साथ वापस से लड़कियों का ही कॉल आ गया, और इसी के साथ लड़कियों की कॉल को कनेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि फिर से लड़कियों को पॉइंट्स देने पड़ेंगे। सो हेलो
1: हेलो मैम,
0: तो अब आपको मैं लेटर वर्ड दे सकती हूँ?
1: बिल्कुल मैम।
0: पक्का?
1: बिल्कुल मैम, टप मत दीजिएगा मैम।
0: चलिए धुन से सुनाइए गाना।
1: इससे मैम?
0: धुन धुन
1: धुन
0: धुन। हाँ
1: धुन,
0: बस वही वाला धुन जब अपने बच्चों को आप कोई गलती करती हैं और तो मार मार के धुन दिया करती थी, अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बस वही वाला धुन। म्यूजिक वाला धुन मत समझिएगा। बहुत सारे गाने हैं धुन से।
1: है तो लेकिन अब आ नहीं रहा है इसमें दिमाग में धुन।
0: और आप ही ने कई बार सुनाया है गाना, मुझे याद है
1: सुनाया होगा।
0: जब महसूस करेंगे आंख बंद करके तो आपको गाना याद आ जाएगा। वैसे मैं ये शब्द आप लोग को इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग तो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, आप लोग के पास गानों की मतलब गानों की इतनी संख्या रहती है, और उसके बाद गाना आप सुना के जाइएगा, जल्दी
1: सोचिए। मुँह में है लेकिन निकल नहीं रहा मुझे।
0: निकालिए निकालिए।
1: मैं मान ही रहा है, जब तो कोई दे दीजिए।
0: आज क्या कहेंगे, आज आप अपने किंग को सपोर्ट नहीं करेंगे क्या?
1: मैम पूरी कोशिश है सपोर्ट करने के लिए।
0: चलिए मैं आपको देती हूँ टाइम, आप सोच के तब कॉल करिए, अभी जब तक कॉल नहीं आता।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: तो चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: नमस्कार, सुसंध्या मैम।
0: शुभ संध्या, और हमारे साथ मौजूद हैं सबलू जी। सबलू जी आपको गाना सुनाना है धुन से, क्योंकि लड़कियों को शब्द दिया था वो नहीं गा पाई, इसलिए बात की बात।
2: क्या वर्ड है? फूल।
0: धुन धुन गाने
2: फूल,
0: की
2: फूल
0: नहीं, नहीं फूल नहीं, धुन गाने की धुन बजती है ना।
2: फूल
0: नहीं, धा से धनुष, ऊ की मात्रा न, धुन
2: धुन
0: जी।
2: Okay.

0: इसी टाइम का सॉन्ग है,
1: कोशिश करो आपको याद हो।

0: तो सॉरी नहीं कर पा रहा है।
1: चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन गाने के लिए मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ, क्योंकि लड़कियों को भी मैंने दिया था, थैंक यू सो मच। तो चलिए, इन्होंने एक गाना गेस किया है और ये धुन तो बजाना, ये गाना है मन फिल्म का, और मैंने तुझे चुन लिया तू भी, नहीं ये दूसरा गाना है। फिलहाल धुन से एक गाना मुझे मिल गया और उसी के मैं पॉइंट दे देती हूँ। वैसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे ये वाला सुन सुन सुन बरसात की धुन धुन, ठीक है। तो ये सारे गाने ही गाने हैं जिसको आप सुन सकते हैं, और आगे हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं अगले कॉलर को ऑन एयर करना चाहती हूँ, देखते कौन है।
2: हेलो
1: हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम।
1: वेरी गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
2: शिल्पी बोल रहे हैं मैम।
1: ओ शिल्पी जी, काफी दिनों बाद घूम टहल के दुनिया से आ गई आप ऑन एयर। कैसी हैं?
2: मतलब आपको पता लग गया कि हम घूम टहल के आ गए?
1: बिल्कुल, मुझे खबरें मिल जाया करती हैं।
2: गुप्तचर आपके बड़े अच्छे हैं।
1: हाँ बिल्कुल। अब जो हर साल घूमने जाता है उसके बारे में पता ही चल जाता है।
2: जी, और कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ, और बस आप लोग का आशीर्वाद है। तो फिलहाल मैं आपको दूंगी, कोई आसान शब्द तो नहीं दूंगी।
2: अरे बाप रे, तब फिर तो हो गया मंटादार।
1: नहीं नहीं, मैं आपको बहुत डिफिकल्ट भी नहीं दूंगी, लेकिन आज शब्द तो दूंगी अच्छा खासा।
2: हाँ तो दीजिए, फिर देखते हैं कहाँ कितने पानी में जा पाते हैं हम।
1: चलिए, बहुत टफ भी नहीं देती हूँ। कलंक से गाना सुना दीजिए।

0: मैं पूरा गाना मुझे याद नहीं है।
1: क्या बात है, आज किसी को गाना ही नहीं याद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारी शिल्पी जी ने गाना सुना दिया, लेकिन आज ये क्या मतलब, आप लोग बादाम वादाम नहीं खा रहे हैं क्या? थोड़ा मैं मेरी तरफ से मतलब आप लोग थोड़ा बादाम खाना शुरू कर दीजिए, ना खाइए लेकिन हम ट्यूसडे को एक दिन खा लिया करिए, जिससे वेंसडे को आप अच्छे से गाने गा पाएँ, क्योंकि आप लोग गाने आजकल बहुत भूल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है फिलहाल हम बाद में जानेंगे। सुनते एक प्यारा सा गाना जो आपका और मेरा हमेशा से सबका फेवरेट रहा है, और राहत फ़तेह अली खान का ये गाना एक टाइम पे सबकी ज़ुबान पे रहा है। फिलहाल ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है अगला आया वर्ड इसी गाने से हो।

0: तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
1: जी, मीना जी।
0: चलिए वापस से आप हमारे साथ हैं संधू सावंत जी, और जैसा कि मैंने आपको भी गाना सुनाया राहत फतेह अली खान जी का, आपका पसंदीदा गाना होगा
1: जी जी।
0: इस गाने से कोई भी एक वर्ड लेके आप गाना सुना सकते हैं। गाना सुने आपने जरूरी था, इस गाने का कोई भी एक शब्द लेके आप गाना सुना सकते हैं।
1: जरूरी था, लास्ट में तो जरूरी था ना, था भी होगा ना।
0: था तो हो एक छोटा सा, मतलब इसका तो कोई अर्थ नहीं है कि एक शब्द लीजिए अर्थपूर्ण। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, बहुत सारे वर्ड हैं। कोई भी एक शब्द लेके आप गाना सुना सकते हैं जल्दी। लेकिन

0: क्या बात है, और थैंक यू सो मच। और मुझे लगा कि ये भी एक तरीका है आप लोग की याददाश्त चेक करने का। फिलहाल थैंक यू सो मच सबलू जी अपनी टीम का साथ देने के लिए। तो मुंबई से सबलू सामंत जी हमारे साथ हैं और अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लड़कियों की टीम से कौन गाएगा, लेकिन उनको गाना गाने के लिए अगला गाना ज़रूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगला शब्द आपके लिए भी अगले गाने से ही हो। चलिए सुनते हैं अगला गाना, बड़ा ही प्यारा सा है, आप लोग के स्टाइल वाला है, मुझे बड़ा पसंद है। लेट्स एंजॉय।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है।
0: चलिए देखते हैं कौन आ गया चैलेंज एक्सेप्ट करने। हेलो शिल्पी जी, वापस से
2: जी जी जी।
0: तो गाने की लिरिक्स सुनी आपने?
2: हाँ हाँ बोला, सुना मैंने।
0: कौन सा शब्द लिया आपने?
2: तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में
0: तो चलिए शिल्पी जी ने गाना सुना दिया है, अब अगले कॉल को ऑन एयर करने की बारी है। चलिए देखते कौन है। हेलो,
3: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, आदाब प्रणाम, आपका शुभ नाम?
3: हमारा लक्ष्मी विजय इटिया चौक से जी। गाना सुना दीजिए जो है, सोना नहीं चांदी नहीं, यस जानकी का है गाना
0: जी। बिल्कुल, और अभी आपकी फरमाइशी का समय नहीं हुआ है, फरमाइशी करने के लिए आप 7:45 का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। तो देखिए आप लोग मतलब कॉल सुनते हैं तो सोचते हैं कि फरमाइशी भी शुरू हो गई, क्या बात है। फिलहाल टैलेंट आप सभी के अंदर भरा पड़ा है, बस इंतज़ार रहता है कि कहीं टैलेंट निकालने का मौका मिल जाए। चलिए हम वो गाना सुनते हैं जो अभी आप सुन रहे थे। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

0: हेलो
1: जी वीना जी,
0: वापस से सबलू जी हमारे साथ हैं, क्या बात है। और अगला शब्द भी आपको मैं कहूंगी इसी गाने से आपको लेना चाहिए, जो गाना आप सुन रहे हैं, ये तुमने क्या किया।
1: कौन सा गाना था, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, एक लाइन अब देंगे तो।
0: गाने की लिरिक्स है ये तूने क्या किया,
1: ये तूने क्या किया। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूँ भाई कुछ कुछ होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने और सबका पसंदीदा गाना सुना, थैंक यू सो मच। तो सबलू जी ने गाना सुना दिया है और मैं आपको बता दूं कि एक एक लेटर दोनों ही टीमों को मिलेगा गाने का मौका, और उसके बाद वापस से आपको आ जाना है नेक्स्ट राउंड की ओर। फिलहाल नेक्स्ट राउंड क्या होगा मैं पहले से नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे।

आज लड़कों की टीम से मुझे लड़के थोड़े कम दिख रहे हैं, और देखिए हमारे चैट रूम में लड़कियों की भी बहुत सारी बातें, और हमारे साथ गीता जी भी हैं। गीता जी देखिए बताने से काम नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, क्या है?

0: हेलो,
1: मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो
0: आप लोग कॉल करते हैं कहाँ चले जाते हैं। हेलो
2: हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग गीता जी, कैसी हैं?
2: ठीक है मैम, गुड इवनिंग मैम।
0: ठीक तो नहीं लग रही आज आपकी आवाज में, वो एनर्जी नहीं दिख रही, क्या बात है?
2: नहीं मैम ठीक है, कुछ बैठे हुए थे ऐसे ही।
0: नहीं वैसे ही बैठी थी, लेकिन वो हंसती मुस्कुराती आवाज कहीं गायब सी दिख रही है, कुछ परेशान सी लग रही है। चलिए अब चांद से मुखड़े से एक चांद सा गाना सुना दीजिए, चांद से।
2: चांद से
0: क्योंकि इस गाने में चांद शब्द आया ना, तो आप सोचती, मैंने सोचा मैं आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करूँ क्योंकि आप परेशान लग रही है। शब्द मैं नहीं
2: चांदी को क्या मालूम चाहता है उसे

0: चांद को क्या मालूम, चाहता है उसी को ये चकोर।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच गीता जी, मजा आ गया। और अब थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, आपकी हंसी कहीं गायब दिख रही है, लग रहा है कोई चांद का चकोर चुरा के ले गया।
0: नहीं मैम, कभी कभी ऐसी बैठे थे, बच्चों की याद आती, बच्चे बहुत दूर है।
1: ओ चलिए, मुझे भी याद आए, बहुत याद आए। चलिए हंसिए, मुस्कुराइए और एंजॉय करिए अपनी शाम। तो फिलहाल गीता जी की आवाज़ हमने सुन ली है और देखते हैं हमारे साथ अगले कौन कॉलर हैं। कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गया पर आवाज़ सुनने की बारी है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ ना आते हुए अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो
0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग या गुड नेम?
0: हाँ गुड नेम, गुड इवनिंग, मैं सुपूजा बोल रही हूँ। सुपूजा?
1: सुपूजा
0: जी जी।
1: पूजा जी अभी मैं बताऊं, वैसे लड़कों की बारी है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, ये राउंड यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए देखते हैं लड़कों की टीम से कौन कॉल करता है। हेलो
2: हेलो, बीना जी शुभ संध्या।
1: ओ शुभ संध्या, कैसे हैं अनूप जी? देखिए मैंने आपकी आवाज़ को पहचान लिया, वो अर्ज है कि आपने लिसनर की जो आवाज़ ना पहचाने। क्या हाल है? फाइनली अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा नेता होता है बाद में आता है कभी कभी, आजकल अनूप जी का वही हाल हो गया है। कभी कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने चले आते हैं, नहीं तो फिर चले जाते हैं वापस, वो कौन सी शयन निद्रा में, कौन सी निद्रा में। क्यों अनूप जी? हेलो हेलो अनूप जी,
2: जी
1: कहाँ चले गए थे आप?
2: मैं कहीं नहीं गया था, आपने होल्ड पे डाल दिया था, मैं कहाँ जाऊँगा।
1: तो हो सकता है कि कई सारे कॉल आते हैं, वो अपने आप फोन रिसीव होने लगता है सेंसर की वजह से। तो चलिए ये बताइए, मैंने जैसा कि बताया कि आज फाइनली आप आ गए हमारे बीच में, आप अपनी टीम में आजकल थोड़ा कम खेलते हैं, जैसे कोई बड़ा नेता होता है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कभी कभी पहुँच जाता है, तो वैसे आज आप आ गए हैं, ऐसा कुछ?
2: जी
1: जी, वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप पार्टी के बड़े नेता बन चुके हैं। कभी कभी आएंगे?
2: नहीं मुझे मुझे मुझे ये नहीं पता है कि मतलब अभी क्या स्कोर चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, बस मैं भी जस्ट घर पहुंचा हूं, कपड़े चेंज किए तुरंत मैंने, पहले फिर रेडियो ऑन किया और फिर मैं आपका आपको मैंने कॉल किया।
1: कि चुनाव चल रहा है, चलो मैं थोड़ा चलता हूं अपनी पार्टी के पास। मैं आपको शब्द दे देती हूं, जैसा कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं तो मैं शब्द भी आपको बढ़िया सा देती हूँ आपके आपके लेवल का, तो जला जला, मतलब
2: जला?
1: जलना जलना से गाना सुनाइए, जैसे कोई
2: जला। अच्छा, वो देखो जला घर किसी का और टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी के रोने लगे गम के मारे, वो देखो जला घर किसी का।
1: क्या बात है, देखिए देखिए पार्टी के बड़े नेता आते ही देखिए बड़े बड़े वर्ड लेने लगे, क्या बात है। थैंक यू सो मच अनूप जी, आगे बने रहिए, क्या बात है। तो अनूप जी आ गए अपनी टीम को सपोर्ट करने, लड़कों की टीम बहुत अब मजबूत होती जा रही है, लगातार एक से एक मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, सबलू जी जो कि मुंबई से जुड़े हैं, अमित जो कि गोंडा से जुड़े हैं, अनूप जो कि गोंडा से जुड़े हैं, और बहुत सारे श्रोतागण जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए चैट रूम में और हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और इस गाने को सुन लीजिए और फिर मैं बता देती हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट राउंड शुरू होने को है, उसके लिए आप थोड़ी सी अपनी जो प्रिपरेशन है थोड़ी स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी जो प्रिपरेशन वो स्ट्रॉन्ग नहीं की तो आप शायद थोड़ा परेशान हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड थोड़ा खतरनाक होने वाला है। कैसा बताओ?

0: Coke Studio, Season 14.
1: तो अपनी बेताबी बना के रखिए और अपनी जो धड़कनें हैं उनको बढ़ा के रखिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो देखते हैं कौन क्या करता है। फिलहाल मुझे ये पता है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: कंटेस्टेंट्स सभी लोग तैयार हैं और ये जानने के लिए तैयार हैं कि यार आज सेकंड राउंड अंताक्षरी में होने क्या वाला है। भाई घबराइए मत, जो भी होगा बढ़िया होगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं जहाँ तक आपको बताऊँ तो ये सबसे अच्छा वाला राउंड होगा क्योंकि ये आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ राउंड होने वाला है। अब आप सोच होंगे कैसा राउंड है, पढ़ाई लिखाई की बात कोई कर देता तो बेकार लगता है। हाँ, ये बात तो मुझे मतलब सुन के भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई पढ़ाई लिखाई की बात करता है ना तो हमारे मन में एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। मतलब ये पढ़ाई की लोग बातें क्यों करने लगते हैं, नहीं करनी चाहिए ना। मैं समझ पा रही हूँ आप लोग की भावनाओं को, मैं समझती हूँ और आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। तो चलिए आज बातें तो होंगी लेकिन फिलहाल मैं बातें करने वाली हूँ आप लोगों से आज के खास मतलब चीज़ की, यानी कि कुछ फेमस पोइट्स की, कुछ फेमस पोइट्स की पोइट्रीज की। तो बिल्कुल परेशान ना हो, हैरान ना हो, बस हमारे साथ तैयार रहें अगले सवाल के लिए। सवाल का आंसर जो है वो आप चैट रूम में भी दे सकते हैं और कॉल करके भी दे सकते हैं। तो जो सबसे पहले कॉल करके आंसर दे देगा वो हमारा खास बन जाएगा। तो ये बताइए, किसी एक वैसे आप लोग को पता है ना काव्यों की शैली होती है अलग अलग सी और एक मतलब स्पेशल टाइम होता है जिस टाइम में वो लिखते हैं कविताएं। तो ये बताइए छायावाद के फेमस किसी एक कवि का नाम बताइए। जिसकी टीम सबसे पहले आंसर देगी उसकी टीम को मिलेंगे टोटल 30 points। छायावाद के किसी एक कवि का नाम बताइए। छायावाद तो जानते ही होंगे, चलिए बताइए। अरे भाई कॉल भी आ गया। हेलो।
1: हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग अगेन गीता जी। छायावाद के किसी कवि का नाम बताइए।
1: मैम जयशंकर प्रसाद।
0: अरे वाह, आपने तो मतलब एकदम कहते हैं ना कि जिसने पूरी छायावाद को संभाल रखा उसका नाम बता दिया। चलिए अगर आपको जयशंकर प्रसाद की कोई कविता भी याद है तो मैं कहूँगी सुनाइए आप। कोई एक दो पंक्ति जैसे आपकी पसंदीदा हो।
1: प्यार तो बहुत किए थे मैम, वो जो चरित्र चित्रण लिखना होता था तो उसमें जो पॉइंट होते थे उसके हिसाब से कोटेशन डालते थे, लेकिन इस समय शायद वो है ना, अरे पीयूष तो सी बाहर करो सुंदर समतल पे नारी तुम श्रद्धा ऐसे ही कुछ है मैम ना। विश्वास रजत नग पग पे पीयूष तो सी बाहर करो सुंदर समतल पे नारी तुम केवल श्रद्धा हो भाव जगत। अरे मैम पूरी लाइन नहीं याद आ रही।
0: क्या बात है, आपने कोशिश की। और मेरी जो पसंदीदा कविता है वो है आंसू, मैंने एक बार सुनाई भी आप लोग को। इस करुणा के हृदय में एक विकल रागी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्या बात है, थैंक यू सो मच। देखिए भाई लड़कियों की टीम पढ़ने वाली भी है, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों की टीम है। और नहीं, लड़कों की टीम से भी आंसर आया लेकिन कॉल पहले आ गया था तो इसलिए आपका आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और राशु जी ने एक और कवि का नाम बता दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बात है, और महादेवी वर्मा भी उसी टाइम की रही हैं। तो मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। और मुझे मतलब आप लोग का जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, सुपर। देखिए इन्होंने सबके नाम भी लिख दिए, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। इन्होंने मतलब बहुत ट्रिक से याद किया, प्रीति जी ने। ये आ गई मतलब एकदम अपनी टीम को सपोर्ट करने वाली और बहुत सारी जानकारी एक साथ रखने वाली हमारी प्यारी प्रीति जी। तो चलिए अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सब लोग कहेंगे आज तो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ ना, कुछ ऐसे भी राउंड होने चाहिए जिनके बारे में अगर हम लोग में से कोई भी एक सुन रहा हो उसका बेनिफिट हो। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई की बात हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके बारे में हम पढ़ें तो थोड़ी फीलिंग आ जाए। तो ये बताइए भक्ति काल का कोई एक कवि का नाम बताइए। भक्ति काल तो आप लोग को याद ही होगा, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम बताइए और उसकी कोई भी चार पंक्तियाँ आपको सुनानी है। आप सोच समझ के कॉल करिएगा और भक्ति काल का आपको कॉल करना है। हेलो हेलो, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम बताइए और उसकी कोई भी रचना आप सुना सकते हैं, एक दो एक लाइन जो भी आपको याद हो। कॉल तो आया है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है। हेलो, चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं, कौन है हमारे साथ। हेलो
2: मैं अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ
0: जी। अनूप जी भक्ति काल जी जी जी तुलसीदास, इनकी कोई भी मतलब चार पंक्तियाँ रचना तो सबको पता है कौन कौन सी है।
2: तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन अब रामायण की एक दो लाइनें याद है कि अरे
0: चलिए सुनाइए।
2: दीन दयाल वीरत संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी, और देवी पूजी पर कमल तुम्हारे,
0: और
2: सुर नर मुनि जन होत सुखारे।
0: बात क्या बात है, थैंक यू सो मच अनुज जी, और आपने अपने टीम को पॉइंट्स दिला दिए। देखिए लगातार देखिए कॉल आ रहे हैं, और अब देखिए पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग की दोनों टीमें कितनी आगे हैं। और अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि एक ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सुना है आपने कभी, हिंदी में दिया जाता है साहित्य में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो महादेवी वर्मा को किस लेखनी के लिए दिया गया, सोच के बताइए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए उन्हें मिला। चलिए अब अपना थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग। देखिए पढ़ाई लिखाई की बातें होने की कितना अच्छा लग रहा है, माहौल बन गया भाई। हमारे साथ अगला कॉल है। हेलो
1: हेलो मैम,
0: वापस से हमारे साथ गीता जी हैं। गीता जी, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था, किस रचना के लिए?
1: मैम उनकी कविता संग्रह आमा के लिए मिला था।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मतलब मैम इससे पहले भी मेरा लग गया था, लेकिन आप तो आवाज नहीं जा रही थी तो फिर मेरा कट गया।
0: हाँ एक कॉल था जो काफी मतलब मुझे लगता है 20-30 सेकंड तक चला, लेकिन आवाज मुझ तक नहीं पहुँची। और तो उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको याद हैं, या ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका आंसर आपको?
1: नहीं मैम पंक्तियाँ इसलिए याद नहीं क्योंकि अभी इधर पढ़ाई लिखाई से लगभग 200 साल दूर है, लेकिन ये सब जब डीएड के लिए याद किया था वो सब है।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए क्लास की तेज तेज लड़कियां हैं एकदम।
1: थैंक यू मैम।
0: देखिए हमारे क्लास की सब तेज तेज लड़कियां एक साथ हैं यामा के लिए, मैडम क्या बात है। देखिए अनिल जी, अगर आप यही काम कॉल करके अगर बता दिया करें ना, आपकी टीम एकदम भाग के आगे पहुंच जाए, तो आप 6393314629 ये आप ही का नंबर है, जस्ट डायल करिए और अपनी टीम को सपोर्ट करिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, फिर सम्मान से ही करूंगी, मतलब मैं बहुत आगे जाके सवाल करना चाहूंगी। सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में से साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस चीज के लिए मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस चीज के लिए मिला। चलिए सोच के बताइए। देखिए अगला फिर कॉल आ गया हमारे पास, और देखिए लड़कियां भाई मुझे लग रहा है इस बार भी किसी लड़की का ही कॉल होगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो
2: हेलो,
0: ओके अनूप जी, अनूप जी सवाल सुना आपने?
2: मैम सुना मैंने, माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार क्यों दिया गया था,
0: साहित्य अकादमी किसके लिए मिला,
2: साहित्य अकादमी का हिम तरंगिणी के लिए शायद दिया गया था 1955 या 1958 में शायद।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: लेकिन लेकिन ये कंफर्म था,
0: ये कंफर्म था, लेकिन मतलब मैंने तारीख और समय नहीं पूछा था, इसीलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। और टीम को बराबर सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आपको मिल जाते हैं आपकी टीम के पॉइंट्स। बराबर चल रही है दोनों टीमें, क्या बात है, मस्त खेल रहे हैं आप लोग भाई। लड़के लड़कियाँ दोनों ही हिंदी में बड़े तेज़ हैं ये तो दिख रहा है। फिलहाल एक थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने का समय आ चुका है, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा खतरनाक सवाल पूछूं, और जिससे कि आप लोग की थोड़ी सी मतलब हालत ख़राब हो। मैं एक सुनिएगा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में मैं आपको कविताओं की कुछ पंक्तियाँ बताऊंगी, और आपको गेस करना है कि वो किसकी कविता है, ठीक है। आई होप आप लोग गेस कर पाएंगे। चलिए। चींटी को देखा वे सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चमकती लघुपद पल पल मिलजुल, ये है पिपलिका पांती, देखो ना किस भांति काम करती वे सतत, कन कन कन के चुनती अविरत। चलिए बताइए किसकी ये लेखनी है। कॉल आ गया है भाई, बहुत तेज है आप लोग। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: गीता जी सुनी कविता आपने?
1: जी मैम।
0: कविता
1: जी मैम, ये चीटी कविता है और शायद सुमिता नंदन पंत की।
0: क्या बात है, और इसी के साथ आपकी टीम को पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखिए, टीम तो आगे पहुंच ही रही है, लेकिन टीम के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग के पॉइंट्स भी थोड़े थोड़े से ना मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अब आपकी टीम के, लड़कियों की टीम के 190 पॉइंट है, लड़कों के 160 पॉइंट्स हैं। और अब मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहूँगी, 4 से 5 मिनट लूँगी जिससे कि मुझे पता चल सके कि किसकी टीम विजेता है। फटाफट से अब मैं 1 मिनट राउंड शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये राउंड थोड़ा लेंदी चला गया और आप लोगों ने भी कॉल करना लेट में शुरू किया। अंताक्षरी जब लेट में शुरू होगी तो बहुत लेट तक जाएगी, तो सब लोगों ने फरमाइशें करना शुरू कर दिया। तो 1 मिनट राउंड के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कॉल करिए, कौन है कहाँ है फटाफट से। सबसे पहला कॉल किसकी तरफ से आता है मुझे नहीं पता, कॉल आप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा। और कॉल आ चुका है और मैं कॉल ऑन एयर भी कर रही हूँ, देखते हैं किसकी टीम से है। हेलो,
2: मैम अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: अनूप जी क्या बात है, और जैसा कि ये राउंड तो खत्म हो गया, मैं लास्ट में 2 मिनट एक एक टीम को दोनों को दूंगी, दोनों ही टीम अपने को प्रूफ करेंगी, तो मुझे पता है आप तो प्रूफ करने में एक्सपर्ट हैं। तो आपका टाइम शुरू करूँ?
2: जी मैम शुरू करिए।
0: तैयार हैं?
2: बिल्कुल रेडी।
0: आपकी प्रेजेंटेशन आपकी टीम को जिता भी सकती है, हरा भी सकती है।
2: जी
0: आपका समय शुरू होता है अब।
2: दिल दीवाना बिन सजना के साजन, तुमसे प्यार की लो आ गई, उनकी याद आ रही है, देखो कसम से आज जाने की जिद ना करो ये दिल का मामला, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, मेरी वफाएं वफा ना रास आई इस प्यार से मेरी तरफ, मैंने मैंने प्यार तुम्ही से प्यार मांगा है तुम्ही से, ये दिल ना होता बेचा, तुम जो आए जिंदगी में, तुम आए तो आया मुझे याद, चांद से पर्दा कीजिए, होली आई रे कन्हई कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया, फूलों का तारों का ये मेरा दीवानापन है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, देखा ना हाय रे हाय हाय ये मजबूरी, दिल खो गया क्या हो गया, दिल मेरा चुराया क्यों, चुरा के दिल मेरा मेरा दिल भी। ठीक ठीक ठीक है मैम, ठीक है।
0: आपको पता है आपने कितने गाने गाए?
2: मैम 1 मिनट
0: सोच रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, आपको भरोसा नहीं है।
2: मैम बताइए कितने गाए हैं,
0: अब आप बताइए आपने कितने गाए हैं।
2: नहीं नहीं पहले आप बताइए।
0: आपने पूरे 27 गाने गाए हैं।
2: जी मैम सही है।
0: आपको क्या लगता है मैं आप भजिया तल रही हूँ?
2: तलिए कम से कम खाने को तो मिलेगा।
0: थैंक यू सो मच। तो भाई लड़कों की टीम ने 27 गाने गा के 270 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं, और अब देखिए बारी है लड़कियों की, देखते हैं लड़कियों की टीम से कौन कॉल करता है। और आपका समय शुरू होता है अब, अगर कॉल आप नहीं कर पाती हैं तो आप लोग ये राउंड हार जाती हैं। आपको मैं देती हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम, और लड़कियों की टीम से जो भी पहले कॉल कर देगा उसकी टीम को मिल जाएंगे पूरे पूरे पॉइंट्स जितने भी वो गाने गाएंगे। तो इसी के साथ हमारे लड़कों की टीम के बहुत शानदार पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे लड़कों की टीम के हो जाते हैं 430 पॉइंट्स। वाह, लड़कियों को जीतने के लिए चाहिए 440 पॉइंट्स। अगर 440 वोट का झटका लगेगा तभी हमारी लड़कियां जीत पाएंगी, नहीं तो हमारी लड़कियां जीत नहीं पाएंगी। और इसी के साथ मैं लड़कियों को ऑन एयर करती हुई उम्मीद करती हूँ लड़कियों का ही कॉल होगा। हेलो हेलो हेलो प्रिय लड़कियों जल्दी से अपनी आवाज़ को ऑन एयर करो, नहीं तो हमारी लड़कियों की टीम हार जाएगी, इतनी मेहनत से आप लोगों ने इतने पॉइंट्स अर्जित किए हैं। हेलो हेलो हेलो प्लीज़ गर्ल्स प्लीज़। हेलो, एक कॉल आ रहा है लेकिन किसका है ये नहीं समझ में आ रहा अब क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? हेलो, जितनी भी गर्ल्स हैं प्लीज़ अगर आप लोग सुन रही हैं तो प्लीज़ कॉल करें और अपनी टीम को जिताने का प्रयास करें। अगर आप लोग कॉल नहीं करेंगी तो आपकी टीम डेफिनेटली हार जाएगी। हेलो, कोई है जो बार बार कॉल कर रहा है लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं ऑन एयर आ रही है। हेलो, एक और कॉल आ रहा है, चलिए देखते मौका देते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है भाई, कॉल आ रहा है लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई। हेलो, आ लड़कियां जीतना ही नहीं चाहती मुझे लगता है। हेलो हेलो हेलो, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि आज लड़कियों की टीम जीतने के मूड में ही नहीं है। इतना अच्छा खेलने के बाद अगर हमारी टीम ना जीते तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए बहुत सोचने की बात है। और इसी के साथ एक और कॉल आ गया। हेलो
1: हेलो मैम।
0: ओके, आप इतनी देर से कॉल कर रही हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही?
1: हम नहीं कर रहे, हम प्रीति जी का इंतजार कर रहे थे कि प्रीति मैम या आंसू मैम करें, कोई नहीं किया तो मुझे करना पड़ा।
0: दो कॉल है जो लगातार आ रहे हैं, 66 नंबर है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आंसू जी का नंबर जहां तक मुझे पता है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है।
1: नहीं, ये मेरा नंबर अंत में 121 है।
0: सो एनीवे, फिलहाल आपने कॉल कर दिया तो मैं आपको एक मिनट का टाइम देना चाहूंगी और जल्दी से आपके टाइमर को शुरू करना चाहूंगी। क्या मैं आपका टाइमर शुरू कर सकती हूँ?
1: सांस ले लूं लंबी मैम, हारना तो है ही, मैं तो हारी गई आज, पहले ही बता दिया मैंने।
0: क्यों हारना है, आप स्टार्ट तो करिए। प्रीति जी पता नहीं आज क्यों सो रही हैं, आशु जी तो मुझे लग रहा है इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे कॉल किए और अभी भी शायद
1: नहीं, मैम कॉल कर रही होंगी, लगा नहीं है वो लोग कॉल कर रही
0: नहीं, नहीं आशु जी का तो कॉल मुझे लग रहा है उन्हीं का आ रहा है क्योंकि उनकी आवाज़ ऑन एयर नहीं आ रही है। एनीवे, चलिए मैं आपकी आवाज़ ऑन एयर करती हूँ, ऑन एयर ही है आप ऑलरेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
1: मुझे इश्क है तुम्ही से, मैं तेरे इश्क में हम तुम्हें क्या बस, इश्क की गली बिचिनो इंटी, इश्क हुआ कैसे हुआ, तेरे इश्क में नाचेंगे ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, इश्क में जब जी घबराए, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क में तो इश्क है तो इश्क का इजहार कर, मैं तेरे इश्क में मन इश्क वाला लव, के सैया तेरा इश्क है पिया मेरा इश्क सूफिया, सलामे इश्क मेरी जान जरा कब, मैनू इश्क का लगिया रो, इश्क कीजे कृपा ये देखती क्या चीज है, इश्क के नाम इश्क दा इश्क में हम सारी रात जागे, इश्क है सुहाना हुस्न है दीवाना, तेरा फिर तू इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें।
0: स्टॉप। आपने पता है कितने गाने गाए हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25।
1: तो मैम हम जीत गए।
0: 25 गाने आपने गाए हैं और इसी के साथ आपके 250 पॉइंट्स हो जाते हैं और पहले से इससे पहले आपके 290 पॉइंट्स थे और अब आपके हो जाते हैं 440 पॉइंट। सिर्फ 10 पॉइंट से ही लड़कियां जीती हैं, क्या बात है।
1: जी मैम, मैंने काउंट किया था, मुझे 25 गाने गाने थे और
0: क्या बात है। थैंक यू सो मच, क्या मजा आ गया, क्या मजा मतलब मजेदार खेला आप लोगों ने, और इसी के साथ 440 पे ही सीधे आके ये लोग जीते, बड़ी खुशी की बात है। और बहुत बढ़िया खेला लड़कियों ने, और अनूप जी ने भी बहुत बेहतरीन खेला, लेकिन लड़कियों की टीम जीती। फिलहाल इस जीत को मैं जीत नहीं मानूंगी, क्योंकि दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट इक्वल हैं और सिर्फ 10 पॉइंट्स है, लेकिन लड़कों ने और मेहनत की, इन्होंने जो कमी थी पीछे 30 पॉइंट्स की उसको इसमें कवर किया, तो इसीलिए मेरे लिए दोनों ही टीम विजेता हैं, बोथ टीम्स आर विनर। पर हाँ, लड़कियों ने 10 पॉइंट तो एक्स्ट्रा अर्जित किए हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 2 मिनट गया मैम, लड़कों को जीता हुआ बोल दीजिए। नहीं देखिए, मैंने कहा था 1-1 मिनट दोनों टीम को दूंगी, तो इसलिए मैंने दोनों टीमों को टाइम दिया। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स टीम। और बिल्कुल मेरी आवाज़ जा रही थी, आपकी नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि आपका ही, क्योंकि मैंने आपका नंबर देखा कि वो मुझे ये डाउट हुआ कि आप ही का नंबर। एनीवे 440 वोल्ट का झटका लग गया है, और इसी के साथ मैं गाना भी सुना देती हूँ आप लोगों को, 440 वोल्ट का गाना, जिसको सुनने के बाद दोनों ही टीमों को लग जाएगी मतलब झटके। फिलहाल झटके की बात ना करिए, बारिश का मौसम जो है वो बड़ा ही खतरनाक चल रहा है, और इसी के चलते मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूँगी, खम्भों वगैरह से मतलब दूर रहिए, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, और इस गाने को सुन के आए हो आप लोग की एनर्जी बन जाएगी और हमारी भी एनर्जी बन जाएगी। सो फिलहाल के लिए दोनों ही टीमें विजेता हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ द टीम, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।

फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आर्ट सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा

0: दिए. सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो. और इसी के साथ में उदालक शर्मा मनकापुर से आपका भी स्वागत है. रितिन सिंह फ्रॉम गोंडा स्टे ट्यून. गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से. नीना इंडिया से. लवली सिंह गोंडा से. सबलू सावंत मुंबई से. आशा मिश्रा जी लखनऊ से. प्रीति शुक्ला जी बहराइच से. ओ माय गॉड मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं आज. शशि सिंह जी गोंडा से आपका भी स्वागत है. सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो. मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा. मुमताज अंसारी जी गोंडा से. सुरेश कुमार जी चौक से. निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से. राजू सलमानी जी आवाज विकास गोंडा से. सबीहा गोंडा से. चांदनी गोंडा से. निशा पटेल नगर गोंडा से. अरमान पटेल नगर गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल. नॉट सो सिंपल. सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश. पहली फरमाइश हमारे पास में अनुष्का की श्रावस्ती से. अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना. बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए. हम सोच में थे जिनके उस रात के दिन आए. सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक वाला नगमा. बरसात वाला नगमा. और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.
1: कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये मदहोशियों की घड़ी.

सिकवा लंदन में हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना मेरी आवारगी, सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश पर। और इसी के साथ में वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा और नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत है। सो मुकेश यादव का कहना है कि आरजे सिंपल जो बोलते है ना कि बेहतर मिल जाएगा, जो बोलते हैं ना कि बेहतर मिल जाएगा उन्हें बता देना कि दूसरी बरसात से मिट्टी नहीं महकती। आपने बहुत खूब कहा है। और जहाँ दूसरी तीसरी चौथी हर एक बरसात होती रहे वहां तो शायद मिट्टी महकती ही नहीं होगी, क्यों? सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो, आई लव दिस।

आग लगे उसकी जो बन को हमने एंजॉय किया इसका AI remix, DJ mix version, हमारे एडवोकेट सुनील मछारा की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है नागेश्वर धाकड़ और उनका कहना है कि एन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में ही तकदीर बदल सकती है, खूब विश्वास हो तभी भागना रांझे, खूब विश्वास हो तभी भागना रांझे, क्योंकि कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आपकी हीर कहाँ से बदली है आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। हमारे पास में अगली फरमाइश है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। एंजॉय करेंगे राजेश सिंह जी की फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शॉर्ट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस सॉन्ग, दिस हाई एनर्जेटिक एंड हाई बेस सॉन्ग, यू नो। स्टे ट्यून्ड। आवाज है मोहम्मद रफी की और मूवी का नाम है आमने।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हमने एंजॉय किया है आमने सामने का ये नगमा। एंजॉय करते हैं, चलिए ना चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। चलेंगे बढ़ेंगे, फरमाइशों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बढ़ता रहेगा, लेकिन इसके पहले स्वागत तो कर लें नए फरमाइशी के महफिल में आए हुए मेंबर की। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नेहा फ्रॉम बहराइच। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। सो एंजॉय करते हैं बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, संग्राम का गाना है, कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता जी की आवाज है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

शक तुम मेरी मोहब्बत हो हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रितिन सिंह की। रितिन सिंह को सुनना है गाना मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। सो जोरू का गुलाम मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं हम लोग अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में और सुनिधि चौहान की आवाज में। रितिन सिंह की फरमाइश पर इन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है उनकी वाइफ सुवर्णा सिंह को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

काम बन के रहूंगा, हमने इंजॉय किया है ये नगमा रितिन सिंह की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा लवली सिंह की गोंडा से, और लवली सिंह को गोंडा से सुनना है गाना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जी एमपी से आपका तहे हुए दिल से स्वागत है, स्टे ट्यून्ड।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.
1: So, हमने enjoy किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा. बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ. और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से. और सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले. तो enjoy करते हैं ये वाला नगमा सबलू सावंत की फरमाइश को. Stay tuned everyone.

बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना आएगा मजा बरसात का। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा इस फरमाइशी गीत के। उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
4: के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, चले चलते हैं, इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह की, और इनको सुनना है गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला। से इंजॉय करते हैं रफी जी, किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में ये नगमा शशि सिंह की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ऋषि सिंह जी की बर्थडे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है नीना की। नीना को सुनना है गोंडा से गाना चांद से पर्दा कीजिए। एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक कुमार सानू और शायद उदित नारायण। हाँ हाँ, इन सब की आवाज में एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। नीना की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हम एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा लवली लवली लवली सॉन्ग हमारी लवली सीनीना की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना, तूने दिल मेरा तोड़ा और शायद कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा। सो एंजॉय करते हैं ये दर्द भरा नगमा हमारी प्यारी सी आशु जी की फरमाइश।

हम एंजॉय किया है ये नगमा लता जी की आवाज में सनम बेवफा मूवी का, हमारी आशु जी की फरमाइश पर, आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से। उनको सुनना है गाना अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें। सो एंजॉय करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग। और जगजीत जी तो मेरे हमेशा हमेशा हमेशा के फेवरेट हैं, मुझे इनकी हर एक गजल बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू जगजीत जी।

दे। ऐसा लग रहा है कि ना कि बाहरी गजल बस शुरू हो चुका है, अब एक घंटे ऐसे गजलों में बीतेगा। जहाँ गजल वहाँ सुकून अपने आप आनी है दोस्तों। गीता श्रीवास्तव जी का भी कहना है बहुत ही खूबसूरत सी गजल है। जी हाँ, एकदम आपकी तरह। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अशोक त्रिपाठी जी आपका स्वागत है एंड आई विल ट्राई टू प्ले योर सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है नवीन राजपूत जी की और नागेश्वर धाकड़ की, इन दोनों को सुनना है गाना हम तुम पिक्चर देख रहे हो और बिजली चली जाए। सो एंजॉय करते हैं रंग मूवी का ये वाला नगमाल का याग्निक।

माफी चाहूंगी इस गाने को यही लगाना पड़ेगा स्टॉप। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है अशोक त्रिपाठी की। अशोक त्रिपाठी को सुनना है गाना तेरी बिंदिया रे, सो इंजॉय करते हैं ये वाला गाना। इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपनी आज सिंपल नोट से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्यों, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल। आप सुन रहे रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हमारे शहर में लग न जाए आग नफरत की, हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें भाई आप। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। जी हाँ, आज हमारा दिन नहीं है भाई, आज तो हमारे जो श्रोता होते हैं हफ्ते भर के वो बन जाते हैं वक्ता। जी हाँ, आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। और आज कार्यक्रम है भाई कालीन, तो आज तो आप गाएंगे और सभी सुनेंगे। जी हाँ, तो झूमेगी दुनिया आपके सुरों के साथ। तो पिछले बार की शुरुआत बहुत शानदार हुई थी और हम देखना चाहेंगे कि भाई इस बार आज की शुरुआत को कौन शानदार करता है। इसलिए आपको एक गज़ल सुना दिया और वो भी सुनाइए कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, तो मेरा कहा आपको मानना पड़ेगा। हमारे साथ उपस्थित है भाई, कौन क्या बात है, गीता बहन जी उपस्थित है, प्रणाम करते हैं आपको। इट्स कुमार जी हैं, लवली सिंह जी हैं, नवीन राजपूत जी को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं, वेलकम जी। हाँ, आपका भी जी। और ये लव गुरु कौन है, इनको तो मैं नहीं जानता हूँ। खैर, और नवीन राजपूत लिखते हैं, शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए, चल फिर से बैठें वो क्लास की लास्ट बेंच पे, शायद फिर से वो पुराने दोस्त मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में जो दोस्ती होती है ना, वो बचपने वाली दोस्ती मिलनी थोड़ी सी मुहाल होती है। हाँ, लवली सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा कल लगा था, आपने मेरा सही नाम लिखा था, आज फिर मैं मनु से मनोज हो गया। जी हाँ, गुड इवनिंग। ऐसे मेरे नाम की स्पेलिंग NU है, आप चाहें तो सही कर दें। और आपकी बातें सर आँखों पर, जी तो अगर हमारी बातें सर आँखों पर हैं तो आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6391364 29 6393316429। बिना देरी किए हुए इस नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि भाई अब आज ये समय आपका है, ये वक्त आपका है, ये दिन आपका है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस दिन को किसी तरीके से ज़ाया किया जाए, एक पल भी नष्ट किए बिना चलते हैं आपकी ओर, अपने श्रोताओं की ओर, देखते हैं कि भाई आज के कार्यक्रम की आधारशिला, आज के कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, पहला कदम बहुत कठिन होता है। तो सचिन शुक्ला जी हैं, जी हाँ नमस्ते सर जी, जी हाँ आपको भी प्रणाम करते हैं, शुभ संध्या आपको भी और नमन आपको। और अब देखते हैं भाई, शुरुआत शुरुआत और शुरुआत, ये किससे होगी ये कुछ देर में वक्त बता देगा। तो आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, जब तक आप हमको नहीं छूते हैं। और इसके पश्चात जैसे ही भाई आपका फ़ोन आएगा, हम इस गज़ल को यहीं पर रोकेंगे। और एक इल्तिजा हमने आपसे की है कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, और दूसरी इल्तिजा दूसरी विनती भी आपसे करते हैं, किन लफ्ज़ों में। जी हाँ बिल्कुल, इन लफ्ज़ों में जो आप सुनने जा रहे हैं, सुनते रहिए। और रेडियो गाना 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: क्या बात है, तेरे आने की जब खबर मैं करूँ हमको लगता है कि भाई किसी का शुभागमन हो चुका है। हेलो।
1: हाँ हेलो, शुभागमन हो चुका है और मैं इंतजार ही कर रहा था कि शायद कोई सामने आए, कोई नहीं आया तो मैंने।
0: अरे अरे, चरण स्पर्श,
1: जय हो जय।
0: कैसे हैं प्रभु?
1: ठीक ही हूँ
0: जी। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्री अशोक त्रिपाठी जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ जी। हाँ
0: जी जी, कैसे हैं?
1: बिल्कुल, आप
0: कैसे हैं प्रभु?
1: मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
0: वाह क्या बात है, मतलब आज शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है हमारी। मतलब
1: शुरुआत क्या, मैं सुन ही रहा था कि शायद।
0: हाँ मतलब आज हम व्यक्तित्व से शुरू करेंगे।
1: हाँ यही मैं सोच रहा था कि अभी तक।
0: हाँ नहीं नहीं, अब लगातार आपने शुरू कर दिया है तो शुरू हो जाएगा सिलसिला।
1: लेकिन हमें लगता है कि उसे मोबाइल से मिलाना पड़ेगा या तो इस पर मैं बंद करूँ पहले एक मिनट।
0: जी
1: हेलो।
0: जी जी
1: हाँ, तो सुनाने की बात क्या है, मैं सुन रहा था कि देखो शायद कोई आए पहले किसी के नाने पर, मैंने कहा मैं ही मिला देता हूँ।
0: नहीं, वही होता है ना, कार्यक्रम की आधारशिला, कार्यक्रम की नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारा वो भाग्य है कि ये आधारशिला आज आपसे रखी जा रही है।
1: आपके नींव की ईंटें इतनी मजबूत हैं, वो संयोग से किसी कारणवश उनको देरी हो रही होगी अन्यथा किसी दिन
0: नहीं
1: आते ही जरूर। और मैं सोच ही रहा था कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग, तो मैं उस एब्सेंस को पूरा करने के लिए चला ही आया।
0: क्या बात है, मतलब ये इसे कहते हैं बड़ा बड़प्पन। तो प्रभु क्या सुनेंगे हम, रागमन कल्याण ही सुनेंगे।
1: वो तो हमारा बिल्कुल फेवरेट है ही।
0: हाँ।
1: उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उसके अलावा तो कोई हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं है
0: जी।
1: और जहाँ तक जो संगीत और रागों की बातें हैं, तो मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये पा रहा हूँ, अनुमान लगा पा रहा हूँ कि शायद मैं संगीत का ये भी सीडी पढ़ रहा हूँ।
0: मतलब आप जेड तक पहुँच चुके हैं आप, हमको लगता है।
1: नहीं, पढ़ रहा हूँ जिसे कोई अक्षर पहचानता हो, इसे मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी पहचान पाऊँ कि ये था क्या चीज, राग वगैरह।
0: क्या बात है क्या बात है, मतलब इतने सारे गीतों को चुन करके आपने एक इतना शानदार गीत बना दिया जो मिसाल हो गया, नजीर हो गया।
1: मतलब हाँ ऐसे ही ये लोग तो डिजाइन करते हैं।
0: हाँ।
1: हमारे जो गीतकार संगीतकार हैं ऐसे ही डिजाइन करते हैं, इनकी मेहनत रंग लाती है, डिजाइन करते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, बिल्कुल हार्ट टचिंग होती है ये जो।
0: मतलब
1: कई बार जैसे सोने के साथ सुहागा का जो जोड़ है, वैसे ही गीतों के साथ रागों का जोड़ होता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लाजवाब। और हमारी तो वही पसंद है, बाकी अन्य लोगों को किसी को क्या पसंद होगा ये तो वो जानता हूँ।
0: नहीं नहीं, आपकी पसंद सबकी पसंद है।
1: अब मैं आपको कभी किसी और दिन सुनाऊंगा, आज तो सुना पाऊंगा। मैंने ऐसे भी देखा है कि कई बार मन में आया म्यूजिक कंपोज करने वाले के भी और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके मन में भी आया कि लाओ एक ही गीत के एक ही मुखड़े को दो लोगों से गवा दिया जाए और कुछ अलग अलग, जैसे किसी में थोड़ा डीजे का लुक आ जाए और बाकी गाने में कुछ और भी लुक आ जाए, ऐसा बना दिया।
0: क्या बात है, मतलब विश्लेषण फिर किया आपने।
1: हाँ, तो वो गाना मैं अभी उसको रखे हुए हूँ रिजर्व, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा
0: जी।
1: और आज तो मैं रागमन कल्याण का ही सोचता हूँ कि कोई गाना सामने लाया जाए तलाश करके।
0: बिल्कुल, वो खजाने में से वो निकालिए पुखराज।
1: पुखराज निकालने की क्या बात है,
0: क्योंकि कोहिनूर तो आपने छुपा के रखा हुआ है किसी और दिन के लिए।
1: सारे ही गाने, सारे ही गीत, ये कोई ना कोई रत्न नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इन रत्नों को किसी ने बड़ी मेहनत से बनाया होगा, हम लोग तो केवल उसको उठा ही रहे, लुत्फ उठा रहे हैं
0: जी। तो शुरू करें प्रभु।
1: तो मैं बिना देरी किए जब आपने शुरुआत हमसे करने की बात कह ही दिया है तो मैं शुरुआत किए ही देता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और ये गीत शायद फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का होगा, राग यमन कल्याण का ही है
0: जी। अच्छा, वो इसके आगे की एक दास्तां मुझसे सुन।
1: यस यस, सलामे इसका है। अब देखिए कि किस तरह से पूरे स्टैंजा को, पूरे प्रोज को पोएटिक कन्वर्जेशन में ढालता है कहने वाला
0: जी,
1: कि इसको कोई भी कैसे भी गाएगा तो वो गीत के रूप में ही निकलेगा
0: जी।
1: तो मैं मुखड़े के बजाय अंतरे से ही शुरू कर देता हूँ
0: जी। बिल्कुल,
1: ओके, थैंक यू। मैं सुनाऊं तुम्हें बात इस रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था एक अरमान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था, एक बादल उधर से चला झूम के।

0: खुफिया क्या हो गया, जोश ही जोश में मेरा दिल धड़का, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, सलामे एक मेरी जान, जरा को भूल कर लो तो हमसे प्यार करने की, जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, इसके आगे की अब दास्ता मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक मेरे दिल में थी, मेरा वादा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जा, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान, जरा को भूल कर लो हमसे प्यार करने की, जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, शानदार, जोरदार तालियां आपके लिए, सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया और उतने ही तरीके से निभाया आपने फिल्म। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत प्यारा गीत। और मेरे पसंदीदे, मेरे जितने भी पसंदीदा गीत हैं उन गीतों में ये गीत वरीयता पर है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनाने के लिए। स्पर्श जी हाँ, तो कार्यक्रम की आधारशिला भाई, कार्यक्रम की नींव रख दी गई है। नवीन राजपूत जी हमारे साथ, कायनाथ जी जुड़ चुके हैं, प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं भाई, प्रणाम करते हैं आपको, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी, और बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे इमोजीज हमारे साथ हैं भाई, और मनी शर्मा जी का भी आगमन हो चुका है। जी हाँ, तो कार्यक्रम की आधारशिला, कार्यक्रम की नींव रखी जा चुकी है। श्री अशोक त्रिपाठी जी ने शुरुआत कर दी है, सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो। अब देखते हैं जी हाँ, हमारे दूसरे पास फिर कोई कॉलर हमारे पास जुड़ चुके, देखते हैं कौन है।
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी, प्रणाम।
3: प्रणाम, मैं गोरखपुर से सविता बोल रही हूँ।
1: अरे चरण स्पर्श, आपको कैसी हैं आप?
3: खुश रहे, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी जी, आशीर्वाद आपका।
3: और कैसा मौसम है वहाँ?
1: जी मौसम बहुत शानदार है।
3: अच्छा, आज तो यहाँ भी बहुत पानी गिरा है।
1: चलिए, क्या
3: मौसम ठंडा है,
1: धरती माता कुछ सूखी हूँ, गीली हूँ।
3: अभी कहाँ पता चलेगा, अभी तो धरती माता पूरा पीते जाएंगी।
1: हाँ, अभी समय लगेगा।
3: ठीक है सर,
1: तो आज
3: मैं
1: जी
3: हाँ, आज मैं वंदना फिल्म का जो गाना था,
1: हाँ?
3: उसको ट्राई कर रही हूँ गाने के लिए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
3: जैसा होगा बताइएगा आप।
1: अरे नहीं, नहीं,
3: सब पहुँची कि नहीं पहुँची?
1: अरे नहीं, नहीं, आप बहुत शानदार गाती हैं।
3: नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा कठिन गाना रहता है तो लगता है।
1: कठिन चीजों पर ट्राई करना ही तो काबिलियत।
3: हाँ, आज तो ये भी नहीं है, गए हैं मीटिंग में लखनऊ।
1: जी जी जी,
3: इसलिए नहीं कर पाए हैं फोन। ठीक है, मैं ये गाना सुनाती हूँ आपको।
1: जी,
3: आप सभी को मतलब।
1: जी जी,
3: शुरू करें।
1: जी जी, निसंदेह।

0: पहली बार सुना और वास्तव में क्या लगता है, वाह, मतलब बहुत ही प्यारा गाया आपने। पहली बार हमने तब सुना था जब आपने फरमाइश की थी और आज दोबारा सुन रहा हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया आपने जी। अच्छा, चरण स्पर्श आपको,
1: खुश रहिए
0: जी। हाँ भाई, तो ये गोरखपुर से कल हमारे पास थी श्रीमती सविता शास्त्री जी के हमारे साथ। भाई मुकेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू। भाई कैसे हैं मुकेश जी? और मुस्तफ़ा सऊदी जी हैं, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई, और नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, गुड इवनिंग, बिल्कुल भाई, अब गुड इवनिंग है और नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा आपका। तो भाई जी, अब गीत आ चुके हैं हमारे पास दो, आपकी इनायतें, आपके कदम। और अभी जब मैं फ़ोन देख रहा था, गीत बज रहा था, तो लगातार फ़ोन आ रहे थे। भाई तो क्या बात है दादा, चरण स्पर्श, और आप कहीं भी मीटिंग में हो लेकिन खाली हो गए होंगे मुझको लगता है। और जी बिल्कुल बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल दादा, अनिल दादा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग मनु जी, शुभ संध्या दादा आपको भी। और महफिल आपके बिना कुछ सुनी सुनी लगी हुई है, तो भाई इस सुनी महफिल को भरिए, क्योंकि मतलब आपने तो जिंदगी में रफ़ी साहब को अपना आदर्श बना रखा है। और आइए, जब तक दादा का आगमन नहीं होता जब तक आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, आया आपको एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं। और वो नगमा भी क्या प्यार नगमा हो जो जीवन का नगमा हो। और उस जीवन के नगमे में अगर हम जिंदगी की बात करें तो मुझको लगता है कि लाइफ इज फ्लावर एंड लव इज सनी। अगर हम जीवन को एक पुष्प की भांति देखते हैं तो जो उसका उसकी जो सुगंध है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो एकदम शहद के जैसी होती है।

जन

लब है आपस में डोल पीते हुई कलिया जरा को अलग कर दो।

कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे नक्षत्र को जुल्फ से पानी हमारी जान ले लेगा यानी

जानू चलो अच्छा मर कर जहाँ से छूट जाएंगे चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे।

0: धन्यवाद।
1: क्या बात है दादा, क्या गीत गा दिया आपने, क्या गजल सुनाई, वाह। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, क्या बात है। और इसी बात पर आपको गुलाब मिल गया, स्टार मिल गया और बहुत कुछ मिल गया, और वो भी जानते हैं किसकी तरफ से मिला।
0: किसके तरफ से
1: भाई? आप बता दीजिए, गेस कीजिए कि मतलब आपको गुलाब, तारे, सितारे, ये सब कौन
0: देने वाले होंगे? मेरे अपने ही होंगे।
1: हाँ, मतलब आपके अपने नहीं, आपके अपने घर में रहने वाले हैं।
0: अरे तो मेरी पत्नी होंगी।
1: जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने आपको दे दिया है बहुत सारे।
0: तो मैं गाना अब आपको मतलब
1: झूठा बोलना किया। जी हाँ, उन्हीं को किया आपने और वो समझ भी गई और मुस्कुरा कर उन्होंने भाई आपको गुलाब का फूल भेज दिया है और इसे आप स्वीकार कर लें।
0: अरे एकदम एकदम। और एक चीज बता दूं आपको?
1: जी।

0: यदि सहनाई पिक्चर का
1: जी,
0: और एक पिक्चर और थी रफी साहब ने गाया था
1: जी,
0: इसी का जस्ट अपोजिट
1: जी,
0: गूंज उठी पहले
1: जी,
0: सुना गया था उसका।
1: अब एक एक कंतरा सुन ले हम,
0: मैं सिर्फ एक दो लाइन सुनाऊंगा आपको
1: जी दादा,
0: अगर आप इजाजत दे तो।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं एक कंसर्ट सुन सकते हैं।

शाम ढले कहीं बजे बारात किसी की कहीं किसी का प्यार जले कहे तो कोई ना करेगा प्यार कहे तो

एक हसी और आंसू आ जा।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया दादा, आपने दिल जीत लिया। हेलो
0: सर
1: जी, हमने कहा दिल जीत लिया आपने।
0: अरे ये आपकी मेहरबानी है सर
1: जी, दिल जीत लिया भाई, वाह बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको दादा। हेलो हेलो
0: हेलो जी, हेलो
1: जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार सर जी, नमस्कार, मैं हूँ आरजे अमन फ्रॉम रेडियो हॉट स्टार।
1: आरजे अमन रेडियो हॉट स्टार, मतलब कहाँ?
0: यस सर जी।
1: जी क्या बात है भाई, कहाँ पर आप रेडियो हॉट स्टार पर, कहाँ है ये?
0: ये है सर जी सिवान बिहार में, और एक भाई साहब अभी कुछ निके गा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ गुनगुना लूं आपके साथ में, और आप प्रोग्राम बहुत ही शानदार पेश कर रहे हैं माशाल्लाह।
1: नहीं मतलब ये तो आप लोगों का कदम है, आप लोगों की इनायत है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप रेडियो हॉट स्टार बिहार से हैं और एक आरजे होकर भी आप सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर, और मैं आपको बता दूं कि आपका रेफरेंस मुझे दिया था आरजे सोनी जी ने
1: जी।
0: क्योंकि मैं तो किसी और चैनल को सुनने का मौका मिलता नहीं था, लेकिन अब सोचा कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो क्यों ना आपको सुना जाए।
1: चलिए भाई इसके लिए आप,
0: और मुझे और समझिए कि मैं पहली बार मुझे यानी कि कॉल लगा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके।
1: क्या बात है, क्या बात है, और आपसे ज़रा खुशी हमको हो रही है कि कोई बिहार से भी हमको सुन रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और उनसे
0: हाँ, तो अगर इजाजत होगी तो मैं भी एक वो ताहिर फराज वाला गजल सुनाना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसके लिए कुछ नहीं ना कर, बस मैं अपना स्टार्ट कर दूं कि कुछ कहना भी पड़ेगा।
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आप गाइए।
0: और ये गाना हर किसी को डेडिकेट है, जो भी सुन रहा है अभी आपके चैनल को, सभी के लिए डेडिकेट है मेरा गाना।
1: जी जी बिल्कुल
0: ओके। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और इस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और इस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब है तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखे रोज जुल्फे तो शर्माए बादल, फरिश्ते भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम,
2: बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिजर में जो रुलाती है अक्सर, जो बन के गली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिजर में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हो ही लम्हो में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर और कुछ सुनना चाहें तो भी सुना सकते हैं।
1: क्या बात है भाई, आपका नाम जिसने भी अमन रखा उसको आ हटा देना चाहिए, इतने मन से गाते हैं आप, वास्तव में मन खुश कर देने वाली बात है। मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आपसे बातचीत हुई और आपकी आवाज़ में कशिश है, ठहराव है, और जिस तरीके से आपने गाया वो तो बहुत शानदार है भाई।
0: और सर एक वो मोहम्मद रफी का वो जो गाना है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा
1: जी। तो उसकी कोई कड़ी अगर आप सुनना चाहें तो सुना दें
0: जी। बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत होगी तो जरूर सुना दूंगा, नो प्रॉब्लम
1: जी। जी बिल्कुल, उसकी कोई उसका कोई भी कड़ी, उसका कोई भी स्टैंजा आप सुना दें।
0: तो थोड़ा सा उसके मिल, हमको तो थोड़ा सा स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना, तब जाकर वो पाएगा।
1: जी जी बिल्कुल, आप मुखड़ा लेने के बाद।
0: ओके, तो
1: एक
0: जी जी, यानी कि पहले मतलब इन मुखड़ा सुनाता हूँ, फिर कोई अंतरा सुना दूंगा। ओके
1: जी जी जी।
0: ओके, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, के उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हर। बस एक ही इंस्टेंट सुना
1: है
0: आपको।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही मतलब ये आप यूथ हैं और आपको इतने पुराने गीत रफी जी के पसंद आते हैं, और आपने बखूबी निभाया है गीत को।
0: धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी दोस्तों ने सुना है उनके लिए भी डेडिकेट था, सभी को, सभी के लिए थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं कि अगले बुधवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी
0: जी। फिर अगले बार भी मैं यहाँ पे आने की कोशिश करूंगा आपको सुनने के लिए
1: जी। बिल्कुल, और आपकी जो आवाज की मधुरता है वो बहुत प्यारी लगी भाई।
0: थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे बेहद खुशी मिली।
1: मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके,
1: आसमान वाले चाहो तो बुधवार को फिर मिलते हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे सर।
1: जी हाँ भाई, मुस्तफा सब्जी ने लिख दिया भाई, बहुत गजब आवाज है, क्या बात है। जी हाँ, गजब आवाज है। और प्रीति जी भाई, बहुत दिन के बाद हम प्रीति जी को देख पा रहे हैं, प्रणाम करते हैं आपको।
0: सर कुछ कह रहे थे तब तक फोन कट गया।
1: जी जी, बस कुछ नहीं कह रहे थे।
0: अच्छा ओके, धन्यवाद सर।
1: ओके, तो भाई वास्तव में बहुत ही प्यारी आवाज है, और प्रीति जी को बहुत दिन के बाद देख रहे हैं भाई हम। नाइस सिंगिंग बेनाम नहीं, अमन नाम है इनका, अमन जी हैं हमारे। सदा सती ने लिखा है भाई बहुत अच्छी गज़ल गाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत खूबसूरत गीत गाया आपने, सुर में क्या बात है, और मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, क्या बात है भाई। कायनात जी ने बहुत सारे स्टार्स भेज दिए, बेहतरीन मेलोडियस जी। वास्तव में भाई उद्दालक शर्मा जी हैं हमारे साथ, आजय अमन को उन्होंने क्या बात है, क्या बात है अमन जी, जी क्या बात है जी। तो आर्य सोनी जी गोपालगंज से हैं, तो उन्होंने भाई कहा कि बाहर एक गज़ल सुनी जाए, और भाई इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे एक श्रोता को बढ़ाया, और बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक से हम मिले, इसके लिए आपको तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 10:25 हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट और शेष हैं, और जो ये 5 मिनट शेष हैं ये बहुत विशेष हैं। तो हम चाहते हैं कि समय को व्यर्थ न करते हुए हमारे बहुत सारे भी ऐसे श्रोता हैं जो आज वक्ता बनते हैं लेकिन अभी तक उनको हमने कहीं देखा नहीं, तो बिल्कुल समय न गवाएं। और नंबर आपका वही है 6393931 6429। एक बार पुनः सुने 6393316429। तो भाई अब एक हमारे लिए भाई एक श्रोता की वाणी और आ जाए तो बहुत शानदार होगा। और भाई सचिन शुक्ला जी को हमने मुस्कुराते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, लेकिन कभी गाते हुए नहीं देखा, उम्मीद करते हैं कि जी हाँ, और देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
3: नमस्कार भैया।
1: हा क्या बात है, वो घड़ी आ गई आ गई। दर्द कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: ठीक है भैया, समय कम है इसलिए एक छोटा सा सुना दे रहा हूँ।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए।
3: सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था आया तू।

मेरी किस्मत में है ठोकर, यूं तो बहुत है सारे, मेरे दिल का दीप बुझा तू, दिल क्यों चांद

चंदवानी राधिका दी, काला है मेरा सवेरा, कोई नहीं है

रास्ता ही रास्ता है आगे, न मंजिल न किनारा, जाने कहाँ ले जा रही है मुझको समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े खेवैया, टूटी नैया बिछड़े खेवैया, तूफानों ने घिरा, कोई नहीं है मेरा, सब गिरे लगता है जैसे।

0: क्या बात है भाई, अगर आपकी आवाज न पहुंचती तो बिना दर्द कुमार के ये मुकम्मल ना हो पाता। और अनिल शास्त्री ने लिख दिया है, बहुत खूब सुरेश जी, क्या बात है, क्या गीत गाया आपने, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और चरण स्पर्श आपको। जी हाँ, तो फिर घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, 10:30 हो चुके हैं और अब वो अवसर है कि हम आपसे अनुमति लें। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बाहर ये गज़ल में ठीक 9:30। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।
1: यूं ही गुजार देने को जी करता था, मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, इतनी सी खुशी। शाम गहरा रही थी, सर्दी बढ़ रही थी, पर मधुप बाहर कुर्सी पर बैठे शून्य में टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रहे थे। सूरज डूबने को था, डूबते सूरज की रक्तिम रश्मियों की लालिमा में रंगे बादलों के छितरे हुए टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे। उनकी स्मृति में भी अच्छी बुरी यादों के टुकड़े कुछ इसी प्रकार तैर रहे थे। 2 दिन पहले ही वो रिटायर हुए थे। 35 सालों की आपाधापी और भाग दौड़ के बाद का आराम या विराम, पता नहीं। पर अब क्या, विदाई समारोह के बाद घर आते हुए वो यही सोच रहे थे। जीवन की धारा अब रास्ता बदल कर जिस रास्ते पर बहने वाली थी उसमें वो अकेले कैसे तैरेंगे। साहब, सर्दी बढ़ रही है, अंदर चलिए, बिरुआ कह रहा था। अपने आप में खोए मधुप चौंक गए। हाँ चलो, कहकर वो उठ खड़े हुए। इस साल सर्दी बहुत हो रही है साहब, बिरुआ कुर्सी उठाकर उनके साथ चलते हुए बोला। ओस भी बहुत पड़ रही है, सुबह सब भीगा भीगा रहता है, जैसे रात भर बारिश हुई हो, बिरुआ लगातार बोलता जा रहा था। मधुप अंदर आ गए, बिरुआ उनके अकेलेपन का साथी था, अकेलेपन का श्राप मिला था उन्हें, पर भुगता बिरुआ ने भी था। खाली घर में बिरुआ कई बार अकेला ही बातें करता रहता, उनकी जरूरत से अधिक चुप रहने की आदत थी। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर बड़बड़ाता हुआ वो खुद ही खिसिया कर चुप हो जाता। पर श्यामला, वो खिसिया कर चुप नहीं होती थी बल्कि छल्ला जाती थी। मैं क्या दीवारों से बातें कर रही हूं, हूं हां भी नहीं बोल पाते, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहते, किससे बातें करूं, कहकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मधुप की आवश्यकता से अधिक चुप रहने की आदत श्यामला के लिए इस कदर परेशानी का सबब बन गई थी कि वो दुखी हो जाती थी। उनकी संवेदनहीनता, स्पंदनहीनता की ठंडक बर्फ की तरह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को झुलसा रही थी। नाराजगी में तो मधुप और भी अभेद हो जाते थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इतनी सी खुशी। अब तक आपने सुना मधुप अकेले रहते थे, उनके साथ था सिर्फ उनका एक नौकर बिरुआ। जब उनकी पत्नी उनके साथ थी तब वो उनके चुप रहने की आदत से बहुत परेशान रहती थी। अब आगे मधुप ने कमरे में आकर टीवी चला दिया, तभी बिरुआ गरम सूप लेकर आ गया। साहब सूप पी लीजिए, बिरुआ के हाथ से लेकर वो सूप पीने लगे। बिरुआ भी वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ बोलने के लिए वो हिम्मत जुटा रहा था, फिर किसी तरह बोला, साहब घर वाले बहुत बुला रहे हैं, कहते हैं अब घर में आराम करो, बहुत कर लिया काम धाम, दोनों बेटे कमाने लगे हैं, अब जरूरत ना है काम करने की। मधुप कुछ ना बोल पाए, छन्न से दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। बिरुआ का भी कोई है जो उसे बुला रहा है, दो बेटे हैं जो उसे आराम देना चाहते हैं, उसके बुढ़ापे की और अशक्त होती उम्र की फिक्र है उन्हें। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ये सुख उनके नसीब में नहीं है। बिरुआ के बिना रहने की वो कल्पना भी नहीं कर पाते। अकेले में इस घर और दीवारों से भी उन्हें डर लगता है, जैसे कोनों से बहुत सारे साए निकलकर उन्हें निगल जाएंगे। उन्हें अपनी यादों से भी डर लगता है और अकेले में यादें बहुत सताती हैं। सारा दिन आप व्यस्त रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं, मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूं, श्यामला कहती थी। तो और औरतें क्या करती हैं? बोर होना तो एक बहाना भर होता है काम से भागने का, घर में 100 काम होते हैं करने को, मधु कहते। पर घर के काम में कितना मन लगाऊं, घर के काम तो मैं कर ही लेती हूं। आप कहो तो बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे दूं नौकरी के लिए, कुछ ही घंटों की तो बात होती है, दोपहर में बच्चों के साथ घर आ जाया करूंगी, श्यामला ने अनुनय किया था। कोई जरूरत नहीं है, कोई कमी है तुम्हें? अपना निर्णय सुनाकर जो मधुप चुप हुए तो कुछ नहीं बोले। उनसे कुछ बोलना या उनको मनाना टेढ़ी खीर था। हार कर श्यामला चुप हो गई। जबरदस्ती भी करे तो किसके साथ और मनाए भी तो किसको? बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए ना किसी दिन देख कर आए, कहीं भी तो नहीं जाते हम, एक बार श्यामला ने कहा था। मुझे टाइम नहीं है और वैसे भी 3 घंटा हॉल में मैं नहीं बैठ सकता, मधुप ने कहा था। तो फिर आप कहें तो मैं किसी सहेली के साथ हुआ हूं, श्यामला ने पूछा था। कोई जरूरत नहीं भीड़ में जाने की, सीडी लाकर घर पर देख लो, मधुप कहते। सीडी में हॉल जैसा मजा कहाँ है, श्यामला जिद करती। लेकिन अपना निर्णय सुनाकर चुप्पी साधने की उनकी आदत थी। श्यामला थोड़ी देर बोलती रहती फिर चुप हो जाती। तब नहीं सोच पाते थे मधुप कि पौधे को भी पल्लवित होने के लिए धूप, छांव, पानी और हवा सभी चीजों की जरूरत होती है,
किसी एक चीज के ना होने पर भी पौधा मर जाता है, तो फिर श्यामला तो इंसान थी, उसे भी खुश रहने के लिए हर तरह के मानवीय भावों की जरूरत थी। वो उनका एक ही रूप देखती थी, आखिर कैसे खुश रह पाती वो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इतनी सी खुशी। अब तक आपने सुना मधुप बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे और बहुत कम बोलते थे। अपनी पत्नी को उन्होंने कभी भी अपने मन के करने की कोई इजाजत नहीं दी। उनकी पत्नी श्यामला अकेलेपन से अवसाद का शिकार हो रही थी। अब आगे थोड़े दिन पूना हूं आऊं माँ के पास, भैया भाभी भी आए हैं आजकल, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। एक बार श्यामला ने कहा था, कैसे जाओगी इस समय? मधुप ने आश्चर्य से कहा था और पूछा था, किसके साथ जाओगी? तो श्यामला ने कहा था, अरे अकेले जाने में क्या हुआ, दो बच्चों के साथ सभी जाते हैं, जो जाते हैं उन्हें जाने दो, पर मैं तुम लोगों को अकेले नहीं भेज सकता, मधुप का जवाब था। फिर श्यामला लाख तर्क करती, मिन्नतें करती, पर मधुप के मुंह पर तो जैसे टेप लग जाता। ऐसी अनेक बातों से शायद श्यामला का अंतर्मन विरोध करता रहा होगा। पहली बार विरोध की चिंगारी कब सुलगी और कब भड़की याद नहीं पड़ता मधुप को। साहब खाना लगा दूं? बिरुआ कह रहा था। भूख नहीं है बिरुआ, अभी तो सूप लिया है, मधुप ने कहा। थोड़ा सा खा लीजिए साहब, आप रात का खाना अक्सर छोड़ने लगे हैं, बिरुआ बोला। ठीक है, थोड़ा सा यही ला दे, मधुप हाथ धोकर बैठ गए। रिटायरमेंट के बाद की इस एक रस दिनचर्या से वो दो दिन में ही घबरा गए थे। तो श्यामला कैसे बिताती पूरी जिंदगी? वो बिल्कुल भी शौकीन तबीयत के नहीं थे, ना उन्हें संगीत का शौक था, ना किताबें पढ़ने का, ना पिक्चरों का, ना घूमने का, ना बातें करने का। श्यामला की जीवंतता मधुप की निर्जीवता से अक्सर घबरा जाती। कई बार चिढ़कर वो कहती, ठूठ के साथ आखिर कैसे जिंदगी बिताई जा सकती है, काश तभी संभाल लिया होता सब कुछ। श्यामला के जीवन में स्पंदन था, संवेदनाएं थीं, भावनाएं थीं, और वे, श्यामला कहती, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार है, मैं और बच्चे तो आपके लिए जीवन यापन करने का यंत्र भर है। श्यामला उनमें एक साथी को खोजती जो उसे मिल ही नहीं पाता। उसके व्यक्तित्व की सारी संवेदनाएं जैसे मन महसूस कर रह जाती। वो अकेलेपन की शिकार हो रही थी, अवसाद से घिर रही थी, और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से वो नहीं समझ पाए, या उन्होंने समझना ही नहीं चाहा। साहब खाना, बिरुआ प्लेट लिए खड़ा था। उसके हाथ से प्लेट लेकर वो चुपचाप खाने लगे। पहले वो चुप रहते थे, पर अब बोलना भी चाहे तो किसके साथ। बिरुआ भी अपनी थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। आपने दोबारा बताया नहीं साहब, मेरे घर वाले अब मुझे गांव बुला रहे हैं, बिरुआ ने दोबारा बात छेड़ी। अभी कुछ दिन रुको, अभी तो मुझे रिटायर हुए दो ही दिन हुए हैं, फिर बताऊंगा, कहकर वो चुप हो गए। बिरुआ भी जानता था उनके कुछ दिन की कोई सीमा नहीं थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इतनी सी खुशी। अब तक आपने सुना मधुप एकदम शांत प्रवृत्ति के इंसान थे और रवैये के बहुत सख्त। उनकी जीवंतता से भरपूर पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने नौकर बिरुआ के सहारे थे। रिटायर होने के बाद उन्हें अकेलेपन की कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब आगे मधुप सोच रहे थे, बिरुआ दूर रहकर भी अपने परिवार के दिल के कितने करीब है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यदि दूर है तो उन्हें सुख व खुशियां देने के लिए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने पर भी, सारी भौतिक सुख सुविधाएं देने पर भी वो उनके दिल के करीब नहीं रह पाए और अपने परिवार से दूर हो गए। श्यामला गुनगुनाना चाहती थी, जीवन को भरपूर जीना चाहती थी, हिरनी जैसे कुलाचे मारना चाहती थी, मतलब जीवन के हर रूप को आत्मसात करना चाहती थी। पर श्यामला की जीवंतता को नियंत्रित कर उन्हें लगता उन्होंने उस पर शासन कर लिया है, पर वो सिर्फ श्यामला के शरीर पर ही तो शासन कर पाए थे, हृदय पर नहीं। हृदय से तो वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगी थी, इतनी दूर कि उस दूरी को फिर वो चाह कर भी नहीं बांट पाए। उसके जाने के बाद जाना था कि वैवाहिक जीवन के विघटन के कारण कभी बहुत बड़े नहीं होते। दोनों में से जब किसी एक का व्यक्तित्व अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगता है तो वैवाहिक जीवन का विघटन शुरू हो जाता है। किसी एक का हर वक्त नकारा जाना उस अधिकार सूत्र को तोड़ देता है जो दोनों को एक दूसरे से बांधता है। मधुप ने प्लेट नीचे रख दी। अब नहीं खाया जा रहा बिरुआ, पेट सूप से ही भर गया। क्या बताए बिरुआ को कि पेट तो यादों से ही भर जाता है, वो यादें जो अकेले में डराती हैं और साथ में रुलाती हैं। अचानक आंखों के सामने बदली छा गई। उन्होंने आंखों को हाथ से पोंछ लिया। अनायास ही आंखें गीली हो गई थीं। भरा पूरा परिवार, दो जुड़वा बेटे और पत्नी के होते हुए भी वो आज वैरागी की सी जिंदगी जी रहे थे। टीवी बंद करके वो बिस्तर पर लेट गए। नीरव रात में कहीं दूर से कुत्तों के भूकने का स्वर स्पष्ट सुनाई देता था। बेटे 12वीं करके इंजीनियरिंग में निकलकर बाहर पढ़ने चले गए। इतने दिनों तक बच्चों की जिम्मेदारियों ने ही श्यामला को बांधा हुआ था, लेकिन बच्चों के जाने के बाद वो अवसाद का शिकार हो गई। मधुप सब कुछ जानते बूझते भी उसका साथ देने के बजाय उपदेश देने लग जाते उसे। उपदेश देने में उनकी जबान जरूर हिल जाती। श्यामला का मन करता कोई साथी हो जिससे अपने दिल की बातें बांट सके। बच्चों के साथ की व्यस्तता अब खत्म हो गई थी। जो थोड़ा बहुत वार्तालाप उनकी वजह से होता था अब समाप्त हो गया था।

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है इतनी सी खुशी। अब तक आपने सुना मधुब के नीरस रवैये से तंग आकर श्यामला उन्हें छोड़कर चली गई थी। रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल अकेले थे और

रह गया है, घर को दुकान बना दो, कोई जरूरत नहीं। मधु फिर अभेद हो गए। मधुब की चुप्पी से परेशान होकर श्यामला की नाराजगी थोड़े दिन में अपने आप ही दूर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। नाराज होकर उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे भी पत्नी को मनाना उनके लिए सबसे निकृष्ट कार्य था। पत्नी को क्यों मनाया जाए? जैसे खुद रूठी है वैसे ही खुद मान भी जाएगी। उन्होंने तो कभी बच्चों को भी डांट कर प्यार नहीं किया। पता नहीं कैसा अनोखा स्वभाव था उनका। काश तभी चेत जाते। श्यामला की नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं खिंची थी। एक दिन वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे कि श्यामला उनके सामने आ खड़ी हुई। अब मुझसे यहां ना रहा जाएगा, मैं जा रही हूं। उन्होंने चौंक कर श्यामला की तरफ देखा। एक हफ्ते बाद सीधे सीधे श्यामला का चेहरा देखा था उन्होंने। एक हफ्ते में जैसे उसकी उम्र 7 साल बढ़ गई थी। रोते रोते आंखें लाल और चारों तरफ काले स्याह घेरे। ये क्या कर रही हो तुम श्यामला? छोटी सी बात को तूल दे रही हो? उसकी ऐसी शक्ल देखकर वो थोड़ा पसीज गए थे। सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे से उसके कंधों को पकड़कर बोले। क्या ठीक हो जाएगा? उसने हाथ झटक दिए थे। मैं अब यहां नहीं रह सकती। आपकी बंदिश किसी समय मेरी जान ले लेगी। मेरे तन के साथ साथ मेरे मन मस्तिष्क पर भी बंदिशें लगा दी हैं आपने। मैं आपसे अलग कहीं जाना तो दूर की बात है, आपसे अलग सोच भी नहीं सकती। मुझसे नहीं हो पाएगा अब ये सब। श्यामला बोली, तो अब क्या करना चाहती हो? वो व्यंग से बोले थे। मैं यहां से जाना चाहती हूं, आज ही। आप अपना घर संभालो। आप जब ऑफिस से आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी। श्यामला बोली, तुम्हें जो करना है करो, जब सोच ही लिया है तो मुझसे क्यों कह रही हो? कहकर मधुब धनधनाते हुए ऑफिस चले गए। वो हमेशा की तरह जानते थे कि श्यामला ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं थी श्यामला के अंदर कि वो इतना बड़ा कदम उठा पाती। लेकिन अपनी पत्नी को शायद वो पूरी तरह से नहीं जानते थे। उस दिन उनकी सोच गलत साबित हुई। बिना स्पंदन और जीवंतता के रिश्ते आखिर कब तक टिकते? जब वो ऑफिस से लौटे तो श्यामला जा चुकी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी इतनी सी खुशी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुरों के आंगन में जिन्होंने एक नया सवेरा जगाया, अपनी जादुई धुनों से हर एक पल को धड़काया। दिल देखे देखो से शुरू हुआ वो सुरों का अनमोल सफर, हर गाने में झलकता था उनकी कड़ी मेहनत का असर। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज को सजाया, उषा जी ने भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया।
2: सपनों को सुरों में पिरोकर उन्होंने हर महफिल को सजाया, जिंदगी प्यार का गीत है गाकर जीने का सलीका सिखाया। पुरुषों के इस गढ़ में बनकर पहली बड़ी महिला संगीतकार, रूढ़ियों को तोड़कर उन्होंने पाया दुनिया भर का प्यार। आज भी गूंजती है उनकी धुने बनकर यादों की वो बहार, संगीत की दुनिया हमेशा करेगी उनका दिल से आभार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम,
2: जो कि हम लेकर के आए हैं आज रात के सफर में सुरों की मलिका उषा खन्ना। तो आइए आज शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सा सफर उनके बहुत ही प्यारे से गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

शुरुआती दौर में उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, तो आइए कुछ बताते हैं उषा खन्ना के बारे में। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मनोहर खन्ना ग्वालियर राज्य के जल विभाग में सहायक अधीक्षक थे, जो खुद एक कवि, गीतकार और शास्त्रीय संगीत में भी माहिर थे। पिता से ही उनकी प्रेरणा मिली और कहा जाता है कि जो कोई प्रतिभा अगर हमें जन्मजात से मिली हो तो वो प्रतिभा हमारे रग रग में शामिल होती है। फिर आती है बात उनके संगीतकार की ट्रेनिंग की। दिलचस्प बात यह है कि उषा खन्ना जी ने संगीत की कोई औपचारिक या क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह अपनी जन्मजात प्रतिभा से ही धुने बनाती थी। वो शुरुआत में सिंगर बनने आई थी, लेकिन एक दिग्गज संगीतकार ने उनसे कहा कि अगर वह लता जी और आशा जैसी नहीं गा सकती तो इरादा वो छोड़ दे। फिर क्या था, उसके बाद उन्होंने धुने बनाना शुरू कर दिया। दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर जी ने उनकी प्रतिभा को देखकर फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। मुखर्जी ने उन्हें परखने के लिए एक साल तक रोज 2 धुने बनाने का टास्क दिया करते थे। फिर क्या था, उसके बाद मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने शम्मी कपूर और आशा पारेख की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल दे के देखो से बतौर संगीतकार धमाकेदार डेब्यू किया। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से गीतों को, उनकी प्यारी सी धुनों को।

कहते हैं ना, व्यक्तित्व में गंभीरता होती नहीं, लानी पड़ती है। और कई बार हमें खुद को गंभीर दिखाना जरूरी भी होता है। ऊषा खन्ना जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। करियर के शुरुआती दिनों में ऊषा खन्ना बहुत कम उम्र की दिखती थी, हमेशा वेस्टर्न फ्रॉक पहनती थी। फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें देखकर अक्सर कहते थे, ये बच्ची क्या संगीत बनाएगी। इस वजह से उन्हें मीटिंग्स में भी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। धीरे धीरे ऊषा खन्ना जी ने एक बड़ा फैसला किया, उन्होंने फ्रॉक पहनना पूरी तरह छोड़ दिया और साड़ी पहनना शुरू कर दिया, ताकि वे उम्र दराज और गंभीर दिखें और लोग उनके हुनर को हल्के में ना ले सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो गंभीर रहने लगी, लोग उनकी बातों को हमेशा गंभीरता से लेने लगे। इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ हमें हमारे व्यक्तित्व में, रहने सहने के रहने के तरीकों में कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। अच्छा, वो गाना तो आप सभी ने सुना होगा, फिल्म सौतन का गाना, शायद मेरी शादी का ख्याल। लेकिन इसके रिकॉर्डिंग के पीछे की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पता है क्या है, रिकॉर्डिंग के दिन तय समय पर पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम स्टूडियो में बैठी थी, लेकिन किशोर कुमार साहब गायब थे। कुछ देर बाद खबर आई कि किशोर कुमार ने गाना गाने से मना कर दिया है, वे रिकॉर्डिंग पर नहीं आ रहे हैं। ऊषा खन्ना हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद किशोर कुमार खुद स्टूडियो में आए। दरअसल किशोर दा के पास किसी दूसरे कंपोजर की बेहद खराब धुन डेमो टेप के लिए आ गई थी और वो उसी काम में फंस गए थे, जिस कारण से वो लेट आए। लेकिन उनके लेट आने के बाद भी ऊषा खन्ना जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और किशोर कुमार जी ने भी बड़ा दिल रखते हुए माफी मांग ली। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा हमारी गलती होने पर माफी मांग लेनी चाहिए। तो आइए, चलिए चलते हैं और सुनते हैं इन्हीं का एक बहुत ही बेहद प्यारा सा गीत।

वो कहते हैं ना कि हर एक बात के पीछे, हर एक मुलाकात के पीछे कोई कहानी होती है। बिल्कुल, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ मशहूर गाने और उनके पीछे की रियल लाइफ स्टोरी, जो कि है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मुकेश दा ने इस गाने को गाया और संगीतकार प्रेम धवन जी ने इसको संगीत दिया। इस गाने के पीछे की कहानी, ये गाना 1960 के दशक के बदले और नए भारत आजादी के बाद के दौर का प्रतीक माना गया था। उषा खन्ना ने इस गाने के पश्चिमी मार्चिंग बैंड और भारतीय संगीत का एक फ्यूजन तैयार किया गया था। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो इतनी बड़ी संख्या में वाद्य यंत्र बजाने वालों को संभालना और एक 18-19 साल की लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। दिग्गज गायक मुकेश उषा खन्ना जी के जज्बे और उनकी कम उम्र में इतनी गंभीर देशभक्ति धुन बनाने की क्षमता से दंग रह गए थे। उन्होंने बिना किसी नखरे के उषा जी के निर्देशानुसार कई बार रीटेक देकर उसे रिकॉर्ड किया गया। ये गाना आज भी हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पूरे देश भर में गूंजता है। आइए सुनते हैं यही एक प्यारा सा गाना, छोड़ो कल की बातें।

तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है। फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये बहुत ही बेहतरीन गाना, जिसे हम जब उदास होते हैं तब सुनते हैं। कहते हैं ना कि गानों की खूबसूरती ऐसी होती है कि दर्द में भी ये हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये गाना हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे और रोमांटिक गानों में गिना जाता है। उषा खन्ना ने इस गाने की धुन बहुत धीमी और ठहराव वाली बनाई थी। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे रिकॉर्ड किया तो वह इस धुन की गहराई में इतने ज़्यादा खो गए कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में ही उषा खन्ना जी से कहा, बेटा इस गाने में जो रूह तुमने डाली है मैं उसे गाते समय पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। रफ़ी साहब ने इस गाने को अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक माना था। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही बेहतरीन गाना, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है।

उषा खन्ना जानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी धुनों के जरिए कई ऐसे गायकों को मौका दिया जो आगे चलकर बड़े स्टार बने, जिसमें सोनू निगम, पंकज उदास, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और हेमलता जैसे नाम शामिल हैं। मोहम्मद रफी का सम्मान हम सभी लोग आज भी बड़े दिल से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोहम्मद रफी उनके संगीत बहुत बड़े प्रशंसक थे, उषा खन्ना उनकी फैन और मोहम्मद रफी उनके फैन। एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान उषा खन्ना झिझक रही थी तो रवि साहब ने खुद उनसे कहा कि उषा, तुम्हें हमसे नहीं बल्कि हमें तुमसे गाना सीखना है। बस फिर उसके बाद क्या था, गानों की तो लाइन लग गई और उसके बाद गाने भी उतने ही लोकप्रिय हुए। उनके इतने कुछ गाने हुए कि हर एक गाने के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी शामिल हुआ करती थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये बहुत ही प्यारा सा गाना है जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और उसके बाद आता है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जो कि थी सौतन, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, और उसके बाद में तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी सुपरहिट संगीत तैयार किया था और उनकी आखिरी संगीतबद्ध, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी और उनकी पसंदीदा फिल्मों में से यही कुछ गाने थे। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से नगमों को एक बार फिर से।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, उषा खन्ना जी ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार उन्हें साल 2019 में मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और इससे सम्मानित किया गया, जिसमें कि उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया गया था। 2019 में उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें नामांकित भी किया गया। उनकी सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी सौतन, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी, जिसके सदाबहार गानों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नामांकित भी किया गया था। ऐसे बहुत से पुरस्कार, ऐसे बहुत से सम्मान उनके नाम हैं। कहते हैं ना कि जब हमारा काम ही हमारे लिए एक तरीके से पूजा बन जाता है और हम उसमें अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं, तो वो सदियों तक याद किया जाता है। जैसे कि उषा मंगेशकर जी की धुनें हम आज भी याद करते हैं। तो आइए, चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक बेहद प्यारा सा गीत।

कुमार ने इसके बोल लिखे तो कई लोगों को लगा कि यह साधारण सा गाना है, लेकिन उषा खन्ना ने इसमें ढोलक और एक खास कुकू की आवाज का ऐसा इस्तेमाल किया कि गाना बेहद अमर हो गया। मजेदार बात यह है कि रिकॉर्डिंग के समय किशोर कुमार मूड में ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उषा खन्ना की बेहतरीन और रिदमिक धुन को सुना तो वो इतने जोश में आ गए कि उन्होंने गाने में अपनी तरफ से मजेदार कॉमिक इमोशंस को जोड़ दिया। और फिर क्या था, ये गाना आज भी ब्लॉकबस्टर है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इस प्यारी सी धुन को आइए सुनते हैं।

0: दोनों के इस सफर का अब समापन होने आया है। उषा जी के संगीत ने हर दिल को आज हर्षाया है। छोड़ो कल की बातें कहकर जो राह नई दिखलाई थी, उनकी मधुर विदाई की ये बेला अब करीब आई है। सुरों की इस महफिल को हम यहीं पर विराम देते हैं। संगीत की इस देवी को झुककर सादर प्रणाम करते हैं।
1: यादों में गूंजते रहेंगे सदा उनके बनाए ये तराने, पीढ़ियां गुनगुनाती रहेंगी उषा जी के ये अफसाने। जिंदगी प्यार का गीत है, यही सीख हमें निभाना है। दीपक बुझे पर लौ रहे, वैसे ही ये धुनें अमर रहेंगी। उषा खन्ना जी की विरासत हर संगीत प्रेमी के दिल में रही। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे रात के सफर में फिर से भूले बिसरे गीत के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए संगीतकार एक नए धुन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?